एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ माह की तिथि 22, तदनुसार 13 जुलाई ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की सभा।

एफएम के 101.7 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैंबर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित अंग्रेजी में समाचार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:10 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। आज के कलाकार हैं सुरेश वाडेकर और साथ ही संगीत है सतीश भाटिया का। तो लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

इस अफसर की शिक्षा विशेष देने के लिए श्री राम के महल में जाने का अनुरोध किया। मुनिवर को अपने महल में आया देखकर श्री राम ने विनीत भाव से उनके चरण छुए और कहा, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलकार्य है, तथापि उचित तो ये था कि गुरुदेव ने दास को ही अपने पास बुला लिया होता। श्री राम के गुण, शील तथा स्वभाव से पुलकित होकर मुनिराज ने उन्हें शुभ संवाद सुनाया कि अवध नरेश ने उनके राज्याभिषेक की तैयारियां पूरी कर ली हैं। कुलगुरु ने उन्हें इस अवसर विशेष के विधि विधान तथा नियम संयम बताए, लेकिन श्री राम के मन में खेद इस बात का हुआ कि सभी भाई एक साथ जन्मे, खाया खेला, सबके यज्ञोपवीत, विवाह आदि एक साथ संपन्न हुए, किंतु अब अन्य भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक ज्येष्ठ पुत्र यानी केवल उनका हो रहा है। इधर सभी अयोध्यावासी अपने ननिहाल से भरत के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि अग्रज के राज्याभिषेक के उत्सव में वो भी भाग ले सकें। उधर कुचक्री देवता इस शुभ कार्य में विघ्न डालने की योजनाएं बना रहे हैं। सरस्वती से देवताओं ने विनती की कि वे कुछ ऐसा करें जिससे श्री राम राज त्याग कर वन को चले जाएं।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। आज के कलाकार थे सुरेश वाडेकर और साथ ही संगीत था सतीश भाटिया का। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है।

स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम समर्पण। भक्ति गीतों के कार्यक्रम समर्पण में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक ही भजन गायक ओम व्यास को।

आकाशवाणी चायबासा से आप इस समय सुन रहे हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम समर्पण। आज के कार्यक्रम समर्पण में हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही भजन गायक ओम व्यास को।

FM के 101.7 MHz पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:41 हो चुके हैं। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

प्रातः के 8:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। सुबह के 8:40 पर प्रसारित होगा लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। आज इस कार्यक्रम के तहत हम आपको सुनवाएंगे उरांव लोकगीत कलाकार सुकरा भगत और उनके साथियों के स्वरों में। कार्यक्रम विविधा, इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह के 9:00। आज आप इस कार्यक्रम के तहत सुनेंगे चर्चा, एक भेंटवार्ता, विषय होगा बच्चों में बढ़ती एंजाइटी की समस्या को माता पिता ना करें नजरअंदाज। भेंटवार्ताकार होंगे समस्या काउंसलिंग की काउंसलर सौजन्या। इनसे बातें करूंगी मैं यानी कि संगीता। सुबह के 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। पूर्वाहन के 10:00 आप सुनेंगे NCERT के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। पूर्वाहन के 10:30 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को। दोपहर के 1:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। 1:20 पर आप एक बार फिर से सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को। दोपहर के 2:55 पर प्रसारित होंगे प्रादेशिक समाचार, जो कि प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। दोपहर 3:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को और संध्या 4:00 का प्रसारण समय रहेगा आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचारों का। 4:02 पर आप एक बार फिर से सुन सकेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को। संध्या 5:00 आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचारों को आप सुन सकेंगे और संध्या के 5:02 पर आप सुनेंगे हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा यानी कि कार्यक्रम विवरण को। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता, इस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा संध्या के 5:05 का। आज इस कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे एक ही गायक के स्वर से सजे चंचुनिंदा नगमे। संध्या 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। संध्या 6:00 आप सुन सकेंगे आकाशवाणी रांची से मुख्य समाचार और संध्या 6:02 पर प्रसारित होगा क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अखड़ा। संध्या के 6:30 पर आप सुनेंगे हमारे युवा दोस्तों को संबोधित साप्ताहिक कार्यक्रम युवाणी। संध्या के 7:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। यहीं से प्रसारित जिले में आजकल का प्रसारण होगा संध्या 7:10 पर। संध्या के 7:15 पर आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम रजनीगंधा का आनंद आप लेंगे रात्रि के 8:00। रात्रि के 8:45 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। रात्रि के 9:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को, जो कि प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। रात्रि के 10:00 आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। 10:30 का प्रसारण समय रहेगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुरों के रंग का। रात्रि के 11:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। और रात्रि के 11:10 पर हमारे आज के सभा समापन की उद्घोषणा होगी। तो श्रोताओं, ये थी हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं हमारा आज का अगला कार्यक्रम सुगम संगीत।

कार्यक्रम सुगम संगीत सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही गायक कलाकार कुमार जी ज्योति को।

गायक कलाकार कुमारी ज्योति के स्वर में गाए हुए इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज चुके हैं। वक्त है आप सभी श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत के कार्यक्रम जोहार चायबासा का। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार चायबासा।

कार्यक्रम जोहार चायबासा सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को मेरा यानी कि आपकी रेडियो सखी संगीता का प्यार भरा नमस्कार जोहार। आइए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत और आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म जागते रहो से। आवाज़ें हैं गायक कलाकार लता मंगेशकर और साथियों की।

सौदागर कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं इसी फिल्म से। आवाज़ का एक कलाकार लता मंगेशकर की, बोल लिखे हैं रविंद्र जैन ने और धुन भी रविंद्र जैन की ही।

भूपेंद्र सिंह और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में ये गीत आपने सुना फिल्म सितारा से। कार्यक्रम का अगला नगमा आपको सुनवा रहे हैं गायक कलाकार लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म सौतन की बेटी से। बोल लिखे हैं सावन कुमार ने और धुन है वेद पाल की।

हम भूल गए रे तेरा प्यार, हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। इस गीत को श्रोताओं आपने सुना फिल्म सौतन की बेटी से, आवाज़ थी गायक कलाकार लता मंगेशकर की। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, गायक कलाकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में फिल्म दूसरा आदमी से।

फिल्म दूसरा आदमी के इस गीत के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला नगमा। गायक कलाकार लता मंगेशकर के स्वर में, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की और इस गीत को हमने लिया है फिल्म नाचे मयूरी से।

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: आले नवागे नेहर में ना बोले नवा नुकन परिस्थिति रे बोले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहा कि हम बोले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: मोर नाम मंगलोरा है को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम्हें ठीक हुए है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आए में हमरे घरे बहुत दुख के बात है तो कम बात हो जाए
5: तुम लोग बुरन सिंह तमसोय अनिता तमसोय भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में ना आया या पाम में रियल तपाम में रियल वाह बेटा मिक्का
6: आया ना तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम दूर कोड़ा आया हूँ दो कोदमरी कोड़ा दो पटन पटन तुम कितना ही कोड़ा मैंने में उड़ी उड़ी ने बागिया तोड़ के ये दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तमे दूर रन गई हैं तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल मिया
7: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लिंग सी जा हुरा रे मिना हीरो जिता हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया नु तुम ते ना मिल आप ही लेते ना।
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
8: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
9: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
8: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
9: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
8: डायल कीजिए 8700014242।
9: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
10: इन जरूरी संदेशों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम जोहार चायबासा में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से आपकी रेडियो सखी संगीता के साथ। आइए श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म एक दूजे के लिए से। आवाजें हैं गायक कलाकार अनूप जलोटा और लता मंगेशकर की।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं गायक कलाकार मुकेश के स्वर में फिल्म सफर से। बोल इंदिवर के हैं, धुन है कल्याण जी आनंद जी की।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म जाने अनजाने से। आवाज़ें थी गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। और इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारे आज का ये कार्यक्रम जोहार चायबासा अब यहीं समाप्त होता है। तो अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी आपकी रेडियो से संगीता को विदा दें। नमस्कार, आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार चायबासा।

आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगा हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचारों का, तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार, पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
3: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
4: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स,

0: CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठके करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशद गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
3: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो AI आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री दहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। रिपोर्ट।
4: भोपाल में आज MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप्स, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6-लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6-लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार।

0: लखनऊ।
1: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपए, राजगीर के लिए 4000 रूपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपए और कैमूर के लिए 6000 रूपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
1: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं नव भारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, 1 लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का SIR ब्यौरा अनिवार्य, दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसे भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है।

0: मीडियम वे 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभिन्न विभागों की करेंगे समीक्षा। आज उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की कार्य प्रगति का लेंगे लेखा जोखा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने देवघर सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। श्रावणी मेले से पहले सभी व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने का दिया निर्देश। चक्रधरपुर आद्रा रेल मंडल में आज से 19 जुलाई तक चलेगा रोलिंग ब्लॉक कार्य। कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई के मार्ग में बदलाव। आज और कल राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और राज्य स्तरीय बालिका खो खो प्रतियोगिता में रामगढ़ को हराकर रांची की टीम बनी चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मंत्रालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। इस संबंध में जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आज उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा होगी। 15 जुलाई को पथ निर्माण विभाग की कार्य प्रगति की समीक्षा होगी। देवघर श्रावणी मेले से पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने देवघर सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को श्रद्धालुओं और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
2: श्रावणी मेला तो आप समीक्षा करेंगे, तैयारी करेंगे, तो उसमें हम एमसी डायरेक्टर को ही बुलाएंगे। श्रावणी मेला को देखते हुए हमारी तैयारी वही होनी चाहिए। लाखों लाख श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हॉस्पिटल कोई राजनीतिक अड्डा नहीं है और जिस तरह से कुछ नेताओं ने दो राजनीतिक प्लेटफॉर्म बना दिया है, तो आज मैं हिदायत दे रहा हूँ, अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज वहाँ होगा तो मैं अस्पताल मानूंगा। श्रावणी मेला तो आप समीक्षा करेंगे।
1: गोड्डा शहर के करगिल चौक स्थित आभूषण दुकान में हुई लूट और गोलीबारी की घटना के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसपी मुकेश कुमार ने मामले के जल्द खुलासे का दावा किया है। वहीं श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपराध मुक्त समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: हम इतना जानते हैं कि हमको अपराध मुक्त गोड्डा चाहिए और जो भी सामान ले गया और जिस तरह से भय वातावरण फैलाया है, पुलिस अपना काम कर रही है और हम लोग उसको सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से अपराधी मारे भी जाएंगे और जब मारे जाएंगे निश्चित रूप से भय मुक्त होगा, अपराध मुक्त होगा।
1: रांची जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत कल शाम 4 बजे तक लगभग 74% एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण और 24% फॉर्म का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 96% फॉर्म का वितरण तथा 34% फॉर्म का डिजिटाइजेशन दर्ज किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सभी ईआरओ, एईआरओ, बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर्स को 100% फॉर्म वितरण, संग्रहण तथा समयबद्ध डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करने और मतदाताओं से शीघ्र फॉर्म जमा करने की अपील की है। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में आज से 19 जुलाई तक इंजीनियरिंग, टीआरडी तथा सिग्नल और दूरसंचार विभाग की ओर से संयुक्त रोलिंग ब्लॉक लिया जाएगा।

0: इस दौरान रेलवे ट्रैक और ओवरहेड उपकरणों के रखरखाव तथा आधुनिकीकरण का कार्य किया जाएगा। ब्लॉक के कारण कई मेमू ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कई ट्रेनों के परिचालन में आंशिक बदलाव और समय परिवर्तन किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। आद्रा मंडल के इस रोलिंग ब्लॉक का असर बोकारो, पुरुलिया, आसनसोल, टाटानगर, महुदा और आसपास के रूटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वे नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS में प्राप्त लिंक का अनुसरण कर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को भारतीय महिला हॉकी टीम द्वारा हस्ताक्षरित हॉकी स्टिक भेंट की है। भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रत्येक सदस्य के हस्ताक्षर वाली हॉकी स्टिक न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी महिला नेशंस कप में टीम की ऐतिहासिक जीत की स्मृति है। सिमडेगा जिले में पुलिस को दोहरी सफलता मिली है। कोलेबिरा थाना की पुलिस ने गोवंशीय पशुओं की तस्करी के लिए रेकी करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। SDPO DD पासवान ने बताया कि बांसजोर क्षेत्र में ताजा गांजा तस्करी के मामले में फरार आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है।
1: एक बस से गांजा बरामद किया गया था, जिसमें एक पकड़ा गया था और दो फरार हो गया था, जिसे गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है संतोष नायक सोना। ये उड़ीसा के कंधमाल जिला का रहने वाला है। गोवंशीय पशु को पार करने के लिए कार से पुलिस की गतिविधि पता लगाया जा रहा है। उसमें दो आदमी को गिरफ्तार किया गया है।
0: मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताते हुए 24 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों को गरज चमक के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा किसानों को मौसम को ध्यान में रखकर कृषि कार्य करने की सलाह दी है। उधर गुमला जिले में वज्रपात की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई। झारखंड राज्य खो खो संघ के तहत राज्य स्तरीय बालिका खो खो प्रतियोगिता का आयोजन रजरप्पा के DAV ग्राउंड में किया गया। 3 दिवसीय प्रतियोगिता का फाइनल मेजबान रामगढ़ और रांची के बीच खेला गया, जिसमें रांची की टीम चैंपियन बनी। मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक ममता देवी ने पुरस्कार वितरण किया और कहा कि ऐसे आयोजनों से इस खेल को बढ़ावा मिलेगा।
2: रांची की टीम विजेता रही और मैं उन टीमों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। सभी बच्चों ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन जब भी कोई गेम होता है तो उसके दो पहलू होते हैं, जिसमें कि एक हारता है और एक जीतता है। तो मेरी ओर से जितने भी उप विजेता टीम है, विजेता टीम है, सभी को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देती हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं।
0: रांची में आयोजित प्रथम झारखंड राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का समापन कल विभिन्न आयु वर्गों और पुरुष एवं महिला वर्ग के फाइनल मुकाबलों तथा पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मध्य पूर्व में युद्ध की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। प्रभात खबर ने लिखा है 15 अगस्त को 25,000 नियुक्तियों की घोषणा कर सकती है सरकार। झारखंड में कक्षा 6 से 12वीं तक बढ़ा नामांकन अनुपात, इस खबर को दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहली बार वर्ल्ड रैंकिंग की 4 टीमें एक साथ सेमीफाइनल में। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभिन्न विभागों की करेंगे समीक्षा। आज उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की कार्य प्रगति का लेंगे लेखा जोखा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने देवघर सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। श्रावणी मेले से पहले सभी व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने का दिया निर्देश। चक्रधरपुर आद्रा रेल मंडल में आज से 19 जुलाई तक चलेगा रोलिंग ब्लॉक कार्य। कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई के मार्ग में बदलाव। आज और कल राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और राज्य स्तरीय बालिका खो खो प्रतियोगिता में रामगढ़ को हराकर रांची की टीम बनी चैंपियन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:42 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। कार्यक्रम माटी की महक सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, लोकगीतों के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उरांव लोकगीत कलाकार सुकरा भगत और उनके साथियों के स्वरों में।

आकाशवाणी चायबासा से हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं लोकगीतों के कार्यक्रम माटी की महक का। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं उरांव लोकगीत कलाकार सुकरा भगत और उनके साथियों के स्वरों में।

सुखरा भगत और साथियों के स्वरों में गाए हुए इस उड़ाव लोक गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम माटी की महक अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी की महक। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बज चुके हैं। वक्त हो चला है कार्यक्रम विविधा का। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

कार्यक्रम विविधा सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को मेरा यानी कि आपकी रेडियो सखी संगीता का नमस्कार जोहार।

0: श्रोताओं, आज कार्यक्रम विविधा में हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके साथ, आपके लिए फिर से नई नई जानकारियां लेकर। क्योंकि श्रोताओं, जिंदगी की भागदौड़ में कभी कभी ऐसा होता है ना, जब दिल की धड़कनें अचानक तेज हो जाती हैं, दिमाग में विचारों का एक ऐसा तूफान उठने लगता है जिसे रोकना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। श्रोताओं, आज हम एक बेहद जरूरी विषय पर आपसे बातें करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम अक्सर खुलकर नहीं कह पाते। और वो बात है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम का वो विषय है एंजाइटी। एंजाइटी यानी घबराहट। क्योंकि मन की उलझनों को छुपाना नहीं बल्कि उन्हें समझना जरूरी है। श्रोताओं, अक्सर हम शारीरिक सेहत का तो ख्याल रख लेते हैं लेकिन मन की बेचैनी को अनदेखा कर देते हैं। तो आज इसी क्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रही हैं एक बेहद खास मेहमान और एक्सपर्ट, जो हमें बताएंगी कि इस मानसिक खींचातानी से कैसे निपटा जाए, खुद को कैसे संभाला जाए और मन को कैसे शांत किया जाए। तो बस अपनी सीट की पेटी को बांध लीजिए और एक गहरी सांस लीजिए और खुद को थोड़ा वक्त दीजिए और सुनिए हमारी ये खास भेंटवार्ता। क्योंकि आपका मानसिक सुकून सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो आइए हम आपको सुनवाते हैं ये एक खास भेंटवार्ता, जिसका विषय है बच्चों में एंजाइटी की तकलीफ को माता पिता ना करें नजरअंदाज। भेंटवार्ताकार हैं समस्या काउंसलिंग की काउंसलर सौजन्या और उनसे बातें कर रही हूँ मैं, यानी कि संगीता। तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता। श्रोताओं, आज के हमारे कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर सौजन्या जी। ये पिछले कई सालों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही हैं और अपनी थेरेपी व काउंसलिंग के जरिए हजारों उलझे हुए मनों को शांत कर चुकी है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तनाव को अलविदा कहकर एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में सौजन्या जी का। सौजन्या जी नमस्कार। सौजन्या जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और हम चाहेंगे सौजन्या जी कि आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय स्वयं अपनी जुबानी दें।
1: मेरा नाम सौजन्या है, मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। 3+ ईयर से हम ए फील्ड में है
0: जी।
1: तो हम आजकल बच्चे को, पेरेंट्स को और एम्प्लॉयज को बहुत सारा देखा था। तो वो लोग बहुत स्ट्रेस में है और स्ट्रेस से बाहर कैसे आना है, एक विस्कस लूप में स्टक हुआ था। तो हमको लगा ये सर्विस हम सबको प्रोवाइड करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ये फील्ड चूज किया।
0: जी जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि अभी जो युवा है या फिर एडोलेंस जो बच्चे टीनेज में है, उनके अंदर बहुत ज्यादा तनाव की समस्या आ रही है। और आपने जब इस समस्या को देखा तो आपके मन में ये ख्याल आया कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। तो चलिए सौजन्या जी, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और हम आपसे ये जानना चाहेंगे सौजन्या जी कि युवाओं की एंजाइटी और मानसिक स्वास्थ्य पर आप क्या कहना चाहेंगी कि आज के युवाओं में हम देखते हैं कि एंजाइटी, जिसे कि आम भाषा में घबराहट कहते हैं हम, सबसे आम लक्षण है। आजकल के युवाओं में ये समस्या काफी ज्यादा देखने को मिल रही है कि उन्हें एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है। तो ये एंजाइटी क्या है और हम इसे कैसे पहचान सकते हैं कि ये जो युवा है या फिर हमारा बच्चा है वो किसी डिप्रेशन से या एंजाइटी अटैक से परेशान है?
1: देखिए जी, आजकल बहुत सारा यूथ, एडोलेसेंट और यंग यूथ बोल सकते, दोनों को एंजाइटी किसी का एक रीजन वजह से नहीं होता है। डीप डाउन बहुत कारण हो सकता है, बीट करियर है, एकेडमिक प्रेशर भी हो सकता है, नहीं तो रिलेशनशिप इश्यूज भी हो सकता है, कॉन्स्टेंटली कंपेयर भी करता है। ये सब मिलकर एंग्जाइटी को बता सकता है।
0: जी
1: आज का यंगस्टर्स लगता है इनको उसके बहुत जल्दी लाइफ में सब कुछ अचीव करना चाहिए, हड़बड़ी से सोचना, इसके बाद गलती करना, ये धीरे धीरे एंग्जाइटी का कन्वर्ट हो सकता है।
0: जी यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि आज के युवा जो है वो अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ के साथ बहुत जल्दी कंपेयर कर लेते हैं और बहुत जल्दी सब कुछ अपने आप मिल जाए उनको, ऐसी उनकी इच्छा रहती है कि बिना एफर्ट लगाए उनको सब कुछ अचीव कर ले वो। इस एंजाइटी को जो हमारे माता पिता या अभिभावक हैं बच्चों के, वो कैसे पहचानेंगे कि उनके बच्चों में एंजाइटी या घबराहट की समस्या उत्पन्न हो रही है? इसके आम लक्षण क्या है कि जिसको हम पहचान पाए?
1: सबसे पहले मैं ये कहूंगी,
0: जी
1: पर्सन का हमारा नॉर्मल बिहेवियर को पता चलता है ना, लाइक
0: जी
1: नॉर्मल बिहेव करता है वो, नॉर्मल बिहेवियर बच्चों को, ताकि नहीं है तो एनी पेरेंट को हमको इनका नॉर्मल बिहेवियर पता है। इन
0: जी
1: केस ये नॉर्मल बिहेवियर से चेंजेस धीरे धीरे आ रहे, वो भी दो
0: जी
1: हफ्ता और 3 हफ्ता का ऊपर तक चलते रह रहे,
0: जी
1: लाइक
0: जी
1: ज्यादा ओवर थिंक कर रहे, पहले सबके साथ मिलजुल के एक्टिविटीज किया था, अभी
0: जी
1: एक्टिविटीज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, धीरे धीरे आइसोलेट करना चाहिए,
0: जी
1: फ्रेंड्स
0: जी
1: को भी अवॉइड कर रहे। तो ये सब चीज तो आइडेंटिफाई करने के लिए नॉर्मल बिहेवियर से चेंजेस ऐसे आएंगे, तो ये वो भी 2 to 3
0: जी
1: वीक्स के ऊपर तक चलेगा, तो वो ऐसे वैसे आइडेंटिफाई कर सकते।
0: जी यानी कि हमारा बच्चा अगर 2 से 3 हफ्ते तक अपने आप को सब चीज से अलग रखना है, अपने आप को अकेला रखना चाह रहा है, तो हम इसको मान सकते हैं कि वो एंजाइटी का शिकार हो रहा है। मैडम एक और चीज है कि सोशल मीडिया आजकल हमारे युवाओं के जीवन में, या फिर कहें तो सिर्फ युवा नहीं, बच्चे नहीं बल्कि बड़ों के जीवन में भी काफी ज्यादा प्रभाव डाल रहा है सोशल मीडिया जो है, और उसमें जो तरह तरह की रील्स देखते हैं हम, छोटे छोटे से जो नाटक बोल सकते हैं हम उनको वगैरह जो देखते हैं हम लोग, उसमें लगता है कि सब कुछ बहुत आसान है मिलना जिंदगी में, लेकिन ऐसा होता नहीं है अमूमन। और उस रील को वो अपने आप पे इतना, या फिर किसी किताब को पढ़ के वो एक इमेजिनरी दुनिया में चले जाते हैं और उन्हें लगता है कि बहुत आसान है सब कुछ मिल जाना, लेकिन वो ऐसा उनको होता नहीं है और मिलता नहीं है, और उससे उनके अंदर ना एक हीन भावना आ जाती है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये भी क्या एक गंभीर समस्या है हमारे बच्चों के अंदर?
1: हाँ, ये एक्चुअली सबसे पहले हमको समझाना होगा कि सोशल मीडिया का मोस्टली लोग अपनी
0: जी
1: लाइफ का खाली हाइलाइट्स दिखाता है, ठीक
0: बिल्कुल
1: है, एक्चुअल
0: जी
1: रियलिटी क्या है वो नहीं दिखाता है। और क्या
0: जी
1: हो सकता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो भी हो सकता है।
0: जी
1: आज पहले बोला था ना, लाइक कॉन्स्टेंटली कंपेयर करना किसी के साथ, इनका
0: जी
1: लाइफ
0: जी
1: बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, इनको
0: जी
1: पैसा है, हमको एक्चुअली एक्चुअल बैकग्राउंड पता नहीं है ना, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये स्ट्रगल्स, इनका फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी हो सकता है, इमोशनल स्ट्रगल्स भी हो सकता है, इसका बाहर आने के लिए ये सब रील्स वगैरह करना शुरू करता है पहले, मगर वो
0: जी
1: आदत होने के बाद ऑलमोस्ट एडिक्शन, इट्स लाइक फोमो ज्यादा होता
0: जी जी
1: है।
0: मैडम एक और बात हम जानना चाहेंगे आपसे कि बच्चों के अंदर एंजाइटी की समस्या तो आ जाती है, लेकिन ये क्यों आती है, ये किस वजह से होती है, आप इस जो एंजाइटी की प्रॉब्लम बच्चों में डेवलप होती है उसके पीछे का रीजन क्या है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से होता है या फिर
1: नॉर्मली
0: वो?
1: एक एक कारण तो नहीं रहता है, बहुत सारा कारण हो सकता है, एनवायरमेंटल
0: जी
1: फैक्टर्स लाइक घर का माहौल कैसे चल रहे हैं, नहीं है
0: जी जी
1: तो एकेडमिकली प्रेशर कैसे है, कितना है, कितना तक ले सकते हैं वो प्रेशर,
0: जी
1: ठीक,
0: जी
1: नहीं है तो रिलेशनशिप का इश्यूज, आजकल बच्चे एडोलसेंस में ही शुरू किया वो रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप
0: बिल्कुल
1: का ब्रेकअप्स भी हो रहे हैं, ये ब्रेकअप्स का वजह से भी हो सकता है, मोबाइल एडिक्शन में और चिड़चिड़ापन, ये सब का हम इन केस खींचे गए तो, इनके मोबाइल खींचे गए तो वो भी अच्छा नहीं लगता है इन लोग,
0: जी
1: तो
0: जी
1: धीरे धीरे ये एंग्जाइटी में भी कन्वर्ट हो सकता
0: अच्छा मैडम कैरियर
1: है।
0: और भविष्य और परीक्षाओं को लेकर भी बच्चों के अंदर घबराहट देखी जाती है या फिर एक फोबिया टाइप का डेवलप हो जाता है उनके अंदर, जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती है बच्चा घबराहट का शिकार हो जाता है, उसके अंदर एक अनजाना सा डर हो जाता है कि क्या पता वो पास कर पाएगा या नहीं, या फिर वो जिस एक लेवल की तैयारी कर रहा है वो उस लेवल तक पहुंच पाएगा कि नहीं अपनी परीक्षा में, तो इस तरह की होने वाली
2: एंजाइटी से जो हमारा यूथ है, हमारा बच्चा है, वो कैसे इससे निपटेगा?
1: हाँ, ये वाला आज एक मेजर प्रॉब्लम हुआ यंगस्टर्स में स्पेशली, क्योंकि ये एक बार फेल्यूर देखेंगे तो इनका सेल्फ वर्थ का ऊपर बहुत डाउट करना लगता है. मैं इसी चीज में फेल हुआ, मे बी एक्सटर्नल फैक्टर्स का वजह से भी वो फील आ सकता है, मगर ज्यादा अपना आपको सेल्फ डिमोटिवेट करके, सेल्फ वर्थ लेस करके ये सब बहुत सारा हुआ. तो इसका वजह से ये परफॉर्मेंस में, इनका एकेडमिकली और वर्क में, दोनों में परफॉर्मेंस कम होना और फियर ऑफ फेल्यूर डेवलप धीरे धीरे करेगा वो लोग.
2: जी जी, क्या आप भी मानती हैं कि रिलेशनशिप और लाइफस्टाइल का जो एक बड़ा प्रभाव बच्चों के जीवन पे पड़ता है?
1: यस डेफिनेटली, क्योंकि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों साथ में ही जाएगा. ऐसे नहीं फिजिकल हेल्थ है तो मेंटल हेल्थ अच्छा है, दोनों साथ में ही जाएगा. क्योंकि ज्यादा कॉफी पीना, कैफीन लेना, स्लीप नहीं है तो इरेगुलर मील्स, खाना समय के हिसाब से नहीं खाना, फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा रहना नहीं है तो कंटिन्यूअसली आजकल स्क्रीन टाइम, स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ज्यादा हुआ, ये सब भी धीरे धीरे एंग्जाइटी का सिम्टम्स इंक्रीज होते रहता है. तो हम रेगुलरली बैलेंस करना पड़ता है.
2: जी, और मैडम एक अहम बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी बच्चे अचानक से वो पैनिक होने लगे या फिर उसके अंदर तेज घबराहट हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
1: सबसे पहले खुद को रिमाइंड करना, मुझे एंग्जाइटी फील हो रही है लेकिन राइट नाउ मैं सेफ हूँ. ज्यादा एंग्जाइटी फील होगा तो एक टेक्निक है, सिंपल ब्रीथिंग टेक्निक बोलता है, 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग टेक्निक बोलता है.
2: मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपने जो ये कहा कि 5-4-3-2 ग्राउंडिंग टेक्निक, ये क्या है और इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करिए हमारे श्रोताओं को, विस्तार से बताइए कि ये क्या टेक्निक है और इसको कैसे काम में लेना चाहिए.
1: ये 5-4-3-2-1 टेक्निक क्या है? ये आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फील हो रहा है उस टाइम में, आपका सामने 5 चीजों देखना है, 7 चीजों जो भी है आप टच करके फील होना है.
2: ठीक
1: है, 3 आवाज कहीं भी आप आंख बंद करके कहीं भी आपका आवाज सुनना है, 3 चीज.
2: अच्छा.
1: और 2 कुछ आप स्मेल करना है, फ्लावर का स्मेल, घर में खाना पका रहे उसका स्मेल, जो भी स्मेल. और लास्ट 1 में टेस्ट, इन केस ऑफ कॉफी पिया और टी पी लिया, जो भी टेस्ट. एक्चुअली ये सब क्यों करना है, पूरा आपका सेंसेस पूरा एक नॉर्मल प्रेजेंट में लेके आने के लिए, क्योंकि एंग्जाइटी में हमारा सोच भी ज्यादा सोचते रहता है, नेगेटिव सोच तक भी पहुंचेगा वो, तो वो धीरे धीरे कम करके हमारा नॉर्मल प्रेजेंट सिचुएशन को आने के लिए ये 5-4-3-2-1 टेक्निक ब्रीथिंग करेंगे.
2: जी, तो मैडम हम इसको

0: कह सकते हैं कि हम अपने ध्यान को दूसरी जगह लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर हम फील कर रहे हैं कि हमारे अंदर घबराहट आ रही है तो हम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेंगे उस जगह से, अपने आप से फोकस हटा करके हम दूसरी चीजों पे अपना फोकस लगाएंगे तो शायद हम एंजाइटी कम महसूस करेंगे। और मैडम हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्हें ये कब समझ जाना चाहिए कि अब हमारा बच्चा जो घबराहट की या फिर एंजाइटी की प्रॉब्लम से जूझ रहा है अब वो ज्यादा हो चुकी है, अब हमें किसी काउंसलर से मिलना चाहिए या फिर हमें डॉक्टर की सलाह किस समय पे ले लेनी चाहिए?
1: नॉर्मली हेल्प मांगना के लिए कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होना इट्स क्वाइट नॉर्मल। नॉर्मली हम फिजिकल बुखार आएंगे तो नॉर्मली फिजिशियन के पास जाएंगे ना, बेसिकली हम एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास भी जा सकते, ये कमजोर नहीं है। इंडिया में अभी भी थोड़ा स्टिग्मा है, ये कमजोर लोग जाएंगे, ये हमारे लिए नहीं है, ये सब स्टिग्मा अभी भी है। मगर ये कमजोर एक्चुअली नहीं है, ये सपोर्ट ये आपको जरूर चाहिए, क्योंकि ये सपोर्ट आपको जरूर कब सोच आएगा, आपको पहले सेल्फ अवेयर करना है, लाइक आपको खुद को क्या हो रहा है अंदर अंदर, फिजिकली हो रहा है नहीं है तो ना मेंटली हो रहा है, पहले आप सेल्फ अवेयरनेस होना है, उसके बाद आप इनका सपोर्ट ले प्रोफेशनल।
0: तो मैडम पहले अपने आप में हमें जागरूक होना होगा कि हम कौन सी सिचुएशन से जूझ रहे हैं, हमें पहले उसका पता लगाना होगा कि हम अपने आप में कैसा फील कर रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास हमें जाना होगा। मैडम आप क्या एग्री करती है, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हम किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो जो हमारे आसपास के लोग हैं ना वो ये सोचते हैं कि जो मेंटल स्थिति मतलब जिनकी खराब होती है या फिर जो पागलपन का दौरा बोल सकते हैं या फिर मानसिक स्थिति जिनकी खराब हो जाती है, लोग सोचते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है तब वो डॉक्टर के पास गया, तो क्या ऐसा मानना सही है?
1: ऐसे लोग तो मानते रहता है क्योंकि हमको पता है हमको अंदर अंदर क्या चल रहा है, दिमाग में हम कितना कैसे पार नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये कांस्टेंट कहा एसिड एक कांस्टेंट कंपैरिजन का वजह से लोग ऐसे क्या सोचेगा, हम इनका मदद ले लेंगे तो पागल जो सोचेगा, और क्या ये वो सोते हम बाहर आना है एसिड, ये हेल्प सीखना ये वीकनेस ही नहीं है एक्चुअली, अपना आपको पहले एक्सेप्ट करिए मेरे को ये चीज मेरे लिए अच्छा होगा।
0: सबसे पहले अपना विश्वास हमें रखना होगा अपने आप पे कि हम इस मनोवैज्ञानिक से मिलके अपने आप को हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, लोग क्या बोलते हैं हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छा मैडम अब एक और बात अहम बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिन पेरेंट्स के बच्चे एंजाइटी डिप्रेशन या फिर घबराहट जो भी आप बोलना चाहें उससे ग्रसित हो जाते हैं, तो अभी जो पेरेंट्स हैं उनका क्या रोल होना चाहिए इससे ओवरकम करने के लिए, इससे बाहर निकालने के लिए अपने बच्चों को, बच्चे को माता पिता कैसा सहयोग करें?
1: ये बहुत बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है। कभी कभी नॉर्मल नर्वसनेस और यू नो सैडनेस ये नॉर्मल चीज, एक इंटरव्यू जाना है नहीं है तो एग्जाम देना है, ये स्ट्रेस नॉर्मल चीज है, मगर ये स्ट्रेस का प्रेशर कितना ये बच्चे नहीं है तो यंग एडल्ट ले रहे, इसका ये सब पेरेंट्स बहुत ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करने के बाद इन केस वो बच्चा आके पेरेंट्स को बोलेगे तो मेरे को मेरे से नहीं हो रहा आप सपोर्ट देना पड़ता है। कैसे सपोर्ट देना है, आप कहा आपको मुश्किल हो रहे, कहा यहाँ से कुछ मदद कैसे कर सकते, किसी से बात रिसोर्सेस कहाँ से लेके आके आपको सपोर्ट करना है, कल पेरेंट्स क्या दिमाग में क्या सोचता है तुरंत जज करने लगता है
0: जी,
1: आपको बिल्कुल नहीं आता है वो बच्चा देखो अच्छा से कर रहे, ऑल्सो अगेन पेरेंट्स स्टार्ट कंपेयरिंग तो वो बच्चा अच्छा कर रहा है उनको होगा आपको क्यों नहीं होगा,
0: जी,
1: तो प्रेशर आपको बच्चों को नहीं इतना नहीं ले पा रहे इसीलिए आपको मदद करने के लिए आया
0: जी,
1: तो आप इतना एक बच्चे लोग क्या बोलना चाहिए पहले एक्टिवली लिसन करना है, अच्छा से सुनना है, बीच में इंटरप्ट नहीं करना है उनको, और धीरे धीरे वो चीज बोलते रहता है, ज्यादा चिड़चिड़ापन और रेस्टलेसनेस, ज्यादा कॉन्स्टेंटली ओवरथिंक करते रहता है, ज्यादा नींद भी नहीं है, तो वो भी एक आपको आइडेंटिफाई करने का एक साइन है
0: जी।
1: ये ज्यादा नॉर्मल वर्री का ऊपर ज्यादा एक्सेसिव वरी वो होना है, ये सब चीज आप इतना ऑब्जर्व करके सपोर्ट करना है बिना कुछ बोल के, वो भी
0: जी
1: नेगेटिव नहीं बोलना है।
0: मतलब कि माता पिता को समझना है बच्चों की स्थिति को, कि वो कैसी स्थिति से जूझ रहे हैं, और उन्हें किसी से कंपेयर नहीं करना है अपने बच्चों को। हर बच्चे में
1: कंपैरिजन इज अ थीफ।
0: जी, हर बच्चे में अपनी एक क्वालिटी होती है, हम किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते कि वो ये अच्छा कर रहा है। हो सकता है सामने वाले का बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन आपका बच्चा भी किसी न किसी क्षेत्र में तो अच्छा कर रहा होगा उससे भी, तो आपको उसकी अच्छाई को लेके चलना है। हाँ, और अपने बच्चे को उसी अच्छाई के साथ हमें मोटिवेट करना है कि ठीक है, एक बार नहीं हुआ, हम अगली बार फिर से कोशिश करेंगे, फिर करेंगे, हम कर सकते हैं।
1: राइट, मोटिवेट करना है और इनको सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे नहीं करना है। ठीक है, आप नहीं कर पाए, आपसे नहीं होगा, इतना बार किया, आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा। धीरे धीरे हम सबकॉन्शियसली इनको बोल रहे हैं आप फेल्यूर।
0: जी,
1: तो बच्चे लोग
0: हमें
1: क्या सोचता है, ठीक है हम फेल्यूर ही है, तो क्या मतलब है हम इतना मेहनत करके, ऐसे सोच
0: जी
1: आएगा, इनका बिलीफ सिस्टम
0: बिल्कुल
1: ऐसे ही
0: बिल्कुल,
1: डेवलप होगा।
0: यानी कि हमें बच्चों को बिल्कुल ये नहीं कहना है कि आपसे नहीं होगा, बल्कि हमें ये कहना है हमारे बच्चों से आपसे होगा, आप कर पाओगे, हम आपके पीछे हैं, हम आपके सपोर्ट में हैं, आप कीजिए, हम आपके पीछे हैं।
1: राइट, हम आपके साथ हैं।
0: जी, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, हम आपके साथ हैं, आप आगे
1: हाँ
0: बढ़िए, हम आपके पीछे हैं, हम आपके सपोर्ट में हैं, कोई क्या बोलता है उससे आपको ध्यान नहीं देना है, हम आपके सपोर्ट में हैं, आप आगे बढ़ो। इस तरीके से हमें बच्चों को मोटिवेट करना है, और इस तरीके से ही हम अपने बच्चों को किसी भी एंजाइटी से बाहर निकाल सकते हैं। एंजाइटी कहने से मतलब किसी भी तरह की घबराहट, किसी भी तरह के तनाव से हम उन्हें बाहर कर सकते हैं। मैडम, एक और बात हम जानना चाहेंगे कि एंजाइटी और डिप्रेशन, इसको हम कहाँ तक एक मान सकते हैं या दोनों अलग अलग चीजें हैं?
1: दोनों अलग अलग चीज है। एंग्जाइटी हम पहले बोला था ना, ये थोड़ा नॉर्मल चीज है, दो तरह का भी है। एक नॉर्मल चीज होता है, हम इंटरव्यूज एग्जाम्स है, नहीं है तो पहले प्रोजेक्ट है, ये सब थोड़ा एंशियस फील होता है। हम एक बार डेडलाइन पार होने के बाद एंशियसनेस कम होते रहता है, मगर एज इफ ये 2 हफ्ता और 3 हफ्ता का ऊपर तक ऐसे चलते जा रहे, देन एंजाइटी में ये चिड़चिड़ापन, ज्यादा नींद नहीं आता है, नहीं है तो ज्यादा खाता है, नहीं है तो बिल्कुल नहीं खाता है, ये सब चेंजेस धीरे धीरे आते रहता है, ये वाला एंजाइटी तक एंजाइटी बोल सकते हैं। और डिप्रेशन क्या है, पूरा होपलेस फीलिंग है, हम बिल्कुल उठने का मन भी नहीं रहता है, पूरा का पूरा आइसोलेट करता है, किसी के साथ नहीं बात करता है, तो किससे मिलने भी मना करता है, तो जो भी एक्टिविटीज पहले एंजॉय किया था अभी बिल्कुल नहीं करता है। ये दोनों का एंजाइटी नॉर्मल रेगुलर फंक्शनलिटी रेगुलर चलते रहता है, दो एंग्जियस फील होगा, मगर डिप्रेशन बहुत मुश्किल है।
0: कई बार मैडम हमने सुना है कि जब कोई भी व्यक्ति अगर डिप्रेशन में होता है तो कई बार वो अपनी जान तक देने की कोशिश करता है ऐसे में, तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे परिवार में, हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो डिप्रेशन में है, तो उसको उस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
1: हम पहले बोला था ना, लाइक पेरेंट्स का सपोर्ट, हम आपके साथ है, ऐसे में हम एडवाइस नहीं देने वाला है, हम खाली आपके साथ है, हम कल आपको क्या मन में है, मन खोल के बात करने का इनको मौका देना पड़ता है। ऐसे नहीं तुरंत तुरंत आधा वो बोलने शुरू किया, तुरंत हम एडवाइस देने लगे, तो ये चीज नहीं कर। और इनके साथ ऑलमोस्ट वो बाहर आने तक धीरे धीरे फिर शुरू करना है, धीरे धीरे एक्टिविटीज में लेके जाना, और किसी से और पार्टीज में कहीं भी सोशलाइज करना, ये धीरे धीरे इनके साथ रहना पड़ता है। और ये वाला चीज आइडेंटिफाई भी करना है इनको, बिल्कुल डिप्रेशन में नो अलग अलग थॉट्स भी आ सकता है, राइट, वो थॉट्स जैसे आप आइडेंटिफाई करना है, ये बीच बीच में एक एक सिम्टम्स जैसे ये सब चीज हम ऐसे लाइफ की क्यों आई एम लिविंग, तो ये सब बोलेगा तो नहीं है तो इनको क्या पसंद है, वो सब चीज किसी को देना, ये सब एक एक यू नो टू आइडेंटिफाई, इट्स अ हाई टाइम आप प्रोफेशनल हेल्प लेना।
0: जी जी मैडम, माता पिता तो उनका सहयोग करेंगे ही करेंगे, तो इसके अलावा जब वो डॉक्टर से मिलेंगे, उनको कुछ अगर डॉक्टर के हिसाब से अगर जरूरी हुई तो उन्हें कुछ दवाइयां उन्हें दी जाएंगी, इसके अलावा भी क्या कोई

0: थेरेपी है जो इनकी सहायता कर सकती है, या फिर कोई एक्सरसाइज, कोई मेडिटेशन जो इनको काम आ सकता है?
1: हाँ, हम एज बोला, आई मीन लाइक डिप्रेशन और एंग्जायटी, डिप्रेशन में सबको ऐसे नहीं दवाई ही चलना है,
0: जी
1: दवाई दवाई के साथ थेरेपी भी
0: जी
1: लेना पड़ता है। ओके,
0: जी
1: थेरेपी में क्या क्या बोलता है, ये एक्चुअली रूट कॉजेस, कहाँ से आपका ये डिप्रेशन का थॉट्स, नहीं तो ये नेगेटिव थॉट्स एक्चुअली डिप्रेशन तक कब पहुंचेंगे। पहले
0: जी
1: ज्यादा ओवर थिंक करता है, इसके बाद
0: जी
1: चिड़चिड़ापन, ज्यादा नींद नहीं, इंसोम्निया हो सकता है, नहीं है तो ज्यादा खाना, नहीं है तो बिल्कुल नहीं खाना, ये सब अर्ली साइंस में हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो वो तो डिप्रेशन तक पहुंचेगा। तो ये पहले ही आए, पहले हम पहले बोला था ना लाइक सेल्फ अवेयरनेस, आप पहले अपना
0: जी
1: आपको समझो, समझने
0: जी
1: के बाद आपका अर्ली साइंस आप आइडेंटिफाई करके तुरंत आपको प्रोफेशनल हेल्प ले लेंगे तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा थेरेपी इसका वजह से। वहाँ हम
0: जी
1: अलग अलग इंसान को अलग अलग इश्यूज रहता है तो अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स हम इनको बोलेंगे।
0: थेरेपी भी इसमें बहुत काम करती है इस समस्या से निकलने के लिए।
1: हाँ, बहुत सारा लोग सोचता है नॉर्मल दवाई खाएंगे तो ठीक होगा, मगर
0: जी
1: नहीं, दवाई के साथ थेरेपी बिल्कुल जरूरी है, दोनों में
0: और
1: एक छोड़ेगा तो फिर वापस आएगा, फिर पहले
0: जी
1: जैसे था वैसे आ सकता।
0: यानी कि दवाई के साथ साथ थेरेपी का भी उतना ही ज्यादा सहयोग लेना होगा आपको उससे एंजाइटी या डिप्रेशन से निकलने के लिए।
1: यस,
0: मैडम, मेडिटेशन और योग का कितना इसमें लाभ मिलता है?
1: इसका दोनों में मीन एडवांटेजेस तो है, क्योंकि
0: जी
1: मेडिटेशन और योगा में अपना आपको समझने के लिए एटलीस्ट आपको समय मिलता है,
0: जी
1: राइट? तो
0: जी
1: समय
0: जी
1: आप निकालेंगे तो एक बार आपका दिमाग ठंडा होने के बाद हमारा सोच, जो भी
0: जी
1: डिस्कस साइकिल में हम हाँ वो वाला से बाहर आने का, क्योंकि दूसरा तरीका सोच आने के लिए, स्पेशली पॉजिटिव सोच आने
0: जी
1: का बहुत चांसेस है, तो मेडिटेशन
0: जी
1: योगा बहुत अच्छा है।
0: मैडम, आपने आज डिप्रेशन और एंजाइटी यानी कि घबराहट से जुड़ी हुई समस्याओं पर हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी। उन्हें बताया कि कैसे वो अपना और अपने बच्चे का, अपने परिवार का ध्यान इस एंजाइटी से बचाने में रख सकते हैं। तो मैडम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम, चल कार्यक्रम से विदा लेने का वक्त हो चला है, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश दें।
1: फाइनल मैसेज एक देना चाहिए, लाइक आपको हर बैटल अकेला फाइट करने का जरूरी नहीं है,
0: जी
1: हेल्प मांगना वीकनेस तो नहीं है, मतलब
0: बिल्कुल
1: आपका टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर मेंटल वेलबींग, आप
0: जी
1: कैसे आप फिजिकल वेलबींग को आप मदद लेता है, बेसिकली मेंटल वेलबींग भी बहुत जरूरी है।
0: जी थैंक यू मैडम, आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए।
1: धन्यवाद।
0: नमस्कार जी, धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता। विषय था बच्चों में बढ़ती एंजाइटी की समस्या को माता पिता ना करें नजरअंदाज। भेंटवार्ता का थी समस्या काउंसलिंग की काउंसलर सौजन्या और उनसे बातें कर रही थी मैं यानी संगीता। इस भेंटवार्ता के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: चल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

इस जरूरी संदेश के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम विविधा अब यहीं समाप्त होता है। तो इस कार्यक्रम से मुझे यानी संगीता को विदा दे, नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा, आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं हमारा आज का अगला कार्यक्रम, फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। कार्यक्रम रसरंजन में हमारे सभी श्रोताओं का मैं संगीता तहे दिल से स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाती हूँ कार्यक्रम का ये पहला गीत, गायक कलाकार अलका याग्निक और उदित नारायण के युगल स्वरों में, फिल्म ताल से।

0: वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
1: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की। खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे। लगता था ऐसे ही चलेगा, पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी, आयुष्मान वह वंदना कार्ड से। आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के हकदार।
2: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वह वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: इन जरूरी संदेशों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम रस रंजन में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। श्रोताओं, विराम पे जाने से पूर्व हमने आपको सुनवाया था फिल्म चलते चलते से ये गीत। आवाजें थी गायक कलाकार अभिजीत और अलका याग्निक की। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला गीत गायक कलाकार अनुराधा पौडवाल के स्वर में फिल्म दिल है की मानता नहीं से।

श्रोताओं, फिल्म दिल है कि मानता नहीं के इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम रस रंजन अब यहीं समाप्त होता है। तो अब इस कार्यक्रम से हमें विदा दें। नमस्कार।

FM के 101.7 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाह्न के 10 बज चुके हैं। वक्त हो चला है NCERT के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। तो लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार और जय जोहर। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
2: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
1: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था। प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है या सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे।
2: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था। इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
1: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है, यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद NR प्रसाद जी और अखिला जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन, और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी राम दुलारी जी का।
2: जी इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं,
1: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद, प्रेरणाप्रद और ज्ञानवर्धक होता है। हम तो नियमित श्रोता हैं, आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
2: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाए तो बहुत इनायत होगी। आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
1: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
2: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
1: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था कि मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों।
2: श्रोताओ इसका जवाब जान लेते हैं। मातृ वृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं।
1: जी, और हमारा दूसरा प्रश्न था पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है। कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है। साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
1: जी, हमारा अगला प्रश्न था क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
2: जी इसका जवाब भी जान लेते हैं। बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
1: जी अशोता, हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने आपसे पूछा था जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो उदाहरण दीजिए।
2: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
1: जी तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है कंगारू के कितने पैर होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: कंगारू के कितने पैर होते हैं।
1: 8800440559 पर जो हमारा IBRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@CIET.NIC.IN पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
2: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
2: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।
3: अरे भागो भागो, वो देखो हमारे आगे पशु पक्षी
4: को क्या हो गया, हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा। अरे
5: अरे हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे फसल बर्बाद,
6: फसल बह गई।
7: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी माँ की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता, वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी, नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
8: लो भाई पहुंच गए सरितपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
6: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत। आहा,
8: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। आहा, कितना साफ पानी है।
7: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
8: अरे काट काट काट, मेरा भी क्या देख रहा, काट।
9: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
7: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी

0: कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
1: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
0: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
2: अरे काट काट काट, तो और काट, दस से क्या मिलेगा भाई, 420 चाहिए।
3: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते
3: उफ, इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
4: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
5: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
0: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे, और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
6: अरे हमारे पशु पक्षी, हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा,
7: लगता है नदी क्रोधित हो गई है।
6: क्या
4: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे फसल बर्बाद,
7: सारी फसल बह गई।
6: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा,
7: सारा
6: सामान जल्दी से ऊपर ले जाना होगा।
7: चलो जल्दी ऊपर,
6: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो चलो जल्दी चलो
7: चलो चलो,
6: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप वाप ना आ जाए,
7: ध्यान से संभल कर।
0: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
8: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी, बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी,
5: बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार। अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
9: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा। शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। श्रोताओं, आपको अवश्य ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है एक गांव की कहानी।

ये बात बहुत पुरानी है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे। घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना। उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोक गीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं, मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा लाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता। मैं ही जीवन हूं धरती का, मुझे नष्ट मत करो। मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान।

0: रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी। वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती। जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।
1: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहां निकल गई है तू? अकेली जंगल में दूर मत जा।
2: अरे चाची, मैं यही तो हूँ। अरे चाची,
1: हाँ,
2: यहाँ आकर तो देखो।
1: हाँ हाँ,
2: कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के।
1: हाँ,
2: सबको यहीं पे बुला लो चाची।
1: हाँ हाँ,
2: सात आठ छत्ते तो होंगे ही।
1: अरे ओ रेवती, अरे सुनो तो, श्यामा।
3: हाँ चाची।
1: जिंदौरी।
3: हाँ चाची।
1: और हाय हाय, ये नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। हाँ प्रसन्नी, अरे सब इधर आओ, जरा सुनो तो, ये गौरा क्या कह रही है।
3: आ रही हूँ चाची।
1: हाँ चाची।
4: क्या है चाची?
1: अरे क्या हुआ?
4: कोई घबराने वाली बात नहीं है री।
1: वो गौरा कह रही है कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं।
4: छत्ते? क्या मतलब?
1: हाँ हाँ छत्ते, वो भी दो तीन नहीं, बड़े बड़े सात आठ छत्ते लगे हैं। हाँ
4: सात आठ छत्ते, कमाल है।
3: अरे फिर तो मजा आ गया।
4: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो दो गगरी फट तो हो ही जाएगा।
5: अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद, अब तक कहीं नहीं मिला, और आज मिला है तो
3: छप्पर फाड़ कर।
4: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं।
5: क्यों नहीं, शहद निकालने के बाद दातुन भी तोड़ लेंगे।
3: अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं।
4: ठीक है ना, चल चलते हैं।

0: तो ऐसा था वहां का दैनिक जीवन। जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तूण, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: अरे गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? आवाज तो आ रही है। अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है।
1: मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वो देख गौरा।
2: अरे हाँ, वो साल के बड़े पेड़ के पास।
1: हाँ वही,
2: न जाने कौन लोग हैं।
1: पता नहीं कौन लोग हैं।
2: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाज़ें ना सुन ले। चलो और नजदीक चल के देखते हैं।
1: चलो सिर पर टोपी और हाथों में बंदूक भी है। ये गांव के लोग तो नहीं लगते।
2: अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं जो पेड़ काटने आए।
1: अरे अरे देखो तो, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
2: हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे।
1: मगर कैसे? भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है? और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं।
2: अरे भले ही हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकना ही है। मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं।
1: ठीक रहेगा।
2: मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं, वो रास्ता छोटा लगेगा।
0: तो बस फिर क्या था, गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी। कटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए, खरोंचे लगी, प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया, पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए। मगर बिना रुके वो दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।
1: हाय राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा?
2: अरे गांव में मर्द नहीं है तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है ना, हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा।
1: हाँ, ठीक है।
3: मगर ये औरतें और बच्चे।
2: अरे अगर मगर मत कर, क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है? हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी।
1: हाँ,
2: नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा।
1: हाँ,
2: अरे कोई है? अरे बाहर निकलो, चाची।
4: हाँ, क्या बात है?
2: बुआ जल्दी बाहर आओ, शहर के लोग हमारा जंगल काट रहे हैं।
1: क्या जंगल
2: जल्दी आओ,
0: और फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने। उसके साथ 21 स्त्रियां और 7 बच्चे थे, सभी के सभी निहत्थे थे। उन्हें एक तरकीब सूझी। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जगह जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया, ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो ये संभव ना हो सके। अब सारी स्त्रियां आगे बढ़ी और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे।
5: हाँ, हाँ,
2: सुनो,
5: हाँ,
2: सुनो, सुनो,
5: वृक्ष हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं।
6: बिल्कुल,
5: इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब उन्हें काटा जा रहा है तो आओ अपने प्राणों की आहुति देकर इनकी रक्षा करें।
7: लेकिन हम क्या करें, इनके पास तो हथियार है।
5: अरे डरो मत, भाग कर हर बहन एक एक पेड़ से चिपक जाए ताकि ये पेड़ न काट सके। भागो, चलो पकड़ लो प्राणों को। अरे हटो हथियार को।
8: अरे अरे हटो हटो, नहीं काट सकती
5: हम
8: पर,
5: ये कुछ नहीं कर सकते। चाची
9: सबको बड़ी बहादुर बनती है।
5: हम जान दे देंगे मगर पेड़ों को नहीं छोड़ेंगे। अरे देखते क्या हो, चलाओ कुल्हाड़ी। अरे शिब्बा, शिब्बा तू तो हमारे गांव का ही है, मार अपनी बहनों को।
8: अरे साथियों देखते क्या हो, आगे बढ़ो और ये
0: इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
10: चिब्बू भाग ले यहां से,
11: बाद में
0: सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
12: वाह भैया, गौरा ने तो बहुत कमाल का काम कर दिया।
13: ऐसी ऐसी चिपकी पेड़ से किसने छोड़ा ही पेड़ को। अरे वाह, क्या बात है
14: भाई, गौरा वाह, कमाल कर दिया।
15: जीतती रहे मिट्टी, जीतती
16: रहे। तो हम सबका कर्तव्य है।
0: दोस्तों, इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है।
17: एक गांव की कहानी अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
18: और विमलेश को,
17: कुसुम लता,
18: जगबंधु,
17: चेतना
18: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
17: नमस्कार, नमस्कार।
19: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
20: अभी आप सुन रहे थे NCERT के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाह्न के 10:30 हो चुके हैं। हमारा आज का अगला प्रसारण आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का होगा, जो कि प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। तो आइए इन कार्यक्रमों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र।
21: 10:30 हो चुके हैं, समय है हमारे दैनिक प्रसारण का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जोहार रांची।

0: जोहार रांची कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त रचना।
1: और मैं हूँ आपकी दोस्त मीता। आप सभी को
0: हमारा
1: नमस्कार जोहार।
0: मीता आपको भी मेरा जोहार।
1: बिल्कुल। और रचना, हमेशा ही हम इस कार्यक्रम में ढेर सारी बातें करते हैं। हमारी बातों का सिलसिला जब एक बार शुरू होता है तो थमता ही नहीं।
0: बिल्कुल, जब हम लोग सखियां मिल जाती हैं ना तो बातें करते जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा प्रोग्राम है। हाँ। हमें बताना भी है, गाने भी सुनाने हैं।
1: कार्यक्रम तो जोहार रांची है और हमारे सभी श्रोता इस समय बैठे होंगे रेडियो ट्यून करके। तो इससे पहले कि हम बातों का सिलसिला शुरू करें, क्यों ना एक प्यारा सा गीत हम अपने श्रोताओं को सुना दें।
0: हाँ,

0: के तले।
1: रचना, हमारी भी कोशिश होती है कि हम अपने श्रोताओं को एक ऐसी दुनिया में ले चले एक घंटे के लिए, जहां उन्हें ज्ञान की बातें भी कुछ हो, कुछ अच्छे विचारों को भी सुनने को मिले, कुछ गाने भी सुनने को मिले। मतलब कुल मिलाकर हम उन्हें एक पूरा पैकेज देना चाहते हैं इस एक घंटे के प्रोग्राम में, है ना?
2: सही बात है।
1: तो गाने तो हमने सुन लिए, अब कुछ सदविचार भी हमारे होने चाहिए, क्या रचना?
2: हाँ, बिल्कुल सही कहा मीता आपने। जैसे हम बोलते हैं कि किताबें और उपन्यास कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने का सबसे बड़ा माध्यम है।
1: हाँ, यूनेस्को ने कहा है कि जो समाज पढ़ने की आदत बचाए रखता है वह सीखने की संस्कृति बचाए रखता है।
2: बिल्कुल, पढ़ने की आदत किशोरों के बौद्धिक और भावनात्मक संतुलन को सहारा देती है।
1: हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है रचना, हर सुबह के समाचारों में ज्ञान का जो प्रवाह है वह हमारी चेतना को जगाता है।
2: बिल्कुल, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से भी कहा गया है कि रोज पढ़ना भाषा और अभिव्यक्ति को बेहतर बनाता है।
1: आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने कहा है, पढ़ना केवल पाठ समझना नहीं, उद्देश्य पाना और समाज में भागीदारी करना भी है।
2: पढ़ना हमें अनगिनत दुनिया से परिचित कराता है।
1: हार्वर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि किताबें पढ़ने से सहानुभूति और दूसरों को समझने की क्षमता बढ़ती है।
2: सिर्फ 6 मिनट शांति से कोई किताब या समाचार पत्र पढ़ने से तनाव का स्तर 68% तक घट सकता है।
1: मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट अमेरिका का कहना है कि किताब पढ़ते समय दिमाग कई हिस्से एक साथ सक्रिय करता है, जिससे स्मृति बेहतर बनती है।
2: और यूनेस्को का कहना है कि पढ़ना और सीखने को उम्र से मुक्त कर देता है।
1: और वैसे रचना, अक्सर लोग सोचते हैं कि जब बच्चा बोलना या पढ़ना सीख जाएगा तब हम उसे किताबें सुनाएंगे, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि न्यू बोर्न बेबी को बोलकर किताबें पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए।
2: हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। भले ही वे शब्दों का मतलब ना समझे, लेकिन ये आदत उनके दिमाग के विकास के लिए सुपर फूड की तरह काम करती है। और किताबें पढ़कर सुनाने से जो है बच्चा कम उम्र में नए नए शब्द सुनने लगता है, जो उसके दिमाग में स्टोर हो जाते हैं और बाद में बच्चे बहुत जल्दी बोलना सीखते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। माता पिता बच्चों को बचपन से पढ़कर सुनाते हैं, उन बच्चों का दिमाग ज़्यादा तेज विकसित और क्रिएटिव होता है। जब आप बच्चे को पास बैठकर प्यार से पढ़कर सुनाते हैं तो बच्चे को बहुत सुरक्षित महसूस होता है और ये आदत आपके और बच्चे के बीच गहरा और इमोशनल कनेक्शन भी बनाती है। वैसे भी हम सब जानते हैं कि किताबें पढ़ना बहुत अच्छी बात है, आपकी जो है बौद्धिक शक्ति को भी तेज करता है।
1: तो रचना, ऐसा है कि अगर हम किताबें पढ़ें तो बहुत सारी ज्ञान की बातें हमें तो मिलेंगी, लेकिन इंसानों को पढ़ना भी उतना ही आवश्यक है कि जिसके साथ हमारा उठना बैठना हो रहा है, जिन लोगों के संपर्क में हम हैं, तो वो कैसे लोग हैं, उनके विचार कैसे हैं, और उसके अनुसार हम उनके साथ तादाद में जो अच्छे से बैठा सकते हैं। तो एक इसी भाव का एक गीत हमने चुन रखा है अपने श्रोताओं को सुनाने के लिए, तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: की चपेट में है वो इलाके।
1: और उत्तराखंड में भी भूस्खलन से दो नेशनल हाईवे समेत 126 सड़कें बंद हैं। सियान चट्टी में भूस्खलन से ऋषिकेश यमुनोत्री हाईवे 3 दिन से बंद है।
0: मौसम विभाग ने सोमवार को यानी आज उत्तर के साथ बिहार, बंगाल और यूपी समेत 18 राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
1: बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से झारखंड में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने जा रहा है।
0: हाँ, मौसम विभाग के अनुसार राजधानी समेत झारखंड के विभिन्न भागों में आज बादल गहराएंगे और रुक रुक कर बारिश होगी। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राजधानी समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है।
1: और ये जो हम बात कर रहे थे ना कि बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन आया है उसकी वजह से ये असर देखने को मिल रहा है, और आज के मौसम में भी ऐसा ही असर देखने को मिलेगा। भी दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे और
0: उमस से लोगों को थोड़ी
1: वो
0: परेशानी
1: तो
0: होगी।
1: होगी ही।
0: हाँ, और रामगढ़ में सबसे अधिक 22.5 मिलीमीटर बारिश वो जो दर्ज की गई है। और मौसम विभाग ने कहा है कि कई जिलों में तेज हवा, गरज और वज्रपात की संभावना है, तो सभी को संभल कर रहने की चेतावनी दी गई है।
1: और ये भी
0: और
1: है कि अभी तक राज्य में जो है वो सामान्य से कम बारिश हुई है।
0: हाँ, तो बारिश की जरूरत तो है ही, और कई जिलों में है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है रचना। और रांची, खूंटी, गुमला समेत 14 जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। सिमडेगा, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका और हजारीबाग में गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।
1: और वहीं कुछ जिलों में तेज हवा और बिजली चमकने की भी आशंका है, इसलिए लोगों को खुले मैदान और पेड़ों के नीचे आसरा जो है नहीं लेना
0: नहीं
1: चाहिए,
0: लेना
1: ये
0: चाहिए, ये
1: खतरनाक हो
0: सलाह भी
1: सकता
0: दी
1: है।
0: गई है कि आप उससे ना उसके नीचे ना खड़े हो। और मौसम विभाग ने तो बता ही दिया है, बादलों ने भी डेरा डाल दिया है। आप इस समय आसमान को अगर देख रहे होंगे
1: हाँ,
0: तो
1: वो कभी धूप कभी छांव हो रहा है, कब आसमान अपना रंग बदल रहा है, और हो सकता है कभी बारिश भी हो जाए।
0: रचना, कई बार आकाश से बादल तो बरसते ही हैं, कई बार जब मन
1: उदास
0: दुखी
1: होता है।
0: हो तो आंखें भी बरसती हैं।

0: जोहार रांची में मिता, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं इतिहास की तरफ और बात करते हैं कि आज के दिन में क्या हुआ था देश दुनिया में खास, जिसकी वजह से वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। तो आज ही के दिन 1803 में महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय और अलेक्जेंडर डफ ने कोलकाता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज की शुरुआत की थी।
1: 1905 में कलकत्ता के साप्ताहिक समाचार पत्र संजीवनी ने ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का सर्वप्रथम सुझाव दिया था और 1929 में आज ही के दिन क्रांतिकारी जतींद्रनाथ ने अपनी ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की थी।
0: और 1977 की बात करें तो आज ही के दिन भारत सरकार ने भारत रत्न सहित अन्य नागरिक सम्मानों को वापस लेने की घोषणा की थी।
1: 1923 में कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजेलिस में माउंट हिल्स के पास जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए प्रचार के मकसद से हॉलीवुड लिखा गया।
0: और आज के दिन 1908 में महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भाग लेने की अनुमति दी गई। 1998 में भारत के लिएंडर पेस ने हॉल ऑफ फेम टेनिस चैंपियनशिप में अपने जीवन का प्रथम ATP खिताब जीता था।
1: 13 जुलाई 2011 में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तिहरे बम धमाकों से दहल उठी। ये धमाके मुंबई के झवेरी बाजार, ओपेरा हाउस और दादरा में हुए थे।
0: और 2004 में रूसी राष्ट्रपति ने साइबेरिया और देश के सुदूर पूर्ववर्ती इलाकों के विकास के लिए भारत से और मजबूत संबंधों की इच्छा जताई।

0: रचना, हम बातें कर रहे थे इतिहास की, तो इतिहास में कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ दुख देने वाली भी बातें होती हैं। तो आज हम क्यों ना उस पर चर्चा करें कि आज कौन से वो महान लोग थे जो हमें छोड़कर चले गए। आशापूर्णा देवी बंगला साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका थी, जिन्होंने विशेषकर महिला समाज की स्थिति पर अपनी कलम चलाई। इनका निधन 13 जुलाई 1995 को हुआ था।
1: आशापूर्णा देवी ने प्रथम प्रतिश्रुति, स्वर्णलता जैसी चर्चित कृतियां लिखी, जिनमें स्त्री स्वतंत्रता और समाज में महिलाओं के अधिकारों का मुखर चित्रण मिलता है।
0: उन्हें साहित्य अकादमी और पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनकी कहानियां और उपन्यास आज भी पाठकों में गहराई से दूर हो जाते हैं।
1: उनका साहित्य योगदान आज भी अमूल्य धरोहर बना हुआ है। और प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन 13 जुलाई 2021 को हुआ था। वे 1983 के ऐतिहासिक क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के प्रमुख स्तंभ थे। 1983 विश्व कप टूर्नामेंट में भारत के लिए दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले वे खिलाड़ी थे, जिन्होंने 8 मैचों में 240 रन बनाए थे, जिसमें वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले मैच में खेली गई शानदार 89 रनों की पारी भी शामिल थी।
0: 1978 में से 1985 के बीच भारत के लिए 37 टेस्ट मैच में 1606 रन और 42वें वनडे मैच में 883 रन बनाए। पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर उन्हें प्यार से संकट मोचक कहकर बुलाते थे। और रचना, ये तो बातें हुई निधन के बारे में, और ऐसे भी कुछ हस्तियां हैं जिन्होंने आज के दिन यानी 13 जुलाई को जन्म लिया है। उनमें से एक है फना, धूम 2 और गोलमाल रिटर्न जैसी फिल्मों में काम करने वाली लोकप्रिय फिल्म अभिनेत्री और मॉडल उर्वशी शर्मा। उर्वशी शर्मा ने भारतीय फिल्म जगत में नकाब फिल्म से डेब्यू किया था, जो कि बॉबी देओल और अक्षय खन्ना के साथ उन्होंने बनाई थी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार रांची
2: और हम बातें कर रहे थे इतिहास में जिनका कि आज जन्म हुआ था।
1: बिल्कुल, पद्म भूषण से सम्मानित भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका केसरबाई केरकर का जन्म 13 जुलाई 1892 को हुआ था। वे जयपुर अत्रौली घराने की प्रसिद्ध गायिका थी। 16 साल की उम्र से उस्ताद अलादिया खां से संगीत की तालीम लेने के बाद वे 20वीं सदी के उत्तरार्ध में सबसे बेहतरीन ख्याल गायिकाओं में से एक बन गईं।
2: और सुनीता जैन हिंदी और अंग्रेजी की प्रसिद्ध लेखिका थी। उनका जन्म 13 जुलाई 1941 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास और अनुवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुनीता जैन की रचनाएं स्त्री विमर्श और सामाजिक सरोकारों से गहराई से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हिंदी साहित्य का प्रतिनिधित्व किया। उनकी प्रमुख कृतियों में कांच के शब्द और स्मृति शामिल हैं। सुनीता जैन को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई सम्मानों से नवाजा गया। सुनीता जैन 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क 2007 में विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हिंदी की पहली कवित्री हैं। निहाल सरीन भारत के युवा और प्रतिभाशाली शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं।
1: उनका जन्म भी 13 जुलाई 2004 को केरल के त्रिमूर जिले में हुआ था। निहाल ने बहुत ही कम उम्र में अपनी बुद्धिमता और तेज चालों से दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने महज 14 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया
2: और तब से कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भी भारत का उन्होंने गौरव बढ़ाया है। उन्होंने जूनियर स्तर पर कई खिताब जीते और 2020 में ऑनलाइन फिडे ओलंपियाड में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई।
1: और अब बातें करते हैं रचना हम हिंदी फिल्म जगत की। तो बीना रॉय हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक थी, जिन्होंने 1950 और 60 के दशक में अपनी खूबसूरती और दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। उनका जन्म 13 जुलाई 1931 को लखनऊ में हुआ था। बीना रॉय ने अनारकली, ताजमहल, घूंघर जैसी सुपरहिट फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई।
2: उनकी सादगी और प्रभावशाली संवाद अदायगी ने उन्हें अपनी पीढ़ी की अग्रणी अभिनेत्रियों में शामिल किया। उन्हें फिल्म गजल के लिए विशेष सराहना भी मिली और घूंघट फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी उन्हें मिला।
1: एक बहुत ही हिट गीत है उनकी फिल्म का रचना। हम लोग अपने श्रोताओं को वो गीत सुनवाते हैं।

0: ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। इस जिंदगी को जिंदगी बनाए रखने के लिए रचना, खान पान की आदतों पर ध्यान देना
1: बिल्कुल,
0: बहुत जरूरी
1: हमारी
0: है।
1: जिंदगी अनमोल है, उसे संभालना बहुत
0: बिल्कुल
1: जरूरी
0: बिल्कुल,
1: है।
0: हमें कुछ अपने खान पान की आदतों पर हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसा ना खाएं पिए कि जिससे हमारी सेहत खराब हो। और बहुत कुछ ऐसा है जानने के लिए कि जो हम खाएं तो हमारी सेहत सही हो।
1: और कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग चीज खाते हैं लेकिन कई लोगों को देखना बहुत आदत होती है कि वो खाने में नमक ऊपर से लेते हैं।
0: हाँ, वो तो रक्तचाप के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जिन्हें उच्च रक्तचाप की शिकायत, तो उन्हें तो ऊपर से नमक खाना ही नहीं चाहिए।
1: वैसे भी नहीं खाना चाहिए, चाहे
0: हाँ,
1: आपको उच्च रक्तचाप हो चाहे ना हो, लेकिन आप ऊपर से कच्चा नमक कभी भी ना
0: ना
1: खाएं।
0: खाए। अतिरिक्त नमक जो है वो शरीर में पानी को रोकता है, जिससे दिल पर दबाव बढ़ता है। ये इसलिए नमक की अधिकता वाले प्रोसेस्ड और फास्ट फूड खाने से बचें।
1: वैसे भी हमने देखा होगा ना मीता, जब हम फास्ट फूड खाते हैं तो हमें प्यास ज्यादा
0: बहुत
1: लगती है,
0: ज्यादा प्यास
1: बहुत
0: लगती
1: ज्यादा
0: है।
1: प्यास लगती
0: और
1: है।
0: कुछ लोगों की आदत होती है रचना कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय पी लेते हैं,
1: या
0: लेकिन
1: तुरंत सो जाते हैं,
0: ऐसा करने से शरीर में आयरन के अवशोषण में बाधा आ सकती है।
1: इसलिए चाय को जो है भोजन के कम से कम 1 घंटे पहले या फिर 1 घंटे बाद पिए। और पानी के साथ भी ऐसा ही है, आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए क्योंकि वो आपके खाने को पचाने में बाधा डालती है। इसलिए आप
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: पानी भी पिए तो कम से कम आधा घंटा तो रुके।
0: हाँ, अगर हमारे किसी श्रोता को ब्लड प्रेशर की अगर समस्या है, उच्च रक्तचाप की समस्या है, तो ये खासकर महिलाओं में रजोनिवृत्ति के बाद होता है रचना। तो इसमें ये पाया गया है कि आप बुरे कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए सोयाबीन को खा सकते हैं। सोयाबीन में ऐसी प्रोटीन बहुलता से होती है जो इस प्रकार के कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखने की क्षमता रखती है।
1: बिल्कुल, और 25 ग्राम नमक रहित सोयाबीन रोज खाने से जो है वो रक्तचाप को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि जो आप आहार ले रहे हैं वो चिकनाई रहित हो और आपके दिल का दोस्त हो। और हाँ, सुबह कम से कम 30 मिनट चलना ना भूलें। ध्यान रखें कि जितना चलोगे उतना चलोगे।
0: जी हाँ।

0: रुक जाना नहीं तू कहीं हार के रचना, जब हमने अपने श्रोताओं से ये कह दिया है कि रुकना नहीं है तो कहीं जाने की बात भी हम कर दें, यानी कि पर्यटन की भी बातें हम करें, ताकि हमारे श्रोताओं को ये तो पता चले कि हमें जाना कहाँ है, मतलब उन्हें हाँ, जाना कहाँ है।
1: हाँ हाँ, जैसे कि मीता, हम जानते हैं कि हमारे झारखंड में बहुत सारे झरने हैं, हम सभी झरनों की बातें करते हैं, लेकिन आज हम ऐसे जलप्रपात की बात करेंगे कि शायद वो बहुत कम लोग।
0: बिल्कुल, हम अपने श्रोताओं को यही तो बताना चाहते हैं जो वो नहीं जानते हैं, हम जिनकी जानकारी उनको कम होती है, तो हम चाहते हैं कि वो जानकारी उन तक पहुंचा दें। तो अगर ये झरना अभी तक लोगों की नजर से कुछ अछूता सा है, बचा सा है, तो हमें उसकी जानकारी जरूर अपने श्रोताओं को देनी चाहिए। रचना बताओ कहाँ पे है ये जिसकी बात तुम कर रही हो?
1: हम बात कर रहे हैं लावा पानी जलप्रपात की। झारखंड प्राकृतिक सौंदर्य, पर्वतीय श्रृंखलाओं, घनी वनों और जलप्रपातों की धरती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, राज्य में अनेक ऐसे अद्भुत पर्यटन स्थल मौजूद हैं रचना, जो आज भी पहचान से वंचित है। यदि इन स्थलों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उचित पहचान मिले तो झारखंड में पर्यटन का अभूतपूर्व विकास संभव है।
1: बिल्कुल सही बात है, और ऐसा ही एक अनुपम और रहस्यमय प्राकृतिक स्थल है लावा पानी जलप्रपात, जो लोहरदगा जिले के
0: पिशरार प्रखंड में स्थित है। यह जलप्रपात लोहरदगा जिले मुख्यालय से लगभग 38 किलोमीटर, रांची से 112 किलोमीटर, नेतरहाट से 116 किलोमीटर और लातेहार से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। घने वनों, ऊंचे पर्वतों और जनजातीय क्षेत्र के मध्य स्थित यह जलप्रपात प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है।
1: मानवीय आबादी से दूर होने के कारण यहाँ का वातावरण आज भी निर्मल, शांत और प्रदूषण मुक्त बना हुआ है।
0: लगभग 268 मीटर करने वाला यह जलप्रपात 60 से 70 डिग्री के कोण पर लगभग 110 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। यदि इसका वैज्ञानिक मापन किया जाए तो संभवतः यह झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में दूसरे स्थान पर होगा। रचना, लावा पानी क्षेत्र प्राकृतिक विविधताओं से परिपूर्ण है। यहाँ का वातावरण, हरियाली, जलधारा के मधुर स्वर, पक्षियों की चहचहाट और वनस्पतियों एवं पुष्पों की सुगंध से ये भरा रहता है।
1: ये क्षेत्र जो है आदिम जनजातीय सभ्यता का भी साक्षी है, जहाँ प्रकृति और मानव जीवन का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता है।
0: तो फिर आप जब भी कहीं अगर मूड हो आसपास ही कहीं घुमाने का, तो और लावा पानी जगह जरूर जाएं और एंजॉय करें, और अपनी जो मतलब अनुभूति है, आपका जो अनुभव है, वो हमसे जरूर शेयर करें।

0: चल कहीं दूर निकल जाएं। और इस तरह से रचना हम कार्यक्रम के अंतिम पायदान पर आ चुके हैं। हमारा कार्यक्रम बिल्कुल समाप्ति पर है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है खेल की, जिसे हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे। तो फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा जो चल रहा है इन दिनों, तो अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन पहली बार ये वर्ल्ड रैंकिंग की ये टॉप चार टीमें
1: एक साथ सेमीफाइनल में है इस बार।
0: फ्रांस आठवीं बार, अर्जेंटीना छठी, इंग्लैंड चौथी और स्पेन दूसरी बार सेमीफाइनल खेलेगा। 1970 और 1990 के बाद केवल तीसरा मौका है जब चारों सेमीफाइनलिस्ट टीमें पूर्व चैंपियन रही हैं।
1: स्पेन सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को मिलाकर लगातार 36 मैचों से अजेय है और इस दौरान उन्होंने 27 मैच जीते हैं और 9 मुकाबले ड्रॉ खेले हैं। और फ्रांस लगातार तीसरा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलेगा और ऐसा करने वाला जर्मनी और ब्राजील के बाद वो तीसरा देश बन गया है।
0: और रचना, जैसा कि देख रही हो, घड़ी की सुइयां बिल्कुल हमें इजाजत नहीं दे रही हैं, क्योंकि हमारे श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम, अगला कार्यक्रम जो है आपकी पसंद, वो उनके इंतजार में है। तो हम अपने श्रोताओं से यहीं पर विदा लेते हैं। नमस्कार, जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार रांची। ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

आपकी पसंद कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में राम और श्याम फिल्म का ये गीत, और सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जेतिक बिरक मीका बिरक आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा।

अगला गीत आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में आधी फिल्म से, और सुनना चाहा है बड़ा बाम्बो गांव सुपाई साई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा, प्रकाश, ललित प्रधान, किरण केशरी, राजकुमार केशरी, श्यामदेव नायक देवन, चक्रधरपुर गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बनमाली बेसरा, बासंती अनु, सुध कुमारी और पूजा, कोठवा नारायणपुर बावापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय।

अगला गीत आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में पत्थर के सनम फिल्म का, और इस गीत को सुनना चाहे महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश।

अगला गीत आइए अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में मिली फिल्म से, और इस गीत को सुनना चाह है मेहरनगर उमेरखंड महाराष्ट्र से अभिजीत गणवानकर, सरिता गणवानकर, प्रिंस एकांश गणवानकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गणवानकर, प्रणीता गणवानकर, अर्जुन गणवानकर, आकार हाइट्स, बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गणवानकर, सुमित गणवानकर और कुमारी ध्वनि गणवानकर।

अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ममता फिल्म का ये गीत, और इस गीत को सुनना चाहे जतुका किशनपुर से आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, चांदनी नाज, छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छावेंद्र कुमार वर्मा।

अगला गीत सुनना चाहे बैजनाथ धाम से मनोज केशरी, पूजा केशरी, महादेव केशरी, श्रद्धानंद केशरी, प्रतीक प्रतिज्ञा, खरसावां झारखंड से सुकरा नायक, गौरव नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक और उनके परिवार के सभी लोग।

0: किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही आज का फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, 12 बजे हैं और वक्त है महिलाओं के कार्यक्रम गृहलक्ष्मी का, तो आइए सुनते हैं गृहलक्ष्मी।
1: गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनवैया सभी बहन मन के वन्ना राय बटले जोहार और रानी बहन रौर कहो जोहार, कहो कैसन हाल समाचार है।
2: जोहार वंदा बहन और कार्यक्रम सुनवैया बहन मन के रानी बटले जोहार, हमर हाल समाचार तो बेसे बेस है। रौरे कहो अपन हाल समाचार कर विषय में।
1: हमरो हाल समाचार नगदे नगद है और असरा करीला कि हमर सब सुनवैया बहन मन भी कुशल मंगल से होवे।
2: एकदम सही कहली वंदा बहन, काले की सब बेस रहले है बेस बुझायला, और महिला तो परिवार कर धुरी है, ओकरे ऊपर गोटा परिवार कर जिम्मेवारी रहेला, सेले हमरे मन के एकदम स्वस्थ रहे कर दरकार है।
1: एकदम सही कहली, और देखो नी पूर्ण परियार में तो महिला मन खाली घर कर काम करत रहे या घर कर काम तक सीमित रहे, उमने खाना बनाए, छुआ देखे, बड़ बूढ़ा कर देखभाल करे, यह सब काम में लागल रहत रहे। लेकिन देखो नी आज कर जमाना तो एकदम चेंज मने बदल जा है। आज महिला मन घर कर संगे है, बाहरे कर भी काम करत है।
2: हाँ, जेके की काम काजी महिला कहल जाए बंदा बहन, एकर माने है कि ऐसन महिला मन खाली घर और परिवार कर आर्थिक जिम्मेदारी के नहीं उठाए ना, बल्कि समाज में भी एगो अपन अलग पहचान बनाए ना।
1: हाँ सही कहली, लेकिन देखो नी कामकाजी महिला के अपन कार्यालय कर संग है, घर और परिवार दियो कर जिम्मेदारी उठाए पड़ेला, और ई दोहरा बोझ कर चलते उमन शारीरिक और मानसिक तनाव कर शिकार भी हो जाए ना।
2: एकदम सही, कार्यालय में 8-9 घंटा काम करल बाद उमन के घर आवल बाद खाना बनाए, साफ सफाई, छुआ मनक पढ़ाई और बुजुर्ग कर देखभाल जैसन बगरा काम करे के पड़े, जेकर चलते उमन कर वर्क लाइफ बैलेंस जो है से बिगड़ जाएगा।
1: सही कहली, और देखो नी पर्याप्त आराम नहीं करल चलते उमने तनाव, थकान, खराब स्वास्थ्य कर शिकार भी हो जाए ना, और घर कर पहला जिम्मेदारी महिला उपरे होवे कर चलते कई धाम उमन के अपन करियर से भी छुट्टी लेवे खोवेला, और माय कर जिम्मेवारी या पारिवारिक कारण से नौकरी के भी छोड़े खोवेला, और नौकरी छोड़ल बादे दोबारा काम करे में बहुत मुश्किल हो जाएला।
2: हाँ एकदम सही कहली बंदा बहन, लेकिन सबकर सहयोग से महिला मन के बढ़िया से मतलब आसानी से अपन घर और बाहर दुयो जिम्मेवारी के बढ़िया से पूरा कर सके ना। अगर परिवार कर संगे सभी सदस्य घर कर काम और छुआ मनक देखभाल में मदद करवे तो।
1: एकदम सही कर ली, और देखो नी संग है ऑफिस कर जे नियोक्ता मन है उमने भी वर्क फ्लेक्सिबिलिटी और पेड फैमिली लीव जैसा नीति अगर बनाए ना तो महिला मन ले काम करे बहुत आराम हो जाएला, और समाज के भी अपन रूढ़िवादी सोच से बाहर निकले कर जरूरत है। महिला के आर्थिक स्वतंत्रता और उनकर योगदान के भी हमरे मन के महत्व देवे के चाहिए।
2: एकदम सही कहली वंदा बहन, और जानी ला कोनो जगह में आज भी महिला के अपन वेतन में असमानता, पदोन्नति में रोक, कार्यस्थल में सुरक्षा संबंधी समस्या कर भी सामना करे पड़ेला, से ले जरूरी है बराबरी कर। महिला कोनवे रूप में पुरुष से कम नक है, बल्कि घर कर संगे उमने बाहरे कर काम भी अच्छा से पूरा करत है, से ले उमन कर अधिकार है पुरुष कर बराबरी चले कर और समान अधिकार पावे कर।
1: सही कहली रानी बहन, और देखो नी महिला खाली घर कर नहीं बल्कि गोटा समाज और राष्ट्र कर निर्माण में बहुत बड़ भूमिका निभाएला, से ले उमन के सुरक्षा और सम्मान देवे हमरे सब कर कर्तव्य है।
2: एकदम सही,
1: तो चलो हमरे मन जान ली कि कामकाजी महिला कर दोहरी जिम्मेदारी कर बारे में, और आप हमरे कर बेरा होते एगो गीत सुने कर, तो चलो सुलभ नागपुरी लोकगीत जे की एगो प्रकृति गीत है, दीना सिंह और संगी मन कर गावल।
2: एकदम चलो

0: का चैंपियन नहीं आया अब तक।
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
0: सो गर्ल, क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
3: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हाँ तो सुनवैया बहिन मन, ये रहे विज्ञापन संदेश और उकर से पहले हमरे मन सुन ली नागपुरी लोकगीत दीना सिंह और संगी मनकर गावल। और चलू अब हमरे मने जानकारी करब कि सोशल मीडिया पर रहे सावधान, और इकर बारे में बताते हैं प्रोफेसर सुभाष चंद्र यादव जे की कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कर विभागाध्यक्ष हैं, और उनकर से बातचीत कर रहे हैं हमरे कर रानी बहन।
2: आज के समय में सोशल मीडिया हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। चाहे परिवार और रिश्तेदारों से जुड़े रहना हो, बच्चों की पढ़ाई की जानकारी लेनी हो, या कोई नई चीज सीखनी हो, या फिर घर बैठे किसी काम की जानकारी प्राप्त करनी हो, सोशल मीडिया कई तरह से हमारी मदद करता है। लेकिन इसके साथ फेक न्यूज, साइबर अपराध जैसी चुनौतियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया का उपयोग हम कैसे करें, ताकि हम स्वयं भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। और आज इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं ऐसे विशेषज्ञ जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। सोशल मीडिया पर रहें सावधान, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुभाष चंद्र यादव। आप झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के संकायाध्यक्ष हैं, साथ ही आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं। नमस्कार सुभाष जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में।
3: नमस्कार रानी जी, धन्यवाद।
2: सुभाष जी, आज के समय में सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया की सबसे बड़ी विशेषता या इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, और ये हमारे लिए किस तरह उपयोगी साबित हो रहा है।
3: रानी जी, आपने सही कहा, हम डिजिटल युग में हैं और समाज का हर वर्ग इससे आजकल लाभान्वित हो रहा है। तो हमारा जो देश भारत है, इस समय वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है सोशल मीडिया का
2: जी।
3: अगर आप इसको डेमोग्राफी में देखें तो 870 मिलियन एक्टिव यूजर हैं, जिसमें से कि 1.02 बिलियन इंटरनेट यूजर हैं
2: जी।
3: और प्रतिदिन अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति हिंदुस्तान में 3.2 घंटे प्रतिदिन सोशल मीडिया पे दे रहा है
2: जी। बिल्कुल।
3: तो सबसे पहले हम अगर इसकी विशेषताएं को अगर देखें तो एक ग्लोबल कनेक्टिविटी, सोशल मीडिया आने से इसने क्या किया ना कि दूरी मिटा दिया। आप किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति से तुरंत जुड़ सकते हैं।
2: बिल्कुल।
3: और इसके बाद त्वरित संचार, ऐसे आपके पास वेब बेस्ड मोबाइल एप्स जो है कि आपकी सूचना को तुरंत भेजते हैं। एक तरह से कह लीजिए कि सूचना कम्युनिकेशन में या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में क्रांति आ गई है
2: जी।
3: और तीसरी मुख्य विशेषता इसकी है कि यूजर कंटेंट, मतलब कोई भी व्यक्ति, किसी भी वर्ग का व्यक्ति, किसी भी समाज का व्यक्ति अपना पोस्ट, फोटो, वीडियो खुद बना सकता है और उसको सोशल मीडिया पर डाल सकता है
2: जी।
3: और काफी आसान हो गया है कंटेंट क्रिएशन। आपने देखा होगा कि AI की चर्चा सब जगह चल रही है।
2: बिल्कुल।
3: और इसका अगर पावर की बात करें तो सबसे बड़ा विचारों की जो शक्ति है, आम लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं और इसको तुरंत लाखों लोग को पहुंचा सकते हैं। तो हमारे जीवन के ये हर एक पहलू में इसका प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि व्यापार बढ़ाने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करके अपना व्यापार, नौकरी के अवसर, ये सारी चीजें कर सकते हैं आप। और दूसरा बड़ा डायमेंशन इसका है कि सीखने में बहुत मदद करता है। और अगर इसका प्रभाव और देखिएगा आप तो हमको अपडेट रखता है। एक्चुअली ये जानकारी का भंडार है
2: जी।
3: और दुनिया भर की सारी ताजी खबरों से हमको जोड़ के रखता है।
2: वाकई सोशल मीडिया ने हमारे जीवन को कई तरह से आसान बनाया है। लेकिन कहा जाता है ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सोशल मीडिया जहां हमारे लिए इतना उपयोगी है, वहीं इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी सामने आते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना जरूरी है।
3: जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने रानी जी। एक्चुअली हर चीज की देखिए कुछ अच्छाई कुछ बुराई होती है
2: जी।
3: सोशल मीडिया को हम सुरक्षित रख सकते हैं, थोड़ा समझदारी का इस्तेमाल करें और दो चार मुख्य मुख्य बातों अगर हम ध्यान रखें तो हम अपने आप को सेफ भी रख सकते हैं सोशल मीडिया पे। सबसे पहला तो देखिए कि आप सिक्योर पासवर्ड रखिए। आप सोशल मीडिया पे अकाउंट हर व्यक्ति का है, एक होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो साइबर सिक्योरिटी के गाइडलाइन के अनुसार है। मतलब जैसे आपने सोशल मीडिया खोला एक पासवर्ड डाला, जनरली लोग करते क्या है कि अपने वाइफ का नाम 1 2 3 4 इस तरह का पासवर्ड रखते हैं। नहीं ऐसा मत करिए, आप बायोमेट्रिक इनेबल्ड पासवर्ड रखिए, ओटीपी बेस्ड पासवर्ड रखिए और सुरक्षित रहिए। दूसरा आप सारे सोशल मीडिया ऐप में देखिएगा, चाहे मोबाइल पे हो चाहे वेब बेस्ड हो, एक प्राइवेसी सेटिंग होती है
2: जी।
3: उसमें आप अपने प्रोफाइल को पब्लिक से प्राइवेट कर दीजिए ताकि वो आन पब्लिक को नहीं दिखेगा, आप जिसको चाहेंगे उसी को दिखेगा
2: जी।
3: और दूसरा बड़ा मुद्दा आता है कि कोई भी आपके ऐप पे या सोशल मीडिया लिंक पे अगर कोई अनजान लिंक आता है, कदापि मत उसको खोलिए, हैकर्स हो सकता है, उनका जाल हो सकता है। और इसके बाद ओटीपी, आपके मोबाइल पे जैसे कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या कोई फाइनेंशियल आप डील कर रहे हैं तो ओटीपी आता है, तो कभी मत शेयर करिए। और मेरा रिक्वेस्ट है नवयुवकों से कि गलत और अपमानजनक पोस्ट कतई न करें। और एक और मैं रिक्वेस्ट करूंगा नवयुवकों से और समस्त श्रोतागणों से कि कृपया सोशल मीडिया पे दूसरों की जिंदगी की तुलना देख के, तुलनात्मक समरी देख के परेशान न हो। आपका अपना खुद का जीवन है और खुद की अपनी आवश्यकताएं हैं।
2: बिल्कुल
3: जी,
2: यानी समझदारी और सावधानी ही हमें सुरक्षित रखती है।
3: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: लेकिन आज की एक और बड़ी चुनौती है जो हमारे सामने आती है, आजकल फेक न्यूज, अफवाहें और भ्रामक जानकारियां सोशल मीडिया पर तेजी से फैलती हैं। आम लोग किसी भी जानकारी की सच्चाई कैसे परखें और उसे शेयर करने से पहले किन बातों का ध्यान रखें?
3: जी जी नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक्चुअली सोशल मीडिया पे कोई भी जानकारी
2: जी
3: सच्चाई परखने के लिए जो मुख्य धारा के समाचार पत्र हैं, जैसे आकाशवाणी है, दूरदर्शन है या न्यूज़पेपर है
2: जी,
3: इनसे जरूर आप सूचना प्रदान करें, उनकी सूचना पे ध्यान रखें। और इसके अलावा अगर वेब बेस्ड कुछ चीजों की बात करें तो गूगल फैक्ट चेकर आता है, उस पे भी आप जानकारी की सच्चाई को परख सकते हैं, उसका स्रोत क्या है, कहीं अनजान गुमनाम खाते से तो नहीं आ रहा है
2: जी।
3: और एक और भी न्यूज चेकर के अलावा अल्ट न्यूज एक वेबसाइट होती है जिसमें भारतीय फैक्ट चेकिंग वेबसाइट भी कह सकते हैं आप
2: जी।
3: वो एक्चुअली इन तरह की न्यूज को पुष्टि भी करता है, खंडन भी करता है, तो आप सतर्क रह सकते हैं
2: बिल्कुल।
3: और कोई भी पोस्ट अगर कुछ अपसर्ड लैंग्वेज में आती है, कुछ गुस्से भरे लैंग्वेज में आती है, सनसनी खेज आती है, आप उसको जरूर सबकी नजर से देखें और ये जानकारी की परख अवश्य कर लें
2: जी।
3: और आप अगर कुछ शेयर भी अगर करना चाह रहे हैं
2: जी,
3: तो उसको कृपया जल्दबाजी में ना शेयर करें, आप उसको इत्मीनान से पढ़ें, सोचें और तभी किसी को शेयर करें। और इसके अलावा जैसे आप बात हो रही थी कि भाई कैसे प्रमाण खोजें, तो भारत सरकार ने दो ऐप ले रखे हैं, एक तो संचार साथी है, दूसरा चक्षु है
2: जी।
3: आप किसी भी खबर हो उसको आप देख कर अगर अफवाह है तो छोड़ दीजिए, अगर आपको फर्जी लगे तो उसको भी छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए कोई आपसे रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है, तो भारत सरकार का एक पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल, आप उस खबर को आप उस पर दीजिए, भारत सरकार एक्टिव रहती है, इस तरह की जानकारी को तुरंत ब्लॉक करती है और एक्शन लेती है भारत सरकार। आपने देखा होगा कि हमारे देश के लगभग सारे शहरों में एक साइबर थाना बन गया है
2: बिल्कुल,
3: इस तरह की सुरक्षा के लिए।
2: बिल्कुल सही कहा आपने
3: जी,
2: जानकारी की सत्यता जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है अपनी निजी जानकारी को भी सुरक्षित रखना। हम आपसे जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी, फोटो और लोकेशन शेयर करना कितना सुरक्षित है? अपनी डिजिटल सुरक्षा के लिए किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
3: जी जी देखिए, मैं तो आप लोगों से सभी श्रोतागण से ये रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया अपनी निजी जानकारी
2: जी,
3: अपने बेटे बेटी की फोटो, लोकेशन, ये एकदम सुरक्षित नहीं है, ये चोरी होने का डर है, स्टॉकिंग होने का डर है या साइबर धोखाधड़ी भी बढ़ सकता है। तो अपनी पोस्ट तस्वीरों को किसी भी दिनचर्या और घर के पता आसानी से जिसे ट्रैक हो सके उस लूप में मत डालिए
2: जी।
3: और दो तीन चीजें इसमें विशेष ध्यान रखने की है, एक तो आप लाइव लोकेशन शेयर ना करें, जो अगर तस्वीर आप साझा भी करना चाहते हैं तो यात्रा से नोट किया फिर साझा करिए, और इसके बाद प्रोफाइल को आप प्राइवेट रखिए, और अनजान लोगों का फ्रेंड रिक्वेस्ट तो कतई मत स्वीकार करिए, और जितना हो सके आप अपनी निजी जानकारी जैसे कि आपका फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बैंक पता, बच्चे के स्कूल का नाम, ये सारी चीजें आप मत डालिए सोशल मीडिया पे। और चौथी बात है कि पासवर्ड को हमेशा आप मजबूत रखिए ताकि कोई भी हैकर आपके सोशल मीडिया ऐप का पासवर्ड ना तोड़ ले, उसका गलत ना इस्तेमाल कर ले। और टू फैक्टर की जो हम बात कर रहे थे तो उसमें बायोमेट्रिक इनेबल्ड भी बात होती है और कोड भी होता है, पासवर्ड भी होता है, तो उन चीजों का ध्यान रख के आप जो है सुरक्षित रह सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे।
4: बिल्कुल, और डिजिटल सुरक्षा की बात हो तो इससे जुड़ा एक और विषय है जो सामने आता है, वो है साइबर अपराध। आजकल सोशल मीडिया से जुड़े साइबर अपराध के मामले भी काफी बढ़ रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में कौन कौन से प्रमुख साइबर अपराध देखने को मिल रहे हैं और इनसे बचने के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और दुर्भाग्यवश यदि कोई व्यक्ति इसका शिकार हो जाए तो उसे सबसे पहले क्या कदम उठाने चाहिए।
3: अगर हम देखें तो हमारी जो साइबर की दुनिया है ये बहुत बृहद हो गई है
4: जी।
3: जिसको कि डार्क वेब कहते हैं, फाइनेंशियल से लेके ढेर सारी चीजें इससे हो रही हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो साइबर से रिलेटेड अपराध हैं, उसमें जैसे अभी लेटेस्ट आपने सुना होगा डिजिटल अरेस्ट
4: जी।
3: डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है कि आपका आईडी पासवर्ड हैक कर लेता है और कोई पुलिस अधिकारी बनके, सीबीआई का अधिकारी बनके, जज बनके वो आपसे वीडियो कॉल करके आपको धमकाता है और पैसे हटता है। इसके अलावा साइबर बुलिंग होता है, डिनायल ऑफ सर्विस होता है, और डाटा ब्रीचेस होता है, किसी के डाटा को चुरा लेना उसके वेबसाइट से, मोबाइल से। और आजकल आपने देखा होगा कि जो हम यूपीआई और डिजिटल वैलेट पे सरकार जोर दे रही है उसमें भी बड़ा फ्रॉड हो रहा है। क्रिप्टो जैकिंग होता है, रैनसमवेयर होता है, फिशिंग होता है, और फ्रॉड अकाउंट बना के भी होता है, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग और सेक्सटॉर्शन, अश्लील वीडियो बना के बच्चे बच्चियों को धमकी देना, निवेश के नाम पे, जॉब देने के नाम पे धोखाधड़ी। तो बहुत सतर्क रहने की जरूरत है।
4: बिल्कुल,
3: तो इससे बचने के लिए हम तो सजेशन देंगे कि भाई अपनी सेटिंग को तो देखिए गोपनीय रखिए, बार बार मैं कहूँ प्राइवेट रखिए प्रोफाइल को अपने
4: जी।
3: अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट कतई मत स्वीकार करिए। दूसरी बात की ओटीपी और पासवर्ड किसी से भी साझा ना करिए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखिए। अगर कोई भी यूआरएल या कोई लिंक अगर आपके मेल पे, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आता है तो उसको ना क्लिक करें जब तक आप समझ न जाए कि कहाँ से है, और जो जानकारी है वो साझा ना करें। दुर्भाग्य से अगर आप साइबर अपराध के शिकार भी हो जाते हैं तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930, मैं फिर से रिपीट करता हूँ श्रोताओं के लिए, राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर है 1930 पर तुरंत डायल करें।
4: बिल्कुल,
3: आपको रिस्पांस मिलेगा और आप अपनी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। अगर आप इंटरनेट यूजर हैं तो आप अपनी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल पर भी दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका अकाउंट या कुछ इस तरह का फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत, तो पहला स्टेप फर्स्ट एड आप करिए अपना बैंक खाता, डेबिट क्रेडिट कार्ड को, और तुरंत बंद करिए। अगर मोबाइल में यूपीआई ऐप है तो आप उसको तुरंत लॉक करिए, फ्रीज करें ताकि हैकर आपसे पैसे ना निकाल सके आपके अकाउंट से
4: जी।
3: और इसके बाद तुरंत ईमेल आईडी बदल दीजिए, पासवर्ड बदल दीजिए, और जो संदेहास्पद जानकारी अगर आती है
4: जी,
3: तो मैंने जैसा कहा था संचार साथी पे दीजिए, चक्षु पे दीजिए, ताकि धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ भारत सरकार एक्शन ले सके।
4: बिल्कुल, घबराने की जरूरत नहीं है, तकनीक का सुरक्षित उपयोग बहुत जरूरी है
3: जी।
4: आज बच्चों और युवाओं में सोशल मीडिया का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में माता पिता और शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए ताकि बच्चे ऑनलाइन सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सोशल मीडिया का संतुलित और सकारात्मक उपयोग कर सकें।
3: जी रानी जी, आपने देखा होगा कि एक युगो शताब्दी त्रापदा आई थी पूरे विश्व पे जिसको कोरोना के नाम से जाना गया
4: जी।
3: उसने क्या किया ना कि हमारा मोड ऑफ लर्निंग बदल दिया। तो हमारे बच्चे ऑनलाइन हो गए, बच्चे घर में थे, पढ़ाई जारी रखनी थी तो सोशल मीडिया के बच्चे संपर्क में आ गया। माता पिता को क्या करना चाहिए ना कि कुछ एक समय निर्धारित करना चाहिए, बच्चों के साथ साथ शिक्षक और हम गार्जियन को भी थोड़ा सा डिजिटल साक्षर होना पड़ेगा। माता पिता की अहम भूमिका ये है कि बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम का सीमा तय कर दें और एक सोशल मीडिया ऐप और जो फोन तो उसका एक पेरेंटल कंट्रोल टूल आता है
4: जी।
3: अगर माता पिता जानकार हैं तो उस टूल को आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फोन पे भी, बच्चे के फोन पे भी, ताकि आप कंट्रोल कर सके कि बच्चा कोई गलत सामग्री तो नहीं ले रहा इंटरनेट से,
4: बिल्कुल
3: कोई निजी जानकारी बच्चा शेयर तो नहीं कर रहा, तो कहते हैं वॉच कर सकते हैं आप
4: जी।
3: और कोशिश करिए कि बच्चों से खुल के बात करिए। इसमें हम शिक्षकों की भी बड़ी भूमिका है कि हम बच्चों को डिजिटल साक्षरता उस कौशल में पारंगत करें, साइबर सुरक्षा का बच्चों को पाठ प्रॉपरली हम पढ़ाते रहें ताकि बच्चे ऑनलाइन धोखाधड़ी न करें, सुरक्षित भी रहें। उसके बाद सकारात्मक सोच भी बच्चों में डालनी पड़ेगी हम शिक्षकों को कि वो कार्य के प्रति प्रेरणादायक चीजें देखें सोशल मीडिया पे, नकारात्मक ना देखें जिससे उसे मानसिक दिक्कत हो।
4: बिल्कुल, हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा है। सोशल मीडिया का अधिक उपयोग कहीं ना कहीं हमारे मानसिक स्वास्थ्य और समय के साथ साथ रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है, तो इससे बचने के लिए क्या उपाय अपनाया जाए?
3: जी सही कहा आपने, सोशल मीडिया का अधिक उपयोग करने से क्या हो रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य, हमारा कीमती समय बर्बाद होता है, इवन हमने तो देखा है कि जो रिश्तों की गहराई है
4: जी
3: वो प्रभावित हो रही है।
4: बिल्कुल,
3: पहले लोग अपनी समस्याएं चाय पे बैठ के टहलते समय कर लेते थे, अब समस्या लोग डिजिटल स्क्रीन पे बिता रहे हैं। तो मेरा तो सबसे अच्छा सजेशन है कि आप कम प्रतिदिन या हफ्ते में फोन व्रत रखें, तो फोन फ्री समय तय कर लीजिए और फोन व्रत रहिए।
4: बिल्कुल,
3: और जो सोशल मीडिया का प्रभाव है इससे क्या है ना कि मानसिक जैसे लगातार उपयोग करने से चिंता बढ़ जाती है, अकेलापन रहता, अवसाद बढ़ने लगते हैं और हम कहीं ना कहीं दूसरे के लाइफ स्टाइल से तुलना करते हैं। अगर बचने के उपाय के बारे में देखा जाए तो दो तीन चीजें कर सकते हैं आप। एक तो समय सीमा तय कर दीजिए, नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, फोन फ्री क्षेत्र बना दीजिए, सोने का एक समय निर्धारित कर, और कोशिश करिए कि ऑनलाइन शौक ठीक है अच्छी बात है लेकिन कुछ किताबें पढ़िए, बच्चों को प्रेरित करिए और कुछ नई स्किल सिखाइए। और जो अकाउंट्स जो नकारात्मक चीजें भेजते हैं तो उसको तो कतई मत फॉलो करिए, उसको आप सीधा म्यूट कर दीजिए।
4: बिल्कुल,
3: तो ये चीजें करके आप काफी हद तक बचाव कर सकते हैं।
4: बिल्कुल, चलते चलते हमारी श्रोता बहनों के लिए आपका कोई खास संदेश?
3: जी, सुरक्षित और समझदारी से इस्तेमाल। सोशल मीडिया इज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज हाउ वी यूज इट इन सेफ एंड सिक्योर वे। आप सुरक्षित रहिए, समझदारी से सोशल मीडिया का इस्तेमाल जीवन के हर पहलू में, हर दिशा में करिए।
4: बिल्कुल, सुभाष जी आपने अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम में दिया, इस विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद रानी जी, और श्रोतागणों को भी मेरा नमस्कार, प्रणाम, जोहार।
1: हाँ तो सुन भैया बहन मन, एखन हमरे मन जानकारी करत रही कि सोशल मीडिया पर रहें सावधान, और इकर बारे में हमरे के बतात रहे प्रोफेसर सुभाष चंद्र यादव, और उनकर से बातचीत कर रहे हमरे कर रानी बहन। तो जैसे कि आज हमरे मन जान ली कि कामकाजी महिला कर ऊपरे दोहरी जिम्मेदारी रहेला, तो चलो उकर बातें जानब कि काम कर संगे हमरे लिए आराम भी बहुत जरूरी है। तो काम कर संगे आराम कर जरकार तो है ये है, देखो नी दुइयो बटे सही संतुलन बनाए राखे ले मानसिक शांति, ऊर्जा और कार्य क्षमता दुइयो कर से बढ़ेला, लगातार काम कर ले तनाव और थकान भी हमरे के होवे लागेला।
5: हाँ एकदम, मतलब बहन से ले जरूरी है दोपहरिया कर खाना खाल बादे तनिक समय कर छुट्टी लेवे कर, तनी मनी हमनी के घूमे फिरे भी चाहिए ताकि इकर से ध्यान और एकाग्रता बढ़ेला।
1: हाँ, और नियमित दिनचर्या कर पालन करे के चाहिए हमरे मन के, जैसे कि बिहान उठते हैं संगे जैसे कि हमरे मन फोन देखे लागेला।
5: हाँ।
1: तो उ सब नहीं करे के चाहिए, ताजा ताजा हवा हमरे मन के लेवे के चाहिए, मधुर संगीत कर आनंद उठाए के चाहिए, और संगे व्यायाम के अपन दिनचर्या में जरूर हमरे मन के शामिल करे के चाहिए, काले कि व्यायाम हमरे लिए बहुत फायदेमंद है और जीवन के ठीक से चलाए खातिर तनी रुके और आराम करे बहुत जरूरी है।
5: एकदम,
1: सेले काम कर संगे संगे आराम बहुत जरूरी है। तो अब तो हमरे कर जाए कर बेरा हो जाए है, तो अगला कार्यक्रम में हमरे मन बहिन कर संगे फिर से गोठिया, तब तक खातिर देव विदा, जोहार
5: जोहार।
6: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

सबसे पहले सुनवाते हैं आपको कहो ना प्यार है फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं लक्की अली और राम्या की। इब्राहिम अश्क ने इस गीत को लिखा है, राजेश रोशन ने संगीत दिया है।

समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है अनु मलिक ने। फिल्म है जोश और आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

शंकर महादेवन की आवाज में आइए अब सुनते हैं फिर मिलेंगे फिल्म का ये गीत। प्रसून जोशी के बोल हैं, शंकर एहसान लॉय का संगीत है।

आइए अब सुनते हैं थ्री इडियट्स फिल्म का ये गीत, आवाज है शान की, स्वानंद किरकिरे के बोल हैं, शांतनु मोइत्रा का संगीत है।

कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए आपको सुनवाते हैं बजरंगी भाईजान फिल्म का। इस गीत को गाया है राहत फतेह अली खां और रेखा भारद्वाज ने। गीत के बोल लिखे हैं नीलेश मिश्रा ने और संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। एक बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने ऐसा झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सभी मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य

0: करें। सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए मात्र एक महीने में 4 नई खेप के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इनमें नवीनतम जहाज आईएनएस महेंद्रगिरी, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया, छठा नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। इसे इस महीने की 11 तारीख को शामिल किया गया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टर्स और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजेस पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड में भी अगले 2 दिन तक सामान्य बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian contingent for winning gold medals at the 56th International Physics Olympiad 2026 held at Bucaramanga, Colombia. In a social media post, Mr. Modi said their feat reflects yet another example of the limitless potential of the nation's Yuva Shakti and their passion towards science and research. The Prime Minister further noted that it is equally commendable that in the last decade, Indian students have performed exceptionally well in the various editions of this platform. The government today informed that 4 new generation indigenous naval platforms were inducted into the Indian Navy in just 1 month to strengthen the country's maritime defence. The latest addition is INS Mahendragiri, the 6th indigenously designed Nilgiri class stealth frigate, which was inducted on the 11th of this month. A report.
2: On 21st of last month, the Indian Navy inducted 3 indigenously designed and built platforms, namely INS Dunagiri, INS Sansodhak and INS Agraya. These frigates are built under Project 17A for multi-mission roles, including anti-air, anti-surface and anti-submarine warfare. Project 17A is the Indian Navy's advanced stealth frigate program to build 7 next-generation guided missile warships equipped with advanced stealth features, enhanced survivability, a reducer radar signature and a high degree of automation. These warships are capable of undertaking the full spectrum of maritime operations across all dimensions of naval warfare. Built with a high indigenous content, these platforms reflect the vision of Atmanirbhar Bharat and strengthen the country's defense manufacturing ecosystem. With Pallavi Parmar, this is Ankit Kumar, Akashwani News, Delhi.
1: The mortal remains of the 15 Indian tourists who lost their lives in the boat capsize incident near Phu Quoc Island in Vietnam will be repatriated from Ho Chi Minh City to India today by Vietnam Airlines flight. The Indian Embassy in Vietnam, in a social media post, said the flight is scheduled to depart from Ho Chi Minh City at 6 p.m. local time and is expected to arrive at Mumbai's Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport at 9:35 p.m. Indian Standard Time. In West Bengal, 2 new anti-crime laws have become effective from today. Governor R.N. Ravi has given his assent to the bill related to the control of anti-social activities. The State Assembly passed the 2 stringent anti-crime bills, the West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill and the

0: West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill. Under the West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Act 2026, a person involved in antisocial activities or one who is likely to engage in such activities in the future may be placed under preventive detention. Such a person can be detained for a maximum period of 1 year. Secretary in the Ministry of Panchayati Raj Vivek Bharadwaj today emphasized the need for collective action to make the country self-reliant in water management. He was addressing the inaugural session of National Level Training of Master Trainers Program on Water Budgeting and Water Security Planning by Gram Panchayats in New Delhi. Mr. Bharadwaj said meaningful change can be achieved when everyone comes together to work towards a common goal. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, has claimed responsibility for missile and drone strikes on U.S. military bases in Jordan, Bahrain and Kuwait as part of its ongoing Eye for an Eye operation. The attacks were described as retaliation for recent U.S. strikes on Iranian military targets. According to Iran State News Agency, the operation targeted the Prince Hassan Air Base in Jordan, Sheikh Isa Air Base in Bahrain and Ali Al Salem and Ahmad Al Jaber Air Bases in Kuwait. The IRGC claimed it damaged fuel depots, ammunition storage facilities, air defense systems and radar infrastructure. The development comes after CENTCOM launched a major wave of offensive precision strikes across multiple locations in Iran yesterday. The Intermeteorological Department has forecast isolated heavy to very heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during the next 2 to 3 days and isolated heavy falls in east Uttar Pradesh over 4 to 5 days. Benchmark domestic equity indices erased their early losses and were trading on a flat note during the afternoon session today. The Sensex advanced 61 points to 77,631, while the Nifty added 5 points to 24,211 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: Akashvani Ranchi se prastut hai pradeshik samachar. Namaskar. प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए। स्वास्थ्य अनुसंधान तंत्र को सुदृढ़ करना उद्देश्य। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद संजय सेठ ने अपराध के खिलाफ आम नागरिक एकजुटता पर दिया जोर, मोहल्लों में नागरिक सुरक्षा समिति बनाने की अपील की। रामगढ़ के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अंबष्ट की याचिका पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिया संज्ञान। तमिलनाडु में झारखंड के मजदूरों को मिलेगी राहत। कतरास के करकट्टा जंगल में कोयला माफियाओं के बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई। सीआईएसएफ ने 200 टन अवैध कोयला किया जब्त। और इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य भारत के स्वास्थ्य अनुसंधान तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करना है। मंत्रालय ने कहा कि यह मसौदा नीति विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श और उनसे प्राप्त सुझावों और अनुशंसाओं को शामिल करते हुए तैयार की गई है। मंत्रालय ने 27 जुलाई तक टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपराध के खिलाफ आम नागरिकों की एकजुटता पर जोर दिया और मोहल्लों में नागरिक सुरक्षा समिति बनाने की अपील की।
2: कोई घर में काम करने आए तो उनका आधार कार्ड जरूर, उनका चेहरा मिलान करो ताकि ऐसे असामाजिक तत्व आपकी सुरक्षा में सेंध नहीं लगा पाए। और रोजाना जो डकैती, चोरी और जो हत्याओं का दौर जमशेदपुर और सब जगह शुरू हुआ है, इसलिए नागरिक सुरक्षा समिति का गठन और कौन बाहरी व्यक्ति आ रहा है उसके पूरे मूवमेंट पर नजर रखें ताकि अपने लोगों की हम सुरक्षा कर सकें।
1: रामगढ़ के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की याचिका पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संज्ञान लेते हुए तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के मजदूरों की सहायता के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। याचिका में प्रभावित मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी

0: आर्थिक सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था करने की भी मांग की गई थी। धनबाद की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का मामला अब कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने नरसा विधायक अरूप चटर्जी को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। सांसद की ओर से 7 दिनों के भीतर सार्वजनिक माफी मांगने, आरोप वापस लेने, सोशल मीडिया से संबंधित सामग्री हटाने और 2 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति की मांग की गई है। ऐसा नहीं होने पर दीवानी और आपराधिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र में कल देर शाम ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान का विरोध कर रहे असामाजिक तत्वों ने पुलिस टीम पर पथराव किया और 2 बम भी फेंके। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ राजकीय श्रावणी मेले में इस वर्ष 50 लाख से ज्यादा भक्तों के बासुकीनाथ पहुंचने का अनुमान है। मंदिर प्रशासनिक समिति के सचिव और दुमका के अनुमंडल पदाधिकारी कौशल किशोर ने संबंधित अधिकारियों और धर्म रक्षिणी सभा के सदस्यों के साथ बैठक की। अनुमंडल पदाधिकारी ने तैयारियों की जानकारी दी।
1: पंडा धनुषी सभा सदस्यों के साथ एक मंदिर में बैठक की गई है, जिसमें श्रावणी और भादो मास में मंदिर खुलने का समय, जलार्पण स्टार्ट करने का समय, अर्घा लगाने का जो गाइडलाइन है और जो एसओपी बनाया गया है कि अर्घा कब लगाया जाएगा, उसके संबंध में निर्णय लिया गया है। और कांचा जल चढ़ाने वाले लोग हैं उनका भी संख्या लिमिट किया गया है। और जितने भी पंडा समाज के लोग हैं, जो धर्मनिष्ठ सभा के द्वारा जो लिस्ट बनाया जाएगा, जिनको आई कार्ड दिया जाएगा, उसकी सूची को इनको प्रायर अप्रूवल करा लेना है।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कतरास के करकट्टा जंगल में कल सीआईएसएफ ने अब तक का सबसे बड़ा सर्च अभियान चलाकर 200 टन अवैध कोयला जब्त किया और कोयला माफियाओं के बड़े नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई की। कमांडेंट अमित कुमार के नेतृत्व में करीब 70 सीआईएसएफ जवानों, सीसीएल प्रबंधन और मैकलसीगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने पिपरवार क्षेत्र में गोपनीय सूचना के आधार पर जंगल के भीतर चल रहे अवैध खनन और तस्करी के अड्डे को ध्वस्त किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
2: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 145 अंक घटकर 77,425 और निफ्टी 55 अंक लुढ़क कर 24,153 पर आ गए। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,30,000 रुपए प्रति किलो है। जामताड़ा जिला योग संघ की पहल पर डीएवी विद्यालय परिसर में अंतर विद्यालय योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला योग संघ के सचिव दीपक दुबे ने बताया कि प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभागी चाईबासा में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
3: इंटर स्कूल योगा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें पूरे जामताड़ा के 15 स्कूलों से लगभग 250 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे खिलाड़ियों को हम लोग प्लेटफॉर्म देने का कार्य कर रहे हैं और ये जामताड़ा जिला योग एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित किया गया है। आने वाले समय में जो बेहतर खिलाड़ी होंगे वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चाईबासा में जामताड़ा जिला को प्रतिनिधित्व करेंगे।
0: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बिंदाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए। स्वास्थ्य अनुसंधान तंत्र को सुदृढ़ करना उद्देश्य। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद संजय सेठ ने अपराध के खिलाफ आम नागरिक एकजुटता पर दिया जोर। मोहल्लों में नागरिक सुरक्षा समिति बनाने की अपील की। रामगढ़ के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की याचिका पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिया संज्ञान। तमिलनाडु में झारखंड के मजदूरों को मिलेगी राहत। कतरास के करकट्टा जंगल में कोयला माफियाओं के बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई। सीआईएसएफ ने 200 टन अवैध कोयला किया जब्त। और इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक किए पूरे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अनुरंजनी के अंतर्गत उपशास्त्रीय संगीत। कलाकार हैं शिप्रा बोस। इनसे आज आप सुनेंगे मिश्र खमा मिठुमरी और दादरा।

अनुरंजनी में अभी आप सुन रहे थे शिप्रा बोस से मिश्र खमाज में ठुमरी और दादरा। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं डॉक्टर कुमार आनंद, संगतकार हैं सिंथेसाइजर पर मुकुल राय, नाल पर सतीश मिश्रा, गिटार पर कृष्ण कुमार गुप्ता और तबले पर कामाख्या डे। सबसे पहले सुनते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का लिखा ये गीत डॉक्टर कुमार आनंद की आवाज में।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: इस संदेश से पहले आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आज के सुगम संगीत में आप सुन रहे थे डॉक्टर कुमार आनंद से कुछ गीत। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 2 बजने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार प्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: when reports last came in. In tennis, top seed Italy's Yannick Sinner retained his Wimbledon men's singles title, beating second seed German Alexander Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 in the final at the All England Club last night. This is Sinner's second consecutive Wimbledon men's singles title and his fifth Grand Slam crown. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court says determination of citizenship and foreigner status must be carried out through a fair, lawful and reasonable process. Sets aside Guwahati High Court's decision declaring 27 appellants as foreigners. Apex Court seeks status report from the SIT probing alleged misappropriation of donations in Ram Janmabhoomi Temple. President Draupadi Murmu takes cognizance of matter regarding Jharkhand workers affected by ammonia gas leak in Tamil Nadu, directs immediate action. Mortal remains of 15 Indians who died in Vietnam boat tragedy to be brought back home tonight by a Vietnam Airlines flight. Iran strikes U.S. military bases in Jordan, Bahrain and Kuwait in retaliation to U.S. attacks on its military targets. And in women's cricket, hosts England to resume their second innings at 130 for 6 against India in historic one-off test at the Lord's. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को एसआई का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घट कर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरी है, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि INS महेंद्रगिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
2: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है, जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का 3रा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमेरिका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
3: अपने 2 वर्ष के अंदर जो 6 लाख लगाई, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे लिए नहीं हुआ। अब मध्यप्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने FDI के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे अंदर।
0: ये समाचार हमारे NewsOnAIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक द्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है।

0: रखें। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
1: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिएगा कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकिनगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य निशान बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमेरिका ने कहा है कि ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज

0: बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के 4th दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती। लेकिन उससे पहले ये संदेश।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: जय भारती में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं एआर रहमान की आवाज में स्वदेश फिल्म का ये गीत। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है एआर रहमान ने।

अगला गीत आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में। फिल्म है हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया। कुमार के लिखे बोलों को संगीत से सजाया है शारिब तोशी ने।

महबूब के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है इस्माइल दरबार ने। फिल्म है हम दिल दे चुके सनम। गायक कलाकार हैं कुमार शानू, कविता कृष्णमूर्ति और साथी।

कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए अब सुनते हैं, जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म का। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और कुमार शानू ने। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है, जतिन ललित ने संगीत से सजाया है।

0: इस गीत के साथ ही फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 2:55 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में जारी है। बैठक में तकनीकी शिक्षण संस्थानों में नए कोर्सेज को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है और विभागीय योजनाओं की प्रगति की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री के साथ विभाग के सचिव, मुख्य सचिव अविनाश कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नामांकन का एक नया रिकॉर्ड बना है जो बढ़कर 4.5 करोड़ तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ताजा ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट के हवाले से बताया कि यह संख्या 2014-15 की तुलना में 31.5% अधिक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और स्टेम विषयों में विद्यार्थियों का बढ़ता नामांकन समावेशी भारत का एक बड़ा संकेत है। रांची से सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अनुशंसा पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से एक मरीज के इलाज के लिए 3 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि एयरपोर्ट रोड हुंडरू निवासी दीपक कुमार साहू को गंभीर बीमारी के उपचार के लिए प्रदान की गई है। इस मानवीय सहायता के लिए श्री सेठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए मरीज के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जामताड़ा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर आज सदर अस्पताल में दिव्यांग जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों की जांच कर उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने बताया कि स्वावलंबन पोर्टल पर पंजीकृत 60 से अधिक दिव्यांगों की जांच कमेटी द्वारा की जा रही है, जिसके बाद प्रमाण पत्र डाक के माध्यम से सीधे उनके घर भेजे जाएंगे।
2: दिव्यांग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए प्रक्रिया है कि एक स्वावलंबन पोर्टल है जिसमें प्रमाण पत्र चाहने वाले अपनी सारी डाटा को उसमें एंट्री करते हैं। दिव्यांग कैंप में बुलाकर उनका दिव्यांग प्रतिशत जांच करके प्रक्रिया अनुसार उनको दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करते हैं जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा उनके घर तक पहुँचा दिया जाता है।
1: इस पहल से जिले के दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों से आए दर्जनों जरूरतमंद परिवारों को सीधे लाभ पहुंचा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड कैडर के 2006 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और वर्तमान जेल आईजी सुदर्शन मंडल की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें हृदय संबंधी समस्या के बाद आईसीयू में रखा गया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रही है। पूर्वी सिंहभूम के आदिवासी बहुल डुमरिया प्रखंड के पहाड़ी गांव लाखाई डी में पारंपरिक हर्बल चिकित्सा को वैज्ञानिक आधार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। आईआईटी मुंबई के पूर्व प्रोफेसर एवं वरिष्ठ चिकित्सा शोधकर्ता डॉक्टर देवतोष दत्ता ने गांव पहुंचकर स्थानीय आदिवासी औषधीय परंपराओं और जड़ी बूटियों का अध्ययन किया। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक शोध से जोड़कर नई चिकित्सा संभावनाओं की तलाश करना है। देवघर एयरपोर्ट ने हवाई संचालन के सफल 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 12 जुलाई 2022 को शुरू हुई इस सेवा से अब तक 10,27,000 से अधिक यात्री सफर कर चुके हैं। निदेशक जय बैनर्जी के अनुसार वर्तमान में दिल्ली, मुंबई और बंगलुरु के लिए उड़ानें जारी हैं। आगामी अगस्त से गुवाहाटी के लिए भी नई सेवा शुरू होगी। भारत की जूनियर हैंडबॉल टीम चीन के चुझोऊ में 15 से 26 जुलाई तक होने वाली 19वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए जमशेदपुर से रवाना हो गई है। यह टीम चीन के लिए रवाना होने से पहले जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 10 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुई थी। खेल पदाधिकारियों ने टीम के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं।
3: 19 द जूनियर एशियन चैंपियनशिप चाइना जुचाओ में ये चैंपियनशिप 15 से 26 जुलाई आयोजित हो रहा है। इस प्रतियोगिता से वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफाई हुई मैच और इस प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए यहाँ टाटा स्टील प्लांट में जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कैंप लगा था।
1: खेल विशेषज्ञों को उम्मीद है कि टीम इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार और जय जोहार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदे नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
2: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
0: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था। प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है या सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे।
2: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था। इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
0: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है, यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एन आर प्रसाद जी और अखिला जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी रामदुलारी जी का।
2: जी इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद, प्रेरणाप्रद और ज्ञानवर्धक होता है। हम तो नियमित श्रोता हैं, आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
2: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाएं तो बहुत इनायत होगी। आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।

0: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
1: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
0: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था कि मातृवृक्ष किसे कहते हैं और क्यों।
1: श्रोताओ, इसका जवाब जान लेते हैं। मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं।
0: जी, और हमारा दूसरा प्रश्न था पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है। कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है। साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
0: जी, हमारा अगला प्रश्न था क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
1: जी, इसका जवाब भी जान लेते हैं। बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
0: जी अश्रोताओ, हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने आपसे पूछा था जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो उदाहरण दीजिए।
1: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
0: जी, तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कंगारू के कितने पैर होते हैं।
0: 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।
2: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे
3: फसल बह गई।
4: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों, बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता। वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया।

0: गांव की जनसंख्या बढ़ती गई और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
1: लो भाई, पहुंच गए सरेपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
2: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
1: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। कितना साफ पानी है।
0: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
3: अरे काट काट काट, काट मेरा भी क्या देख रहा काट।
4: अरे मैंने आज मैं पेड़ काट डाले।
0: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
5: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
0: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
3: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
4: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते उफ इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
1: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
6: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी में।
0: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
7: हमारे आर्य बच्चों का शिविर लगा है, हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा।
8: लगता है नदी प्रदूषित हो गई है।
1: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे फसल बर्बाद,
8: सारी फसल बह गई।
7: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा,
8: सारा
7: सामान मेरे जल्दी से ऊपर ले जाना होगा।
8: चलो जल्दी ऊपर,
7: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो चलो जल्दी चलो
8: चलो चलो चलो,
7: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप वाप ना आ जाए।
8: ध्यान से संभल कर।
0: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना

0: है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हां साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
1: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी। बच्चों संग वो खेलती थी, कलकल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहु ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
2: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा। शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। श्रोताओं, आपको अवश्य ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है एक गांव की कहानी।

ये बात बहुत पुरानी है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे। घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना। उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोक गीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं, मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा दाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता। मैं ही जीवन हूं धरती का, मुझे नष्ट मत करो। मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान।

0: रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी। वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती। जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।
1: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहां निकल गई है तू? अकेली जंगल में दूर मत जा।
2: अरे चाची, मैं यही तो हूँ। अरे चाची,
1: हाँ,
2: यहाँ आकर तो देखो।
1: हाँ हाँ,
2: कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के।
1: हाँ,
2: सबको यहीं पे बुला लो चाची।
1: हाँ हाँ,
2: सात आठ छत्ते तो होंगे ही।
1: अरे ओ रेवती,
2: अरे सुनो तो, श्यामा।
3: हाँ चाची।
2: किन्नौरी।
3: हाँ चाची।
2: और
1: हाय हाय, ये नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ।
3: हाँ प्रसन्नी।
1: अरे सब इधर आओ, जरा सुनो तो, ये गौरा क्या कह रही है।
3: आ रही हूँ चाची।
1: हाँ चाची।
4: क्या है चाची?
1: अरे
4: क्या हुआ?
1: कोई घबराने
4: वाली बात नहीं है री।
1: हाँ?
4: वो गौरा कह रही है
1: हाँ?
4: कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं।
1: हाँ? छत्ते? क्या मतलब?
4: हाँ हाँ छत्ते, वो भी दो तीन नहीं, बड़े बड़े सात आठ छत्ते लगे हैं। हाँ
1: सात आठ छत्ते, कमाल है।
3: अरे फिर तो मजा आ गया।
1: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो दो गगरी फट तो हो ही जाएगा।
4: अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद, अब तो कहीं नहीं मिला, और आज मिला है तो
3: चप्पल फाड़ गए।
1: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं।
4: क्यों नहीं, शहद निकालने के बाद दांतों भी तोड़ लेंगे।
3: अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं।
1: ठीक है ना, चल चलते हैं।

0: ऐसा था वहां का दैनिक जीवन। जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तूण, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: अरे गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? हाँ, आवाज तो आ रही है।
1: अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है।
2: मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।
1: वो देख गौरा।
2: अरे हाँ, वो साल के बड़े पेड़ के पास।
1: हाँ वही,
2: न जाने कौन लोग हैं।
1: पता नहीं कौन लोग हैं।
2: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाजें ना सुन ले।
1: चलो
2: और नजदीक चल के देखते हैं।
1: खाकी पैंट, सिर पर टोपी और हाथों में बंदूक भी है।
2: राम,
1: ये गांव के लोग तो नहीं लगते।
2: अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं, जो पेड़ काटने आए हैं।
1: अरे अरे देखो तो, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
2: हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे।
1: मगर कैसे?
2: भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है? और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं। अरे भले ही हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकना ही है। मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं। मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं, वो रास्ता छोटा लगेगा।
0: तो बस फिर क्या था, गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी। कटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए, खरोंचे लगी, प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया, पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए। मगर बिना रुके वो दौड़ती रही, दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।
1: हाय राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा?
2: अरे गांव में मर्द नहीं है तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है ना। हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा।
1: मगर ये औरतें और बच्चे।
2: अरे यार मगर मत कर, क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है? हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी।
1: बचाएंगी,
2: नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। अरे कोई है? अरे बाहर निकलो। चाची,
3: क्या बात है?
2: जल्दी बाहर
0: और फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने। उसके साथ 21 स्त्रियां और 7 बच्चे थे। सभी के सभी निहत्थे थे। उन्हें एक तरकीब सूझी। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जगह जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया, ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो ये संभव ना हो सके। अब सारी स्त्रियां आगे बढ़ी और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे।
1: सुनो सुनो,
4: वृक्ष हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं।
5: बिल्कुल,
4: इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब उन्हें काटा जा रहा है तो आओ अपने प्राणों की आहुति देकर इनकी रक्षा करें।
3: लेकिन हम क्या करें, इनके पास तो हथियार है।
4: अरे डरो मत, भाग कर हर बहन एक एक पेड़ से चिपक जाए ताकि ये पेड़ न काट सके। भागो, चलो पकड़ लो
0: जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर्प

0: पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
1: चिब्बू भाग ले यहाँ से,
2: भाग ले के बाद में
0: सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
3: वाह भैया, गौरा ने तो बहुत कमाल का काम कर दिया।
1: ऐसी चिपकी पेड़ से किसी ने छोड़ा ही नहीं पेड़ को। अरे
0: दोस्तों, इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है।
4: एक गांव की कहानी अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अभी इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को
4: कुसुमलता,
5: जगबंधु,
4: चेतना
5: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार, नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आइए सुनते हैं रांची मेलोडीज। रांची मेलोडीज में आपको सबसे पहले सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में खामोशियां फिल्म का ये गीत। रश्मि सिंह ने इस गीत को लिखा है, जीत गांगुली ने संगीत दिया है।

राम संपत के संगीत से सजी तलाश फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और आवाज है राम संपत की ही।

रब ने बना दी जोड़ी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत सुखविंदर सिंह की आवाज में। शब्द रचना जयदीप साहनी की है और धुन बनाई है सलीम सुलेमान ने।

शिल्पा राव, अमिताभ भट्टाचार्य और अमित त्रिवेदी की आवाजों में आइए अब सुनते हैं लुटेरा फिल्म का ये गीत। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे गीत को संगीत से सजाया है अमित त्रिवेदी ने।

पापोन की आवाज में आइए अब सुनते हैं दम लगा के हैसा फिल्म का ये गीत। वरुण ग्रोवर के बोल हैं, धुन है अनु मलिक की।

कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए वो सुनते हैं MM करीम और KK की आवाजों में फिल्म स्पेशल 26 से इरशाद कामिल के लिखे गीत को संगीत से सजाया है MM करीम ने।

0: इसी गीत के साथ ही रांची मेलोडीज अब यहीं समाप्त होता है। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। इस समय 4 बजने को है, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर पुनरीक्षण अभियान पर चर्चा की। आयोग के अध्यक्ष शमशेर आलम ने शिकायतों के त्वरित निपटारे पर संतोष जताया। गड़बड़ी मिलने पर धनबाद और गढ़वा के 2 BLO की सेवा समाप्त कर दी गई है। भाजपा ने राज्य सरकार पर निवेश के नाम पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि दावोस और दिल्ली यात्रा के MOU केवल पुरानी योजनाओं की रीपैकेजिंग है। उन्होंने केंद्र की अनुमति के बगैर परमाणु बिजली घर समझौते पर कड़ी आपत्ति जताई। देवघर में उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में DMFT न्यास परिषद की बैठक हुई। बैठक में कर्रो, सारठ और पालोजोरी में नवजात शिशुओं के लिए केयर यूनिट तथा बच्चों के लिए साइबर सुरक्षा और AI प्रशिक्षण सेंटर खोलने की मंजूरी दी गई। लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने AIR अभियान की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची को अधिक शुद्ध बनाने के लिए चुनाव पाठशाला और BLO की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। सरायकेला खरसावा जिले के गम्हरिया में आज वीर शहीद रतिलाल महतो का 27वां शहादत दिवस श्रद्धा के साथ मनाया गया। ऊपरबेड़ा में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में झामुमो नेता कालीदीप सोरेन सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राज्य में आगामी कई दिनों तक मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा, जिससे अधिकतम तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने संथाल परगना और कोल्हान सहित कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए वज्रपात की चेतावनी दी है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ साथ चले। इस कार्यक्रम में चर्चा होगी आज सरकारी योजनाएं बदलाव की नई उम्मीद। भेंट वार्ता का विषय है विकास की राह पर लौटते कदम। इस विषय पर इंदी पहन से बातचीत की है सिंधु मिश्रा ने। कार्यक्रम की प्रस्तुति एवं संयोजन गौरव कुमार पांडे की और प्रस्तुति स्वर है सिंधु मिश्रा का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ साथ चलें।

कार्यक्रम आओ साथ चले में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्वीकार करें कार्यक्रम की सहयोगी सिंधु मिश्रा का नमस्कार। श्रोताओं, झारखंड शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। झार या झाड़, जो स्थानीय रूप में वन का पर्याय है, और खंड यानी टुकड़ा। हमारा यह राज्य मूलतः एक वन प्रदेश है। यहाँ की प्राकृतिक छटा बेहद सुंदर और मनोरम है। हरे भरे वनों से भरे पहाड़ और पठार, कई जलप्रपात, अभयारण्य, नहर एवं कई ऐसी जगह यहाँ देखने योग्य हैं। प्रचुर मात्रा में खनिज की उपलब्धता के कारण इसे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है। हमारे झारखंड राज्य में कई ऐसे गांव हैं। विकास की प्रमुख योजनाएं उन गांवों और ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाई है जिसके वे हकदार हैं। आज सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाने और इसे क्रियान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सी योजनाओं का लाभ लोग ले भी रहे हैं, परंतु इसके लाभ से वंचित बहुत से लोग जो अति पिछड़े क्षेत्रों के हैं, जागरूकता और जानकारी का अभाव आज भी इनमें देखा जा रहा है। श्रोताओं, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इनकी वजह से हमारे भोले भाले भाई बहन आज बेरोजगारी की वजह से अपने गांव, अपने समाज से दूसरे क्षेत्रों, नगरों, महानगरों में रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। ऐसे लोग मानव तस्करी जैसी गंभीर समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। वहीं एक और गंभीर समस्या हमारे सामने नक्सलवाद के रूप में चुनौती बनकर खड़ी है। आज विकास की

योजनाओं का लाभ जिन्हें नहीं मिल पा रहा, वे मजबूर होकर गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी की वजह से समाज की मुख्य धारा से भटक रहे हैं। श्रोताओं, बहुत सी सरकार की विकास हेतु कल्याणकारी योजनाएं लाई गई हैं, जैसे नरेगा के तहत डोभा तालाब का निर्माण, मुर्गी पालन, बकरी पालन, गो पालन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मकान सरकार की ओर से अत्यंत पिछड़े एवं गरीब ग्रामीण भाई बहनों को दिए जा रहे हैं। रोजगार दिलाने हेतु कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कौशल विकास, इसके तहत अकुशल हुनरमंदों एवं जरूरतमंदों को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जा रहा है, ताकि वे स्वयं अपने पैरों पर पूरे आत्मसम्मान एवं आत्मबल के साथ खड़े होकर आत्मनिर्भर हो सके, साथ ही इनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरे और ये अपने परिवार, समाज एवं देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा सके। श्रोता मित्रों, जब हम में आत्मविश्वास और जागरूकता की कमी आती है, तब हम में भटकाव देखने को मिलता है। समाज की मुख्य धारा से भटकाव, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, इन्हें हम मान सकते हैं। साथ ही स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार जैसी बुनियादी सेवा के अभाव के कारण भी लोगों में भटकाव देखा जा रहा है। आज जो भाई बहन समाज की मुख्य धारा से भटक कर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और विभिन्न समस्याओं और यातनाओं को झेल रहे हैं, उनके लिए हमारी सरकार द्वारा समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने हेतु आत्मसमर्पण नीति बनाकर एवं कई लाभकारी योजनाओं से जोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसका अपेक्षित परिणाम देखने को मिल रहा है। समाज की मुख्य धारा से भटके हुए बहुत से लोग वापस आकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज के हमारे आओ साथ चले कार्यक्रम में हमारी बातचीत समाज की मुख्य धारा से भटके हुए जो अब समाज की मुख्य धारा से जुड़कर परिवार, समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग कर रहे हैं, ऐसे ही एक व्यक्ति से हो रही है। तो आइए करते हैं बातचीत। आत्मसमर्पण कर चुके, सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे एवं शांति में जीवन बिता रहे एक भाई से।

0: सबसे पहले आइए इनका नाम जानते हैं। आपका नाम बताइए।
1: इंदी पाहन।
0: किस गांव के रहने वाले हैं आप?
1: ग्राम नचलदाग, थाना नामकुम है।
0: तो नचलदाग कैसा गांव है?
1: है तो ऐसे जनरली देहाती है, कोई जंगल जंगल एरिया है, और वहाँ ऐसे तो हम लोग रहते हैं बहुत 100 परिवार से लगभग ज़्यादा है।
0: अच्छा।
1: और वहाँ ऐसे कुछ ऐसे तो सरकारी के कोई ऐसा विकास तो हुआ ना, अभी नहीं हुआ है।
0: अच्छा।
1: लेकिन इससे हम लोग औजा कुछ और था, इसीलिए कुछ अपने मन में कुछ दबाव भी पड़ा, कुछ परिस्थितियाँ भी पड़ी, तब हम लोग मैंने अपना रास्ता से कुछ भटक गए थे।
0: नचलदाग जो है गांव, वहाँ पे लगभग कितने लोग अभी रह रहे होंगे?
1: अभी तो लगभग वही 100 परिवार से ज़्यादा हैं।
0: क्या काम कर रहे हैं लोग?
1: वही तो बस वहाँ तो खाली खेतीबाड़ी का और मजदूरी ही काम करते हैं, और नौकरी काम करना तो बहुत ही कम है।
0: खेतीबाड़ी कर रहे हैं तो क्या खेती में क्या काम कर रहे हैं, क्या उगाते हैं?
1: वही तो सीजन, एक ही सीजन खेती तो मात्र मैंने एक सीजन होता है, धान उन खेती करते हैं, वही सब दाल वही सब होता है। और गर्मी का सीजन में तो ऐसे और लोग गांव से मैंने बाहर काम करने के लिए चल जाते हैं।
0: ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी और दैनिक जो काम किया जाता है मजदूरी का, उसमें लगे हुए हैं। और आप क्या कर रहे हैं?
1: काम तो हम पहले पढ़ाई करने के बाद घर में कुछ ही दिन थे, वही एक ही 2 साल थे घर गांव में, खेतीबाड़ी हम ही कर रहे थे, नौकरी के लिए इधर उधर गए थे। लेकिन वैसे ही परिस्थिति में मैंने कुछ गांव में लफड़ा हुआ, और गांव के लोग बिना दोषी में मैंने हमको दोषी करार किया, और मेरा ऊपर मुकदमा चलाया, और मैंने जेल हम चले गए।
0: अच्छा।
1: उसके बाद में हम जेल से जब निकले तो हमें 20 साल का सजा हो गया था। तो निर्दोष में 20 साल का सजा होने के बावजूद मैंने जेल से निकलने के बाद मैंने थोड़ा मन में बहुत ही गुस्सा पैदा हो गया इस तरह, तब मैंने उसी

0: मैंने पार्टी से संपर्क किया और मैं पार्टी में चला गया। जेल निकलते ही हम पार्टी में चले गए।
1: आपने कहा कि आपने पढ़ाई लिखाई भी की है, तो कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं?
0: पढ़े लिखे हम इंटर तक किए हैं।
1: अच्छा, तो इंटरमीडिएट तक आपने पढ़ाई की और फिर गांव में रहते थे?
0: जी हाँ, गांव में ही रहते थे।
1: अच्छा, उसके बाद पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप खेती बाड़ी का काम कर रहे थे?
0: जी हाँ।
1: तो नौकरी की तलाश आपने की?
0: नौकरी की तलाश की थी, लेकिन वैसे 2-3 साल उसके बाद तो वही ज़्यादा दिन हम घर में, कम से कम 2 साल थे पढ़ाई के, आने से बाद में हम 2 साल ही थे, 2 साल के अंदर में ही मेरा इस तरह का घटना हुई और हम जेल चले गए।
1: तो आखिर ऐसी क्या बात हुई थी जिसके वजह से आपको जेल तक जाना पड़ा?
0: वैसे आदमी का मन एक होता है ना कि कोई चीज थोड़ा बढ़ता है तो उसको गिराने का ही संभव है। उसी तरह से हमको किया गया। दूसरी में कुछ हम अब समाज का ही काम कर रहे थे तो वही लोग मेरा ऊपर में कुछ डला और लोग कुछ आदमी को समझा बुझा के हमको मैंने अपना काम से मैंने भटकाने का गिराने का कोशिश किया।
1: मतलब निर्दोष होते हुए आपको जेल जाना पड़ा और यही आपके अंदर एक बेचैनी जैसी बात हुई और आपने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया।
0: जी हाँ।
1: जब समाज की मुख्य धारा से आप भटक गए, दूसरा रास्ता आपने अपना लिया, तो वहाँ पर क्या आपको समस्याएं झेलनी पड़ी? और
0: वहाँ तो समस्या बहुत से झेलनी पड़ी। कुछ दिन 3 साल जैसा पार्टी में थे तो बहुत ही वैसे पुलिस से भी तंग आने लगे, सब तरह से तंग आने लगे। जंगल में रहने से तो गांव जैसा तो नहीं रहना पड़ता है, तो परिवार के साथ अलग रहना पड़ता है। इसी तरह हम लोग वन में ही रहते थे, इसे इधर उधर भटक ही रहते। लेकिन जब और केस पड़ा हम लोग के ऊपर, फिर कुछ कांड उंड होता था तो हम लोग का फिर केस होते थे हो रहा था, तब इधर गांव तरफ से भी परिवार लोग को भी तंग होने लगा। फिर हम लोग को तो तंग हो ही रहता है, तो भाई गांव परिवार का भी सर और कुछ इधर जो आईजी थे प्रवीण कुमार, उसके तक हम लोग का नंबर उम्बर पहुंचा, साथ में कुछ पकड़ाया तो उन्हीं लोग के थ्रू से हम लोग का नंबर उम्बर लेके वही ने समझाया, और साथ में MS भाटिया भी थे, वो लोग समझाया कि आप लोग सरेंडर कर दीजिए कि आप लोग का नौकरी मिलेगा। लेकिन हम लोग को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि हम लोग को चौकी मैंने कि लोग बहला फुसला के किसी तरह से मैंने पकड़ लेगा और जेल में डाल देगा। हम लोग का तो यही हो रहा था, लेकिन विश्वास तो नहीं हो रहा था। लेकिन उन लोगों ने बहुत प्रेस किया, करने के बाद हम लोग बोले कि ठीक है देखते हैं, कम से कम हो या ना हो। आखिर हम लोग इधर उधर भटकिए रहे हैं, तो हम लोग ने सोचा कि अब कुछ भी हो, तो पहले हमने जेल तो खट चुके थे, तो हमने सोचा कि जेल ही जाएंगे तो क्या करेगा। तो जब 10 साल हम खट ही ली, 20 साल का सजा हुआ था, तो 10 साल में मुझे हाईकोर्ट ने बारी किया था, तो हमको जेल के बारे में भी जानकारी था। तो मैंने सोचा चलो जेल ही सही, कम से कम वहाँ शांति से तो रहेंगे। अब जो दे चाहे नहीं दे वो तो अब भगवान के ऊपर छोड़कर, हमने उन लोगों का बात मानकर हम लोगों ने सरेंडर किया। और सरेंडर करने के बाद तो 1.5 साल तो जेल खटना ही पड़ा फिर से। लेकिन जैसे ही हम लोग का केस ख़त्म हुआ और कुछ दिन के बाद हम लोग का सरकार थे वो हम लोग को नौकरी दे दिया, और नौकरी भी दिया, और सरकार जितना करीब करीब जितना वादा किया था वो लोग, जितना हम लोग को बोले थे करीब करीब हम लोग को दे ही दिया है। इसे जमीन दिया, अच्छा, प्लस नौकरी दिया, और केस लड़े थे उसका जो पैसा हम लोग ने लगाए थे उसका भी भरपाई किया। अच्छा। इस तरह से करीब मैंने जो भी जितना पैसा दिया बोला था उतना सरकार जो वादा किया था करीब करीब मैंने हम लोग को पूरा दिया ही। तो नौकरी भी दिया, फिर अलावा जिस दिन हम लोग भटक गए थे अपना परिवार को लेके जहाँ तहाँ रहे उसका भाड़ा भुता देना दिए थे, उसका भी पूछ पूछ के बोला कि खर्चा कहाँ किए हो, तो जिसका घर में रहते थे वो इतना तक कि घर भाड़ा सब भी दे ही दिए, वो भी दिए। इस तरह से जितना दिए सहयोग बहुत किया। अब आजकल है कि हम लोग शांति जीवन जी रहे हैं। फिर बोले थे कि मैंने लड़का, 2 लड़का का जो पढ़ाएगा उसका भी दाम मैंने लगाएंगे कोई भी स्कूल में, बोलते हैं। लेकिन ये भी हम लोग कर रहे हैं कि बहुत लोग का बाल बच्चा पढ़ रहा है, ऐसे मेरा भी एक पढ़ रहा है, तो उसका मैंने हम प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, तो उसको पढ़ाने के बाद हम बिल जमा कर देते हैं, तो फिर तुरंत तो नहीं देता है, लेकिन 1 साल होते होते करीब उसका भी पैसा सरकार

0: को चुक्ति चुक्ति कर रहा है। तो यही सब विश्वास है कि बहुत भाई हम लोग भटक गए थे, तो और हम चाहते हैं कि हम लोग जैसा और भाई लोग भटक रहे हैं वो लोग चाहे माने कि हम लोग का मुख्य धारा में आए तो माने बेहतर होगा। यही कहेंगे।
1: सही कहा आपने। आपने कहा कि सरेंडर करने के बाद आपको सरकार की तरफ से जो चीज़ें मिलनी चाहिए, योजनाओं के तहत जितनी चीज़ें मिलनी चाहिए, ज़मीन, पैसे और जो आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मिली और नौकरी भी मिली। तो अभी आप कौन सी नौकरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं?
0: अभी तो हम पुलिस में हैं, पुलिस में ही अभी पेट्रोलिंग ड्यूटी जैसे पुलिस और जो पुलिस है जिन लोग को ऐसा करता है बस हम वैसा ही हम लोग को भी काम ड्यूटी मिलता है।
1: अच्छा, तो पेट्रोलिंग वाले में क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है?
0: पेट्रोलिंग में तो अभी जैसे थाना का पेट्रोलिंग होता है अलग चीज होता है, और हम लोग पेशियार और हाईवे का ड्यूटी थोड़ा सा कुछ और होता है। हम लोग जैसे 12 हाईवे 12 में हम अभी करते हैं, उसमें से हम लोग यही करते हैं कि रोड रोड चलना है और जगह जगह कुछ कुछ रुकते जाना है, और कहीं अगर एक्सीडेंट हुआ तो बस तुरंत उसका खबर मिलते ही वहाँ चल जाना है, और जो वहाँ जो लगता है उसको तुरंत उठा के हम लोग हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं, और हॉस्पिटल पहुँचा के उसका परिजन को खबर दे देते हैं, बस उतना ही। उसके बाद तो फिर अपना ड्यूटी में फिर वापस आ जाते हैं।
1: तो ये ड्यूटी करते हुए आपको कैसा लग रहा है?
0: ये तो बहुत ही अच्छा लगता है, काहे कि मैंने ऐसा है कि पब्लिक का ही साथ में रहना है और पब्लिक का ही सेवा करना है, तो इसलिए ड्यूटी तो अच्छा ही लगता है।
1: इंदी पाहन जी, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसे आप समाज की मुख्य धारा से भटक गए थे और जो भी परेशानियां आपको आई उस वक्त आपने काफी समस्याओं का आपने सामना किया है, साथ ही साथ आपके साथ साथ परिवार वालों ने भी उन समस्याओं को झेला है, है ना, आपके पीछे। और अब जो आप नौकरी कर रहे हैं, पेट्रोलिंग वाली ड्यूटी कर रहे हैं, इसमें आपको अच्छा भी लग रहा है, तो दोनों में आप क्या फर्क महसूस करते हैं? समाज की मुख्य धारा से जब आप भटके हुए थे तब और अब की जिंदगी, आपको दोनों में कैसा महसूस हो रहा है?
0: दोनों में तो आसमान और जमीन का फर्क है।
1: बिल्कुल।
0: कहा कि उसमें शांति नहीं था, और इसमें शांति है। और क्या क्या बताए उसे ज्यादा।
1: सही बात है। और एक आदमी को शांति में जीवन बहुत जरूरी है जीने की। तो आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं?
0: हमारे परिवार में तो अभी माता पिता है और भाई लोग हैं, और अपने परिवार दो, एक लड़का और एक लड़की है मेरा, बस उतना ही है।
1: तो परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी आप ही पर है?
0: हाँ, मेरा ही पर है, और बाबूजी सब अभी है, खेती बाड़ी भी है, इसीलिए तो अभी बाबूजी सब जब तक रहेंगे तो खैर उन्हीं लोग के ऊपर है।
1: अच्छा।
0: लेकिन हाँ, तो कुछ होता है तो हम लोग सपोर्ट तो एकदम करवे करते हैं। अब असना उतना ही थी तो नहीं है, इसीलिए हम लोग मैंने पूरा परिवार अभी ठीक है।
1: तो समाज की मुख्य धारा से जब आप जुड़े, परिवार के बीच आए, तो आपके परिवार वालों ने क्या कहा आपसे? सबसे पहले जब आप अपने परिवार के बीच आए तो कैसा उन लोगों को लग रहा था?
0: उन लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा था कि पहले आप जहाँ तहाँ भटक रहे थे, और कब कहाँ होगा कब उसका कोई गारंटी नहीं था, और कोई हम लोग को थाना पुलिस भी आके घर में आके कुछ भी बोलता था। लेकिन जब से सिलेंडर करने के बाद मैंने कोई ऐसा कोई आदमी आता नहीं है, और अभी हम लोग मैंने शांति से हैं बोलते हैं।
1: तो आपने अपने बच्चों के लिए क्या सोचा है?
0: हमने अपना बच्चों के लिए तो अब ऐसे हम सोचते हैं कि मेरा जैसा भटकना ना पड़े, इसलिए मैंने अच्छा से मैंने रास्ता दिखा के दिखा देंगे, वही हम सोचते हैं, और क्या कीजिएगा।
1: तो बच्चे अभी किस क्लास में पढ़ रहे हैं?
0: लड़की तो अभी छोटी है, और लड़का तो हम थोड़ा 9 क्लास पढ़ के अभी छोड़ दिया, अभी पढ़ने ही नहीं जाता है, तो क्या करेंगे इसे। इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है, तो ऐसे आजकल पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने घर में अब ठीक ठाक से उड़ा रहा है, इधर उधर तो खैर नहीं भटक रहा है, और घर को हम बाहर भी रहते हैं तो मैंने घर में अच्छी से उड़ा रहा है।
1: बच्चों को आपने कहाँ पढ़ाया लिखाया है, अपने गांव में ही या कहीं और?
0: पहले तो हम नहीं थे, इसलिए लड़का तो गांव में ही पढ़ रहा था।
1: अच्छा।
0: लेकिन गांव में ही था, और उसके बाद छोड़ दिया, और बच्ची तो

0: प्राइवेट स्कूल में गांव में पढ़ रही है।
1: अब इंदिपान जी एक बात और बताइए कि जब आपने सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया, उसके बाद जो सरकारी योजनाएं आपको मिली, योजनाओं के तहत लाभ मिला, वो कौन कौन से लाभ थे?
0: उन लाभ हम लोग का ऐसे जमीन मिला, उसके बाद में
1: कितना?
0: 4 डिसमिल,
1: अच्छा।
0: और सरेंडर करने के समय ही हम लोग को 50,000 दिया था, उसके बाद फिर 2.5 लाख दिया, उसके बाद में फिर दिया था जैसे मैंने लड़का कुछ दिन पढ़ा था उसका हम पढ़ाई भरे थे उसका दिया, और केस में जो कुछ खर्चा हुआ था उसका भी दे दिया हम लोग को।
1: आपको क्या लगता है कि इतना काफी है या और भी कुछ आप सरकार को सुझाव अपनी ओर से देना चाहेंगे?
0: सरकार से हम तो क्या मैंने जितना दिया है उतना तो दे ही रहा है, और सरकार से हम यही का कहेंगे, जितना जैसे वादा किया है वैसा अगर और हम ही लोग की तरह देते रहे तो और भटक रहा है वो सब आएंगे, लेकिन सरकार से हम यही सुझाव चाहेंगे कि जो केस है केस में जिम्मेवारी वो नहीं ले रहा है। मेन चीज़ यह है कि जिसका अगर मान लिया 20-30 गो है तो नौकरी देंगे बोल के तो सिलेंडर करता है, लेकिन इसी में सरकार कहता है कि केस खत्म होगा तभी मैंने नौकरी मिलेगा, तो कुछ लोग बहुत लोग सोचते हैं कि जो 20-30 जिसका केस है वो तो केस खत्म होते तो मेरा उम्र भी खत्म हो जाएगा। यही एक तो विशेष है सरकार से कि मैंने केस जो वो मैंने जिम्मेवारी नहीं ले रहा है। हाँ, अगर केस में थोड़ा सा उन लोग को राहत देता कुछ तो शायद भाई लोग और है जो ज्यादा ज्यादा केस है वो लोग भी आ जाएंगे, लेकिन केस का जिम्मेवारी सरकार
1: नहीं लेते।
0: नहीं लेता है। यही विशेष है कि मैंने आदमी जो ज्यादा है वो तो सोचता है कि हम तो सिलेंडर करेंगे भी तो सलाद जेले में सड़ जाएंगे तो उम्र खत्म होगा तो नौकरी कहाँ का करेंगे। इस तरह से कुछ समस्या है, विशेष तो यही है कि अगर केस में उन लोग को कुछ सपोर्ट करेगा तो शायद और ही आएगा।
1: तो श्रोताओं, इंदी पहान जी की कुछ समस्याएं भी हैं और साथ ही साथ कुछ अपेक्षाएं सरकार से हैं। जैसे केस को लेकर इन्होंने ये बात कही कि केस की जिम्मेदारी सरकार की ओर से नहीं ली जाती है, जिस वजह से बहुत सारे हमारे भाई बहन अभी भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाने में असक्षम है। इंदी पहान जी, एक बात और बताइए कि कई बार देखा जाता है कि मुख्य धारा से जो भटके हुए हमारे भाई बहन हैं, युवक युवतियां हैं जो जंगल में भटक रहे हैं, यहाँ से वहाँ दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, साथ ही साथ उनमें कहीं ना कहीं एक डर भी है कि पुलिस उनके पीछे लगेगी या फिर उनको पकड़ा जाएगा या मारे जाने का भी खतरा है। तो ऐसे भाई बहनों को आप अपनी ओर से, प्रशासन की ओर से कोई भय ना रखें या फिर कैसे वो मुख्य धारा से जुड़े, इस बाबत आप अपनी ओर से उन भाई बहनों को क्या कहना चाहेंगे?
0: हम अभी भी भटक रहे हैं वो भाई बहनों से यही चाहेंगे कि सरकार जो कह रही है वो तो हम लोग को वादा करके कर ही दिया है, इसलिए जो भी भाई भाई है अपना मैंने डर भाई मैंने त्याग करके मैंने वापस आ जाना बेहतर होगा।
1: अंत में एक सवाल और होगा कि जब हमारे भाई बहन मुख्य धारा से जुड़ने लगते हैं या आत्मसमर्पण करने के बाद अपने परिवार और गांव के बीच पहुंचते हैं, तो कई बार देखा जाता है कि गांव वाले उन्हें अपनाने से कतराते हैं। क्या ऐसी कोई समस्या आपके साथ आई?
0: वैसा तो समस्या नहीं है, नहीं नहीं हुआ हमारे भी गांव वाला, गांव वाला तो ऐसा नहीं करता है बहुत, तो अगर जिस जिन्होंने गांव का है ये पहले बहुत ही आराकत किया होगा तो कुछ लोग को कुछ एक दो को तो करेगा ही करेगा, नहीं करेगा सो बात नहीं, लेकिन वैसा तो पूरे गांव वाला तो नहीं है करेंगे, एक दो ही जिसका जिसे हम किसका ज़्यादा गलत किए हैं तो वो लोग तो कुछ तो कतराएंगे ही, लेकिन पूरे परिवार का और पूरे गांव का वैसा नहीं करते हैं।
1: चलिए इंदी पहान जी, और अभी आप एक शांतिमय जीवन बिता रहे हैं और परिवार के बीच रह रहे हैं और अपनी नौकरी में भी लगे हुए हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भविष्य और भी अच्छा हो, आपके बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे और अच्छी जगह पहुंचे, इसके लिए हमारी भी शुभकामनाएं।
0: तो हमारे तरफ से भी आपको मन बहुत धन्यवाद है सुनने।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाज की मुख्य धारा से भटकाव की बात, मुख्य धारा से जुड़कर सुखद जीवन बिता रहे इंदी पहान से हमारी बातचीत। श्रोताओं, यह भी सच है कि आज सरकार द्वारा नक्सलवाद दूर करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए आत्मसमर्पण नीति बनाकर और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं

मिट्टी, कपड़ा, मकान एवं स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं से इन्हें जोड़कर एवं सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देकर इन्हें रोजगार के भी सुअवसर दिए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ इन्हें मिल सके। अतः इसके लिए जन जन की जागरूकता बेहद आवश्यक है, तभी हम विकास की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारकर देश के विकास में भागीदारी निभा पाएंगे और तभी सबका साथ मिलेगा तो सबका विकास भी सुनिश्चित हो पाएगा।

और प्रस्तुति एवं संयोजन था गौरव कुमार पांडे का। इसी के साथ ही आज का आओ साथ चले कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आई श्रोताओं, आज हमारे रांची केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ साथ चलें। प्रस्तुति स्वर था सिंधु मिश्रा का।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 4:35 पर आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गाने। कार्यक्रम होगा सांझ सरगम। प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे शाम 5 बजे और 5:02 पर आप सुनते हैं युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

5:30 पर आप सुनेंगे हमारा औद्योगिक प्रसारण श्रमिक लोग, जिसमें आज चर्चा होगी कौशल विकास योजना, अटल पेंशन योजना, ऊर्जा की बचत, ऊर्जा का उत्पादन और साइबर फ्रॉड से सुरक्षा। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की और शाम 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

शाम 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बारी। चर्चा होगी जैविक खाद अपनाएं। परशोत्तरी में आप सुनेंगे आम के प्रमुख विकार, लक्षण, कारण और प्रबंधन। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर वर्षा रानी और भेंटकर्ता होंगे कृष्ण जीवन पौराणिक। कार्यक्रम खेती बारी के प्रस्तुतकर्ता होंगे प्रभु शरण।

हमारी दुनिया कार्यक्रम का समय रहेगा 6:30, जिसके अंतर्गत आज चर्चा का विषय होगा अनेकता में एकता, हमारी विशेषता। और पंच परगनिया वार्ता भी हम आपको सुनवाएंगे, जिसमें आज का विषय होगा पलायन, समस्या और समाधान। वार्ताकार होंगी ललिता मोहन महतो।

प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा शाम 7 बजे और 7:11 पर जिले में आजकल। आदिवासी अखड़ा, ये कार्यक्रम आज आप सुनेंगे 7:15 से। आज का ये कार्यक्रम होगा उराव भाषा में, जिसके अंतर्गत आज चर्चा होगी बिजली और पानी की बचत की आदत डालें और धान रोपनी की प्रक्रिया में तेजी लाएं।

श्रोताओं, आज सोमवार है और आज के दिन आप सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। समय रहेगा 7:45। रात 8 बजे हम लेकर आएंगे श्रोताओं के लिए फिल्मी गीतों का प्रोग्राम रजनीगंधा और 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। समाचारों का समय होगा 8:45 से। पहले आप सुनेंगे समाचार संध्या 9 बजे न्यूज एट 9 और 9:15 पर होंगे उर्दू समाचार, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

पब्लिक स्पीक ये हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति होगी और श्रोताओं रात 10 बजे हम लौटेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे यादों से भरा खास प्रोग्राम सुनहरी यादें। इस कार्यक्रम में आज आपके साथ होंगी रौनक जहां। और रात 10:30 का समय रहेगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का। आज के कलाकार होंगे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, जिनसे आज आप सुनेंगे राग देश में गायन, और हिंडोली सारंग में गायन। और 11 बजे से आज आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से। और 11:10 पर हमारी आज की सांध्यकालीन का सभा का समापन होगा। तो ये थे कार्यक्रम विवरण, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझे सरगम।

कार्यक्रम सांझ सरगम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज की पहली शुरुआत उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों से, गीत आनंद बख्शी का, संगीत नदीम श्रवण का, फिल्म का नाम तुमसा नहीं देखा।

और अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश प्यासा सावन फिल्म से। गीत के बोल संतोष आनंद के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाजें लता मंगेशकर और सुरेश वाटकर की।

मैंने प्यार किया इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था देव कोहली ने और संगीत से सवारा था राम लक्ष्मण ने, और आवाजें थी लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की। इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम सांझ सरगम अब संपन्न होता है।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज चुके हैं, आइए सुने प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को अधिक आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। रांची में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई अहम दिशा निर्देश दिए। दिल्ली में 23 जुलाई को होने वाले सेवा दल के राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आज रांची कांग्रेस भवन में बैठक हुई। मुख्य संगठन नवीन कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बताया गया कि सम्मेलन में झारखंड से हजारों कार्यकर्ता भाग लेंगे। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता के विरोध में विभिन्न छात्र संगठन और अभ्यर्थी कल रांची स्थित जेपीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। आगामी आंदोलन की रणनीति को लेकर आज रांची में अभ्यर्थियों और छात्र संगठनों की बैठक हुई। लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने आईटीडीए योजनाओं की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने पुंदाक नदी पुल निर्माण की धीमी प्रगति पर संवेदक के खिलाफ 15 दिनों में कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। हजारीबाग में विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में सदर अस्पताल परिसर से जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत रवाना किया गया जागरूकता सारथी रथ अगले 1 महीने तक जिले के गांवों में भ्रमण कर लोगों को परिवार नियोजन के लाभ और जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूक करेगा। राज्य में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है, जिससे अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल रांची, जमशेदपुर, धनबाद और दुमका सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार
2: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सांध्यकालीन सभा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, मैं हूं छवि। श्रोताओं, अब आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में हम बता देते हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी संध्या के 5:05 पर आपको हम सुनवाएंगे कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें एक ही गायक के गीत आप सुनेंगे। संध्या के 5:30 से 6 बजे तक आपको हम सुनवाएंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, जिसमें चर्चा की जाएगी हरे चारे की खेती के बारे में। मनोरंजन होगा हो लोकगीत से मादे कोई होनहागा और साथियों के स्वर में। भेंटवार्ता आप सुनेंगे शकरकंद और कच्चू की खेती के बारे में। भेंटवार्ताकार हैं महावीर बुड़ियुली और उनसे भेंट कर रहे हैं कोमल नायक। इसके अलावा आप सुनेंगे उड़िया लोकगीत दिलीप निषाद और साथियों के स्वर में। इसके अलावा बाजार भाव बतलाया जाएगा। संध्या के 6 बजे आपको पुनः लिए चलेंगे हमारे रांची केंद्र, जहाँ से आप सुनेंगे मुख्य समाचार। संध्या के 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हुआ खड़ा, जिसमें जानकारी की बातों के अलावा होगा हेरो दुरंग, जगन्नाथ गागराई और साथियों के स्वर में। इसके अलावा आप सुनेंगे भेंट वार्ता और मनोरंजन करवाया जाएगा हिंदी गीत से ननिका देवगम और साथियों के स्वर में। इसके अलावा भो भाषा में ही जानकारी दी जाएगी मिशन वात्सल योजना के बारे में। 6:30 पर होगा युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। 6:55 पर आपको हम लिए चलेंगे हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। 7:15 से रात्रि के 8 बजे तक आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद, जो कि श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम है। संध्या के 6 बजे से 8:15 तक आप सुने 45 मिनट तक आप सुनेंगे रजनीगंधा कार्यक्रम, ये भी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम है। 8:45 से रात्रि के 9 बजे तक आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि के 9 बजे से 9:15 पर होगा अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से ही। 9:15 से रात्रि के 10 बजे तक आप सुन सकेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। रात्रि के 10 बजे से 10:30 तक आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। 10:30 से रात्रि के 11 बजे तक आपको हम सुनवाएंगे कार्यक्रम सुरों के रंग। 11 बजे से 11:05 तक आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। 11:05 से 11:10 तक होगा अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से ही। और रात्रि के 11:11 पर हमारे सभा समापन की उद्घोषणा की जाएगी। तो श्रोताओं, आप अभी सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

के बारे में कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:06 हो रहे हैं। चले आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायक किशोर कुमार के गाए कुछ गीत। कार्यक्रम गुलदस्ता सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले आपको हम सुनवाने जा रहे हैं फिल्म मिस्टर इंडिया का ये गीत, किशोर कुमार और साथियों के स्वर में। जावेद अख्तर के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायक किशोर कुमार के गाए कुछ गीत। अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मुनीम जी का ये गीत। साहिर के बोल है, संगीत है इष्टी बर्मन का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाई बासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायक किशोर कुमार के गाए कुछ गीत। अब आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म आपकी कसम का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायक किशोर कुमार के गाए कुछ गीत। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं मंजिल फिल्म का ये गीत, आर डी बर्मन का संगीत है।

श्रोताओं आप अब सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता में। कार्यक्रम का अंतिम गीत शराबी फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ थी। प्रकाश मेहरा के बोलर संगीत था पप्पी लहरी का। तो इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम गुलदस्ता यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं ये आकाशवाणी का चाई बसा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

0: खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को कोमल नायक का जोहार। तो कैसे हैं किसान भाई बहनों आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हरा चारा की खेती, आज हम इस विषय पर आप सभी को जानकारी देंगे। तो किसान भाई बहनों, पशुओं के भोजन में हरे चारे की एक खास भूमिका होती है। यह दुधारू पशुओं के लिए फायदेमंद भी होता है। बारिश में तो हरा चारा खेतों की मेड़ या खाली पड़े खेतों में आसानी से मिल जाता है, परंतु सर्दी या गर्मी में पशुओं के लिए हरे चारे का इंतजाम करने में परेशानी होती है। ऐसे में या ऐसी स्थिति में खेत के कुछ हिस्से में हरे चारे की बुआई करने से साल भर चारा मिलता रहता है। मक्का, ज्वार जैसी फसलों से केवल 4 से 5 माह ही चारा मिल पाता है, इसलिए किसान कम पानी में 4 से 15 महीने हरा चारा देने वाली फसल चुन सकते हैं। इसके लिए किसान बरसीम, नेपियर घास, रिजका वगैरह लगाकर हरे चारे की व्यवस्था साल भर कर सकते हैं। बरसीम पशुओं के लिए बहुत ही लोकप्रिय चारा है, क्योंकि यह बहुत ही पौष्टिक व स्वादिष्ट होता है। यह साल के पूरे शीतकालीन समय में और गर्मी के शुरू तक हरा चारा प्रदान करवाती है। बरसीम सर्दी के मौसम में पौष्टिक चारे का एक उत्तम जरिया है। इसमें रेशे की मात्रा कम और प्रोटीन की औसत मात्रा 20 से 22% होती है। इसके चारे की पाचनशीलता 70 से 75% होती है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम और फास्फोरस भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके चलते दुधारू पशुओं को अलग से खाली दाना वगैरह देने की ज़रूरत कम पड़ती है। वहीं किसानों के बीच नेपियर घास भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इसे संकर हाथी घास भी कहते हैं। गन्ने की तरह दिखने वाली नेपियर घास लगाने के महज 50 दिनों में विकसित होकर 4 से 5 साल तक लगातार पशुओं के लिए पौष्टिक आहार की ज़रूरत को पूरी कर सकती है। इसे मेड़ पर लगाकर खेत में दूसरी फसलें उगा सकते हैं। इसमें सिंचाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रोटीन और विटामिन से भरपूर नेपियर घास पशुओं के लिए एक उत्तम आहार की ज़रूरत को पूरा करता है। दुधारू पशुओं को यह चारा खिलाने से दूध उत्पादन में वृद्धि के साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। रिजका, यह किस्म चारे की एक अहम दलहनी फसल है जो जून माह तक चारा देती है। इसे बरसीम की अपेक्षा सिंचाई की ज़रूरत कम होती है। इसे आप 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 20 से 30 सेंटीमीटर के अंतर से लाइनों में बुआई कर सकते हैं। इसे अक्टूबर से नवंबर माह के मध्य का समय बुआई के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। किसान भाई बहनों, अधिक उत्पादन क्षमता के आधार पर चारा फसलों की उन्नत प्रजातियों का आपको चयन करना चाहिए। सूखा सहन करने वाली चारा फसलों एवं किस्मों की खेती करनी चाहिए।
1: जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समुन्दर का जल स्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पहले से ही भारत, भूटान और श्रीलंका में साझा किया जा रहा है। इसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने आप को बदलती जलवायु के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अधिक जानिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हम सभी के लिए जलवायु के बारे में जानना बेहद जरूरी है।
0: किसान भाई बहनों, इस संदेश के बाद आनंद लेते हैं होलो गीत का, मदे कुई होनागा और साथी के स्वरों में।

0: किसान भाई बहनों, इस लोकगीत के बाद जानकारी लेते हैं शकरकंद और कच्चू की खेती और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं महावीर बुड़ुलुई।
1: पाने के रहने वाला हूँ। मैं एक कृषक हूँ, किसान हूँ। मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए मैं हर साल जो है करते रहता हूँ। मैं यहाँ शकरकंद जो है कंदा की खेती करता हूँ और कच्चू का खेती करता हूँ, जिसको हो भाषा में सारू बोलते हैं। कंदा, शकरकंद और कच्चू का खेती करना बहुत ही आसान है। पहले तो जमीन तैयार करना पड़ता है, गर्मी में हल जोतना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है। उसके बाद शकरकंद जो लगाने के लिए एक मेड़ बनाया जाता है, छोटा मेड़, उसमें शकरकंद का एकदम पौधा लगाया जाता है। और कच्चू भी उसी प्रकार, कच्चू लगा देना है, सारू लगा देना है। ये बरसाती पानी से ही, बरसात का समय में ही होता है। इसमें पानी उन्हें डालने की, खाद उद डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप हो जाता है। इसीलिए शकरकंद का खेती करना और सारू या काचू का खेती करना बहुत ही आसान है। हर किसान भाई लोग ये सबको कर सकते हैं। वो आपका 3 महीना 5 महीना 6 महीना के अंदर जो ये शकरकंद और ये सारू और कच्चू जो तैयार हो जाते हैं, इसका खेती करना बहुत ही आसान है। कहीं भी आप लगा सकते हैं, लेकिन वो एरिया में तो मतलब क्या बोलेंगे, उपजाऊ मिट्टी होना चाहिए, काद मिट्टी होना चाहिए। बहुत अच्छा ये फसल होता है, बहुत अच्छा चीज़ है। उससे ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को बहुत कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी मिल सकता है। देखिए, कच्चू और शकरकंद लगाने के लिए उसमें बलुआई मिट्टी की आवश्यकता है, क्योंकि ये बरसाती फसल है। बरसात में उसको पानी जल्दी हटाने के लिए, उसको दलदली ना बने, उसके लिए बलुआई मिट्टी चाहिए, ऊंचा ज़मीन चाहिए, उसी में लगाया जाता है। और शकरकंद जहाँ तक लगाने की बात है, उसमें एक पौधा मिलता है, कहीं से भी आप ला सकते हैं। कंदा दो प्रकार का होता है, एक सफ़ेद है, एक आपका लाल वाला होता है, और दोनों ही बहुत अब उबाल के खाइए, कच्चा

खाइए, सब्जी बना के खाइए, बहुत अच्छा चीज़ है। इसको आप बलुआई मिट्टी में खेती कर सकते हैं। और इधर उधर जो कंदा का पौधा मिलता है कोई भी गांव में, वहां काट करके या मांग करके आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। कचू भी बाजार में भी मिलता है और आपको किसी गांव में भी मिलता है, खरीद के उसको लगा सकते हैं। तो ये सारू और कच्चू जो और ये शकरकंद जो है, ये गीला मिट्टा में, गीली मिट्टी जहाँ गीला होता है, जो पानी जम जाता है, या एक चिकनी मिट्टी, उसमें नहीं लगाना चाहिए। ज़मीन ऊंचा होना चाहिए और वहाँ खाद मिट्टी होना चाहिए। का मिट्टी को तैयार किया जाता है वो तो जून के पहले, आप मार्च अप्रैल मई जून के पहले तैयार करना पड़ता है। उसके बाद जैसा बरसात आ जाता है जून जुलाई, जुलाई में भी अगस्त में भी आप इसको शकरकंद आप लगा सकते हैं, काचू भी लगा सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। और इसका दूरी तो क्या है, मेड़ बनाना है आप 3 फीट की दूरी, 2 फीट की दूरी में आप दोनों चीज़ लगा सकते हैं। उसके बाद आप 1 महीना के बाद या 2 महीना के बाद उसको जो इसको घास उस हटाने के लिए जो है ना, कुदाल से इसको और भी चीज से उसको घास उस हटा करके हल्का उसको हल्का करना पड़ता है मिट्टी को कच्चू के लिए, सारू के लिए। और एक बार खाली मेड़ बना देने से अपने आप हो जाता है, यही है। इसमें खाद जो है वो गोबर जो बकरी और गाय का जो खाद होता है, मुर्गी का जो खाद होता है, हम लोग घर से निकाल करके कहीं साफ सफाई एक जगह जमा करते हैं, वही एक खाद अच्छा खाद बन जाता है। और उसी खाद को मिट्टी में डालना है, मिट्टी जुताई करते समय, जुताई के बाद उसको हम मिट्टी में डाल देते हैं तो हल से हम मिला देते हैं, चाहे ट्रैक्टर से हो या हल बैल से हो, मिला दीजिए। और उसके बाद फिर उसको जो है मेड़ बनाना चालू करो। और ये चीज़ के लिए आप बकरी गाय का ही खाद जो सबसे उत्तम और अच्छा होता है, मिट्टी के लिए भी और फसल के लिए भी, ये दोनों उपयोगी है। गीला खाद इसमें नहीं डालना चाहिए, गीला खाद अगर डालेंगे तो उसे कीड़े मकोड़े लगता है। और रासायनिक खाद तो देना ही चाहिए, इसमें बहुत कम खाद की आवश्यकता होता है। गीला खाद जैसा गोबर भी गीला रहता है कभी कभी, और कोई रासायन खाद तो देने का ज़रूरत नहीं है इसमें। अभी कंदा या कच्चू जो है फसल लगाने के बाद आपका 3 महीना बाद ही तैयार हो जाता है, दोनों कच्चू और सारू का भी और शकरकंद का भी 3 महीने बाद ही आपको तैयार हो जाता है। इसमें कीड़े मकोड़े जो कीट रोग है नहीं के बराबर होता है, सारू में और कच्चू में नहीं के बराबर होता है। कंदा में भी कभी कभी होता है लेकिन अधिकतर नहीं होता है। लेकिन कंदा को आप तैयार होने के बाद समय पर उसको निकालना पड़ेगा, उखाड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप ज़्यादा दिन तक मिट्टी में रहेगा तो कीड़े लग जाता है। यदि इस चीज़ को दोनों चीज़ को उखाड़ करके अपना लाना पड़ता है। हाँ, इसका जो लाइफ है मात्र 3-4 महीने का ही है। 3-4 महीने के बाद उसका जो पौधा या पत्ता भी सूख जाता है, सूख जाता है। तो आप इसमें कंदा यानी कि आप जो सारू या कच्चू उसको ज़मीन से निकाल करके अपना खाइए या बेचिए, जो भी अपना काम में लाना है। मतलब 3-4 महीने के अंदर उसको बाहर मिट्टी से बाहर आना चाहिए। ज़्यादा दिन रखिएगा तो ये दीमक या कोई कीड़े मकोड़े लग सकता है और लगेगा। हाँ किसान भाई, और एक चीज़ है, जैसा कि शकरकंद और काचू जो हम लोग लगाते हैं उसके साथ साथ में 2 फसल पैदा किया जा सकता है। शकरकंद हम लोग लगाने के लिए जो मेड़ बनाते हैं, आणी बनाते हैं, उसमें हम लोग भिंडी का बीजा लगा सकते हैं, क्यों बरसात का फसल है। बरसात के समय में ये भिंडी जो है, भिंडी का पौधा ऊपर निकल जाता है, ऊपर में पल होती है, और शकरकंद नीचे उसका जो पौधा है, पत्ती है, वो नीचे की ओर होता है। तो ऊपर से भी आपको पैदा मिलेगा भिंडी और नीचे में शकरकंद। उसी प्रकार कच्चू भी 3-4-5 महीना का फसल है, तो उसके पहले कच्चू के साथ साथ अगल बगल में उसी लाइन में उसी मेड़ में अगर आप भिंडी लगा दोगे तो भिंडी का फसल आपको पल पहले मिलेगा, कच्चू बाद में मिलेगा। ये 2 फायदा है कच्चू और शकरकंद लगाने से, आप दोनों फसल साथ साथ उठा सकते हैं। हाँ, भिंडी का तो दूरी आपको 2 फीट की दूरी पर लगाना है, भिंडी शकरकंद के साथ साथ वो मेड़ में 2 फीट की दूरी पर लगाना है। चाहे कच्चू के बीच में भी भिंडी लगाएंगे तो उसका दूरी जो है 2 फीट होना चाहिए, क्योंकि भिंडी जो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उसका जो है शाखा जो है पैलता है, इसीलिए जितना पैलने का जगह मिलना चाहिए उतना बड़ा बड़ा भिंडी का

0: उसकी अक्षीय झुकाव और ज्वालामुखी गतिविधि, समुद्री धाराएं और बर्फ का आवरण भी जलवायु पर असर डालते हैं। बड़े उल्कापिंडों के प्रभाव से भी अचानक जलवायु परिवर्तन का कारण बना है। यह एक रोचक तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का वैश्विक तापमान परिवर्तन पृथ्वी को हिमयुग या गर्म युग में बदल सकता है।
1: किसान भाई बहनों, कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं उड़िया लोकगीत दिलीप निषाद और साथी के स्वरों में।

किसान भाई बहनों, इस लोकगीत के साथ ही आज का हमारा खेती गृहस्थी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम से कोमल नायक को दे विदा। जोहार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। रांची में आयोजित 2 दिवसीय पंचायत समुदाय समन्वय कार्यशाला में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना समृद्ध झारखंड की कल्पना अधूरी है। छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने धनबाद में राजस्व कार्यों और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की उच्च स्तरीय समीक्षा की। आयुक्त ने जिले में SIR फॉर्म वितरण और डिजिटलीकरण की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। गढ़वा में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा बैठक हुई। उपायुक्त ने बताया कि जिले में अब तक 98% गणना प्रपत्रों का वितरण पूरा किया जा चुका है। लोहरदगा के किस्को स्थित एकलव्य आदर्श विद्यालय में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित शिविर में 288 बच्चों को मलेरिया की जांच करवाई गई, जिसमें 11 बच्चे संक्रमित पाए गए। संक्रमित पाए गए सभी बच्चों का स्वास्थ्य टीम द्वारा तत्काल उपचार शुरू कर दिया गया है। देवघर श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं को निर्बाध मोबाइल नेटवर्क देने के लिए उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने समीक्षा की। उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों को कांवरिया पथ पर अस्थायी टावर लगाने और नेटवर्क क्षमता बढ़ाने का कड़ा निर्देश दिया है। साहिबगंज में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 1,71,000 से अधिक महिलाओं के खाते में 28 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा रही है। इसके साथ ही अगले 2 दिनों में सर्वजन पेंशन के लाभार्थियों को भी 3 महीने की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM के 101.7 MHz पर। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम हुआ खड़ा।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हुआ खड़ा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: कार्यक्रम युवाणी सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को छवि का प्यार भरा नमस्कार। युवा दोस्तों, आज जिस तरह से युग बदल रहा है, वैसे हमें भी बदलने की जरूरत है। और कई युवा दोस्त नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और अपने परिवार तथा अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। ऐसे में योग का योगदान बहुत हो सकता है। युवा दोस्तों, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो अब योग को अपना रहे हैं, पूरे विश्व में फैला रहे हैं और रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन भी बन गया है। पहले लोग इसे बुजुर्गों का काम समझते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। आज के युवा जो वर्ग हैं, वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। खासकर हमारे कुछ युवा हैं जिन्होंने योग को ग्लोबल बनाने का प्रयास किया है। आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रील्स पर सबसे ज़्यादा लोग योग सिखाने वाले हैं और सभी 20 से 35 साल के युवा ही हैं। बाबा रामदेव, सदगुरु के बाद अब युवा इंस्ट्रक्टर विदेशों में भी योग कैंप लगा रहे हैं। योगा फॉर मेंटल हेल्थ, योगा फॉर पीसीओएस ऑफिस योगा जैसे नए फॉर्मेट्स युवाओं ने ही शुरू किए हैं। युवा दोस्तों, आज युवा डॉक्टर जो हैं, रिसर्चर, सब लोग योग को लैब में टेस्ट कर रहे हैं। शुगर, बीपी, मोटापा, डिप्रेशन पर योग के असर पर रिसर्च हमारे युवा ही कर रहे हैं। पेपर जो युवाओं में है, ये ज़्यादातर हो रहा है, युवा कर रहे हैं। आईआईटी, एम्स में योगा थेरेपी पर पढ़ाई और रिसर्च अब युवाओं के कारण ही तेज हुई है। योग को कूल और रिलेटेबल बनाने के लिए भी आज युवा बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आज पहले जैसे योग धीमा बोरिंग होता था, ऐसा नहीं है। आज के युवाओं ने इसे पावर योगा, एरियल योगा, डांस योगा बनाकर मज़ेदार बना दिया है। स्कूल कॉलेज में 5 मिनट ब्रेक योगा करवाया है, बच्चों को भी यह पसंद आने लगा है और बहुत सारे लोग अब अनुलोम विलोम भी करने लगे हैं। आज के स्टार्टअप और इसमें कैरियर भी बना रहे हैं। योगा ऐप, ऑनलाइन योगा क्लासेस, कॉरपोरेट वेलनेस, ये सब बिजनेस युवाओं ने खड़े किए हैं। लाखों युवा आज लोग टीचर बनकर आत्मनिर्भर हुए हैं। योग अब सिर्फ साधना नहीं, रोजगार भी है। जिम के साथ साथ योगा स्टूडियो का ट्रेंड युवाओं ने ही चलाया है। आज के युग में बहुत सारे सामाजिक बदलाव हो रहे हैं योग के वजह से। नशा मुक्ति केंद्र, जेल, अनाथालय में युवा वॉलंटियर लोग सिखा रहे हैं योग को। मानसिक तनाव, एग्जाम प्रेशर में फंसे स्टूडेंट्स को युवा योगा टीचर ही संभाल रहे हैं। फिट इंडिया मूवमेंट इंटरनेशनल योगा डे को स्कूल कॉलेज तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ युवाओं का है। सबसे बड़ी बात है, युवा खुद करके दिखा रहे हैं। सुबह 5 बजे उठकर योगा करना, जंक फूड को छोड़ देना, मोबाइल कम चलाना, ये सब देखकर बाकी लोग भी सीखते हैं। इसीलिए हमें सब सीखना बहुत ज़रूरी है और जो भी हम गलती कर रहे हैं उसे नहीं दोहराएं। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बुजुर्गों ने योग को बचाया और युवाओं ने योग को उड़ान दी। आज हम देख रहे थे कि आप लोगों ने देखा कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे दुनिया भर में मनाया गया और कितनी खुशी और एनर्जी से सभी लोगों ने मनाया, स्कूल में, कॉलेज में, जगह जगह। हमारे प्रधानमंत्री ने खुद मनाया कोलकाता में। तो अब ये सब चल रहा है और ये सब बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि आज योग हमारे लिए कितना आवश्यक भी है और पूरे समाज को हम किस तरह से बदल सकते हैं। तो युवा दोस्तों, चलिए हम एक आपको योग शिक्षक से भेंट करवाते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने पहले की थी, और उनसे भेंट करके जानते हैं और कुछ योग के बारे में, बस कुछ ही पलों में। हम जानना चाहेंगे आपसे कि योग दिवस की शुरुआत कब हुई।
1: सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब यूएनओ में गए थे तो 11 दिसंबर 2014 को उन्होंने अपने इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ में रखे कि हम लोगों को योग में समय देना चाहिए।
0: अच्छा,
1: इससे हमारी दीर्घ आयु होती है
0: जी
1: और स्वस्थ भी रहते हैं।
0: अच्छा,
1: तो ये प्रस्ताव को उन्होंने उस समय रखा और उसकी 90 दिनों के बाद ही यह प्रस्ताव 177 देशों की सहमति से पारित हुआ।
0: अच्छा,
1: और पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया।
0: हाँ, पूरे विश्व में इसे मनाया गया, इसलिए इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय
1: योग दिवस रखा गया।
0: जी जी सर, सर हम जानना चाहेंगे कि योग क्या है और इस बार जो 21 जून को हम मना रहे हैं इसकी थीम क्या है।
1: सबसे पहले तो योग के विषय में बहुत सारी चर्चाएं चलती रहती है
0: जी,
1: लेकिन योग का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य 3 चीजों का बना हुआ है
0: जी,
1: शरीर मन और आत्मा।
0: अच्छा,
1: अपने शरीर पर नियंत्रण, अपने मन पर नियंत्रण, अपने अंतर आत्मा को पहचानना
0: जी,
1: इन तीनों अवस्थाओं का संतुलन ही योग है।
0: अच्छा,
1: और इस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है महिला सशक्तिकरण के लिए योग।
0: जी, बहुत अच्छी बात है, महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है हमारे समाज में और इस बार की थीम ये रखी गई है। तो श्रोताओं, आपने सुना और बच्चों ने भी सुना कि योग कितना जरूरी है और योग क्या है, इसका सर योग का महत्व क्या है, आप इसके विषय में बताइए।
1: योग का महत्व हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है
0: जी।
1: आज की भाग दौड़ की जिंदगी में
0: जी,
1: और इस इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की जिंदगी में
0: जी,
1: हम लोग अपने आप को शांत अवस्था में बैठने के लिए
0: जी,
1: योग करना बहुत जरूरी है। कहा गया है स्थिरम सुखम आसनम।
0: अच्छा,
1: मैं किसी भी अवस्था में शांत मन से बैठ जाऊं तो वही योग है।
0: वाह, बहुत अच्छी बात है, आपने सुना, सभी लोगों ने सुना कि योग क्या है और इसका महत्व क्या है, हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है। सर, अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि योग का रोजगार के क्षेत्र में क्या महत्व है, क्या इससे रोजगार की प्राप्ति हो सकती है।
1: आज के इस युग में योग में बहुत से रोजगार आए हैं
0: जी,
1: और मैं खुद ही इस बोर्ड के मेंबर थे जिसमें यहाँ सदर हॉस्पिटल के द्वारा 27 प्रतिभागियों का इंटरव्यू लिया था।
0: अच्छा,
1: जिसमें 16 प्रतिभागी अभी आयुष के द्वारा और स्वास्थ्य केंद्रों में योग का प्रशिक्षण प्रतिदिन दिया जाता।
0: अच्छा, तो मतलब रोजगार की गारंटी भी है इसमें, योग सीखकर हम दूसरी जगह भी सिखा सकते हैं। तो कोई आपका ऐसा है जो इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा है और प्रशिक्षण भी दे रहा है।
1: हमारी आज जो हैं बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं
0: जी,
1: जो योग के क्षेत्र में काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचे हुए हैं और हमारा पश्चिम सिंहभूम का नाम भी रोशन कर रहे हैं। हमारा पहला स्टूडेंट थे सानू बिरुली।
0: अच्छा,
1: जो अभी योग के क्षेत्र में वियतनाम में करीब 5 वर्षों से योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं।
0: वाह, बहुत अच्छी बात।
1: और विदेशों में जिस तरह हमारे यहाँ कंपनियाँ चलती है उसी तरह विदेशों में योग का कंपनी खोले हुए।
0: अच्छा,
1: और इंडिया से बहुत से बच्चों को हायर कर ले जाते हैं और वहाँ योग प्रशिक्षक के रूप में वे काफ़ी काम कर रहे हैं।
0: अच्छा,
1: और बहुत अधिक मात्रा में मनी भी अर्न कर रहे हैं।
0: जी, बहुत अच्छी बात है, यानी रोजगार का क्षेत्र में सर अपना जीवन तो चला ही रहे हैं, बहुत सारे बच्चे भी आगे बढ़ चुके हैं। सर, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि खेल के रूप में योग की क्या स्थिति है।
1: खेल के क्षेत्र में योग को अभी ओलंपिक संघ के द्वारा मान्यता मिल चुका है।
0: अच्छा,
1: और अभी योग को काफ़ी बढ़ावा मिला है। स्कूलों में SGFI स्कूल गेम्स में भी शामिल किया जा चुका है। NCERT जो बुक पब्लिश करते हैं उसके लिए भी, उसमें भी प्रति वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन में नेशनल ओलंपियाड होता है
0: जी।
1: और उसमें भी हमारे पश्चिम सिंहभूम के 3 बच्चे अभी मैसूर में योग का प्रदर्शन किए हैं।
0: अच्छा।
1: और उन्हें 21 जून को सम्मानित किया जाएगा
0: जी। बहुत अच्छी बात है, हमारे पश्चिम सिंहभूम के बहुत सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं और योग के क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं। तो योग खेल के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे शारीरिक दृष्टि से भी। अब हम ये जानना चाहेंगे कि योग से क्या बीमारियों को दूर किया जा सकता है।
1: सबसे पहले तो योग के विषय में जानना पड़ेगा कि योग जो करते हैं, हमारा योग निरोधक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए करते हैं और हमारे शरीर से जो हार्मोन निकलते हैं उनका श्रवण को तेज करता है।
0: अच्छा।
1: ऐसा बहुत से आसन है, जैसे बोलते हैं वज्रासन में बैठते हैं, खाना खाकर हम वज्रासन में जो बैठते हैं, इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जो हार्मोन निकलता है
0: जी।
1: पाचन तंत्र से जो हार्मोन निकलता है उसका श्रवण तेज होता है
0: जी।
1: और जो छोटी मोटी बीमारियां हैं जैसे ऑर्थोसाइटिस्ट है, लेकिन जब हम शुरू से करते रहेंगे तभी वे बीमारी नहीं हो पाएगा, लेकिन जब वे बृहद रूप ले लेगा तभी हमको डॉक्टर की सलाह पर ही योग करना चाहिए
0: जी। तो कैसे लोग योग ना करें और कैसे लोग योग करें, इसके बारे में बताइए।
1: कुछ ऐसा बीमारी है जिसमें हम लोग योग नहीं कर सकते हैं, और जैसे अल्सर है, हर्निया है, उस स्थिति में कुछ आसनों को नहीं करते हैं, लेकिन योग तो सभी प्रकार के पेशेंट कर ही सकते हैं। उसमें जो आसन दिए गए हैं उनमें करीब करीब हमारे जो 84 लाख योनि हैं वो 84 लाख आसन भी।
0: अच्छा।
1: तो उन आसनों में कुछ चयनित आसन हैं जो जैसा पेशेंट है उसी तरह से करवाते हैं। जैसे कैंसर के मरीजों को हम लोग योग निद्रा का अभ्यास करवाते हैं
0: जी।
1: योग निद्रा का स्पेशल अभ्यास होता है जो एक मेडिटेशन के रूप में उसके शरीर पर काम करता है।
0: अच्छा सर, अब हम ये जानना चाहेंगे कि योग जो लोग करेंगे, मान लिया रोजाना करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें, कहाँ प्रशिक्षण लें, या फिर कौन से योग ऐसे हैं जिनको रोज करना चाहिए।
1: वे तो एज पर निर्भर करता है, लेकिन योग को वे प्रतिदिन अपने जीवन में 24 घंटे के दिनचर्या में कम से कम अपने शरीर के प्रति 30 मिनट तो निकाल ही सकते हैं
0: जी।
1: और उस 30 मिनट में अगर उनके पास समय का अभाव है
0: जी,
1: तो वे 10 मिनट का अपने जीवन में समय निकाल कर सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार में 24 पोस्चर होते हैं, 12 में हाफ होता है और 12 में हाफ होता है, तो 24 आकृति में करने से एक राउंड सूर्य नमस्कार होता है।
0: अच्छा।
1: अगर काफ़ी कामकाजी व्यक्ति हैं और काफ़ी व्यस्त हैं तो वे जब ड्यूटी से लौटते हैं या अपनी वर्क से घर वापस आते हैं तो शाम को भी शांत भाव से बैठकर ओम का उच्चारण कर सकते हैं।
0: अच्छा।
1: या मंत्र कर सकते हैं
0: जी।
1: वे किसी भी धर्म या जाति का हो, वो अपने अनुसार अपने इष्ट देव का नाम लेकर अपने शरीर को शांत बना सकते हैं, और उसके बाद वे 2 राउंड सूर्य नमस्कार कर लेंगे तो उनका दिन भर का जो टेंशन की जिंदगी था वे शांत हो जाएंगे और आराम से उनको नींद भी आ
0: जाएगी। सर बहुत अच्छी बात बताई, आजकल के जीवन में टेंशन यानी तनाव बहुत ज़्यादा है और इनसे बचने के लिए हमें योग अपनाना चाहिए। अब हम ये जानना चाहेंगे कि विश्व में योग की क्या स्थिति है, कैसे इसका विस्तार हो रहा है।
1: विश्व में योग की स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और इतना ज़्यादा हो रहा है कि हम लोग कह नहीं सकते हैं।
0: अच्छा।
1: क्योंकि हमारे स्टूडेंट लोग इतना ज़्यादा दिमाग में बैठा रखे हैं कि हम योग करेंगे और योग में पीजी डिप्लोमा करेंगे या ग्रेजुएशन करेंगे। हमारे कोल्हान यूनिवर्सिटी में भी योग में पीजी करवाया जा रहा है।
0: अच्छा।
1: झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा डिप्लोमा का कोर्स चलाया जा रहा है।
0: अच्छा।
1: तो उन डिग्रियों को लेने के बाद हम लोग अभी विदेशों में जाकर योग का प्रशिक्षक बन सकते हैं।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। रोजगार के क्षेत्र में, शारीरिक दृष्टि के क्षेत्र में, हर चीज़ में योग बहुत लाभप्रद है। तो सर, अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे बच्चों को, युवाओं को, हमारे लोगों को क्या संदेश देंगे?
1: हम अपने बच्चों को ये संदेश देंगे और युवाओं को और किसी भी प्रकार के व्यक्ति को कि अपने जीवन में 24 घंटे में कम से कम सभी कार्यों के लिए जो समय निकाला गया है उसमें योग के लिए भी अलग से समय निकाल कर रख लें और उस समय में वे योग का उपयोग करें और योग का उपयोग करने के बाद ही वो घर से निकले, या ध्यान हो, या सूक्ष्म व्यायाम हो, या सूर्य नमस्कार हो, जितनी उनकी शरीर की क्षमता है उनके अनुसार अपने आसन को चयन कर ले और कम से कम 30 मिनट अपने शरीर को के प्रति जरूर समय दे। कहते हैं लोग कि हम तो इतना काम काज करते हैं ये तो योग है, लेकिन नहीं, योग में बहुत सी गतिविधियां हैं और बहुत तरह की पद्धति है उनको अपनाया जाता है। और योग और व्यायाम में जो अंतर है कि हम जिम जाते हैं, योग करने की आवश्यकता नहीं है, हम पीटी करते हैं, योग करने की आवश्यकता नहीं है, ये बात नहीं है। योग जो है, योग में श्वास प्रति श्वास की क्षमता को देखते हुए योग किया जाता है।
0: अच्छा।
1: और योग में किसी प्रकार की राजशाही भोजन की आवश्यकता नहीं है कि हमको खूब पौष्टिक आहार की आवश्यकता होनी चाहिए, इस तरह की कोई भी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है।
0: अच्छा।
1: और इसमें योग में हमारा श्वास की पद्धति का मेन है कि हमें अपने श्वास के प्रति जागरूक रहें और श्वास को ध्यान में रखते हुए हम योग के गतिविधियों को अपनाएं।
0: जी सुमित सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अंत में मैं ये जानना चाहूँ कि रोज जो करना चाहते हैं तो कौन कौन सा करें, खास जो सबसे योग है उसको कौन सा योग करें?
1: जैसे बच्चों के लिए है, अगर

0: रहता है। और कुछ आसन ऐसे हैं जिसको हमको शारीरिक रूप से स्थिर बैठना है
1: जी,
0: जैसे पद्मासन हुआ, वज्रासन हुआ
1: जी,
0: इसमें हमको रुकना है हमारी क्षमता के अनुसार 30 to 1 मिनट तक स्टे भी करना है।
1: अच्छा।
0: इसलिए कहा गया है कि स्थिरम सुखम आसनम, यह एक शब्द है कि अपनी शरीर को स्थिर अवस्था में ही रखना योग कहलाता है।
1: सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, बच्चों को, युवाओं को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: युवा दोस्तों, आप अभी सुन रहे थे योग के बारे में, तो चलते चलते चलिए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

युवा दोस्तों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम युवाणी अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब आपको ले चलते हैं हमारे रांची केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार और जिले में आजकल।

0: देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके माय गॉव पर एक मेल मिला। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा उन्होंने कहा था।

जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की जताई प्रतिबद्धता। अधिकारियों को दिए अहम दिशा निर्देश। देश में उच्च शिक्षा में नामांकन रिकॉर्ड 4.5 करोड़ के पार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, सुधारों का दिख रहा असर। राज्य के सभी सदर अस्पतालों में बनेंगे अत्याधुनिक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को एक ही परिसर में मिलेंगी सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने रांची में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से की मुलाकात। ग्रामीण योजनाओं के प्रगति की समीक्षा। और रांची में डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर खेल सचिव ने की उच्च स्तरीय समीक्षा। 18 जुलाई को भारतीय सेना करेगी विशेष ट्रॉफी टूर का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को अधिक आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। रांची में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई अहम दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने योजनाओं को समय पर पूरा करने और छात्रों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने पर जोर दिया। देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नामांकन का एक नया रिकॉर्ड बना है, जो बढ़कर 4.5 करोड़ तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ताजा ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट के हवाले से बताया कि यह संख्या वर्ष 2014-15 की तुलना में 31% अधिक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और स्टेम विषयों में विद्यार्थियों का बढ़ता नामांकन समावेशी भारत का एक बड़ा संकेत है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मुलाकात कर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर चर्चा की। आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने शिकायतों के त्वरित निवारण पर संतोष जताया।
7: झारखंड में करीब करीब 90% से ज्यादा कार्य हो चुके हैं। चुनाव कार्य पदाधिकारी द्वारा संतोषजनक कार्य हो रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह किंतु परंतु नहीं है। जो हमारा कंप्लेन था BLO घर घर नहीं जा रहे हैं, उस पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि BLO को घर घर जाकर के सत्यापन करना है, न के बूथ पर बैठ करके।
6: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि गड़बड़ी मिलने पर धनबाद और गढ़वा के 2 BLO की सेवा समाप्त कर दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को फॉर्म जमा करने के लिए कैंप लगाने की अनुमति नहीं है।
8: कोई भी कैंप करवाने के लिए बात करके उसी तरह से कराया जा रहा है, उसमें कैंप केवल पॉलिटिकल पार्टी कर सकते, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति है, कोई वार्ड पार्षद है, उसी तरह से कोई वार्ड व्यक्ति कैंप नहीं कर सकते। केवल पॉलिटिकल पार्टी है, अपने वोटर के तरफ से BLA2 का माध्यम से करा सकते हैं। वहां पर भी वोटर से कोई भी फॉर्म भरवाने के नाम में पैसा खर्च नहीं लेना है।
6: छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने धनबाद में राजस्व कार्यों और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की उच्च स्तरीय समीक्षा की। समाहरणालय में आयोजित बैठक में उन्होंने दाखिल खारिज मामलों को समय सीमा के भीतर निष्पादित करने का कड़ा निर्देश दिया। आयुक्त ने जिले में SIR फॉर्म वितरण और डिजिटलीकरण की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।
9: लक्ष्य के अनुरूप ये जिला चल रहा है और इस जिले में जो भी हल्की फुल्की निर्देश थे देने का था, मैंने दिया है। आंतरिक संसाधन के जितने भी विभाग थे उनका भी प्रगति संतोषप्रद है, ऐसा कोई मुझे देखने को मिला। फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का डिजिटाइजेशन होने का तो संतोषप्रद है। शहरी क्षेत्र में कुछ कमी है जिसको हम लोग समय पर पूरा कर।
6: राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने घोषणा की है कि प्रदेश के सभी सदर अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए अत्याधुनिक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विकसित किए जाएंगे। इन विशेष केंद्रों में आधुनिक लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, विशेषज्ञ डॉक्टर और प्रसव संबंधी सभी समग्र स्वास्थ्य सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराई जाएंगी। नई दिल्ली में आगामी 23 जुलाई को अखिल भारतीय राष्ट्रीय सेवा दल का महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल होंगे। सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आज रांची के कांग्रेस मुख्यालय में झारखंड सेवा दल की बैठक हुई। मुख्य संगठनकर्ता नवीन कुमार सिंह ने कहा कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन में झारखंड से सैकड़ों कार्यकर्ता भाग लेंगे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर निवेश के नाम पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने रांची में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दावोस यात्रा के दौरान जिन कंपनियों के साथ एमओयू हुआ था उन्हीं के साथ दिल्ली में दोबारा एमओयू कर प्रस्तावों की रीपैकेजिंग की गई है। उन्होंने केंद्र की अनुमति के बिना जिंदल स्टील के साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के एमओयू पर कड़ी आपत्ति जताई।
3: गिनाने में 99,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आया है उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट को जोड़ दिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट इतना एक बेहद संवेदनशील विषय होता है, आप जानते हैं, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए इतने सारे डिपार्टमेंट्स की परमिशन की आवश्यकता होती है। वो बिना लिए हुए उन्होंने घोषणा कर दी कि ये निवेश होगा, मैं भीषण कागज का एक टुकड़ा मानते हैं।
6: 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता के विरोध में विभिन्न छात्र संगठन और अभ्यर्थी कल रांची स्थित जेपीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। आगामी आंदोलन की रणनीति को लेकर आज रांची में अभ्यर्थियों और छात्र संगठनों की बैठक हुई। आजसू के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने प्रदर्शन को समर्थन देने की घोषणा करते हुए परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता जताई। अभ्यर्थियों ने सभी छात्रों और राजनीतिक दलों के छात्र विंग से राजनीतिक मतभेद बुलाकर एकजुट होने की अपील की है। रांची में आयोजित 2 दिवसीय पंचायत समुदाय समन्वय कार्यशाला में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांड्य सिंह ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि महिलाओं को सक्रिय भागीदारी के बिना समृद्ध झारखंड की कल्पना अधूरी है। उन्होंने समावेशी स्थानीय विकास के लिए पंचायतों और स्वयं सहायता समूह के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए।
4: पंचायती राज के प्रतिनिधि और जो हमारी समूह की बहनें हैं जो क्लस्टर लेवल फेडरेशंस बना करके अब काम कर रही हैं, उनके सामूहिकता से किस तरीके से हमारे पंचायत, हमारे गांव और कैसे समृद्ध हो सकते हैं। आजीविका के जो काम है उसमें जीपीडीपी और जो विलेज बीआर बीपीआरपी को कैसे समायोजित करते हुए हम लोग अपने गाँव को समृद्धि की तरफ ले जाएं, इसका यह प्रयास है और यह सहभागिता से संभव है, उस पर यह कार्यशाला।
6: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा ने आज रांची में राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांड्य सिंह से मुलाकात कर विकास योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की। बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र राज्य समन्वय मजबूत करने पर चर्चा हुई। राज्य में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है जिससे अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल रांची, जमशेदपुर, धनबाद और दुमका सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी। हालांकि राज्य में अब भी सामान्य से 40% कम बारिश दर्ज की गई है। रांची में 26 जुलाई से शुरू होने वाले डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारियों को लेकर खेल सचिव मुकेश कुमार ने समीक्षा बैठक की। मोरहाबादी स्टेडियम में 16 अगस्त तक चलने वाले इस प्रतिष्ठित आयोजन की सुरक्षा और साफ सफाई के कड़े निर्देश दिए गए हैं। आगामी 18 जुलाई को भारतीय थल सेना द्वारा शहर में विशेष ट्रॉफी टूर का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की जताई प्रतिबद्धता। अधिकारियों को दिए अहम दिशा निर्देश। देश में उच्च शिक्षा में नामांकन रिकॉर्ड 4.5 करोड़ के पार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, सुधारों का दिख रहा असर। राज्य के सभी सदर अस्पतालों में बनेंगे अत्याधुनिक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को एक ही परिसर में मिलेंगी सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने रांची में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से की मुलाकात। ग्रामीण योजनाओं के प्रगति की समीक्षा। और रांची में डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर खेल सचिव ने की उच्च स्तरीय समीक्षा। 18 जुलाई को भारतीय सेना करेगी विशेष ट्रॉफी टूर का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
10: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
11: आगे सैलरी? नहीं झुमके?
12: ना, पहले बचत।
11: पहले झुमके?
12: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
11: लेकिन झुमकों का क्या?
12: जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन।
13: आरबीआई कहता है
14: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गुमला संवाददाता।
1: भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गुमला सदर अस्पताल में गर्भवती महिलाओं का प्रत्येक महीने की 9 तारीख को निःशुल्क व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस संबंध में सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी ने बताया कि
2: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो है इसके तहत तो जो मेन ध्येय होता है कि हम लोग वैसे प्रेगनेंसी को हम लोग एड्रेस करते हैं जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उनको हम लोग अस्पतालों तक लाएं और अस्पताल में लाकर के उनको हम लोग उचित जो एक क्वालिटी सर्विसेज है वो मुहैया करा सके, जो एसेंशियल जो हमारा जांच है वो जांच कर सके, अल्ट्रासाउंड कर सके एवं जो भी दवाएं हैं वो दवा हम लोग उपलब्ध करा सके। आज हम लोग एक भोजन भी देते हैं, वो एक टोकन होता है। एक्चुअली वो टोकन इसलिए होता है कि हम लोग इसी के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं कि यू फर्स्ट, पहले आप खाइए तब अपने घर के और लोगों को खिलाइए, क्योंकि आप गर्भवती हैं, आपको ज्यादा जरूरत है भोजन की।
1: गुमला वन प्रमंडल इस मानसून में आरडीएफ तथा सिविल कल्चर स्कीम के तहत गुमला जिला के अलग अलग क्षेत्रों में 200 हेक्टेयर वन भूमि में 2 लाख से अधिक पौधे लगाएगी। इस संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी अहमद बिलाल अनवर ने बताया कि
3: 2-3 बारिश और जैसे हो जाएगी, मिट्टी में नमी बढ़ जाएगी, तब प्लांटेशन में कार्य कराया जाएगा। आरडीएफ जो स्कीम हमारा है और सिविकल्चर जो स्कीम है उसके तहत जहाँ जहाँ प्लांटेशन होगा उसके लिए सारी बैकग्राउंड वर्क वो किया जा चुका है। वी एक्सपेक्टिंग कि विद इन नेक्स्ट 15-20 डेज प्लांटेशन का कार्य जोर शोर से शुरू होगा। तो इस बार 2 लाख से ज़्यादा पौधे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे करीब करीब 200 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड में ये कार्य किया जाएगा, जिसमें आपका फॉरेस्ट लैंड में, डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड में प्लांटेशन, रोड साइड प्लांटेशन, रिवर साइड प्लांटेशन का कार्य किया जाएगा इस मानसून अगले एक महीने के अंदर।
1: महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग गुमला के संयुक्त तत्वावधान में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित जीवन परियोजना के 1 वर्ष की प्रगति एवं आधारभूत सर्वेक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने बताया कि
4: ये एक परियोजना जो 1 वर्ष पहले पिछले जुलाई से प्रारंभ की गई जिले में और ये टाटा ट्रस्ट के प्रोजेक्ट जिले में संचालित की गई थी और इनका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिलों से 6 साल के बच्चों और माताओं के पोषण में कैसे सुधार हो, इसको लेकर ये संस्था के द्वारा ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जीवन परियोजना के नाम से। और ये परियोजना 1 साल होने के बाद हमारे सभी ICDS सेंटर्स के सेविका इनके साथ मिलकर इन पर काम किए हैं।
1: बहरहाल केंद्र सरकार की यह प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का उद्देश्य उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं का शीघ्र पता लगाने और उनका तुरंत इलाज करके मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला।
0: अभी आप सुन रहे थे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे हमारे रांची केंद्र से प्रसारित समाचार और जिले में आजकल। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:16 हो रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम आपकी पसंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज आपको पहले सुना रहे हैं, सबसे पहले फिल्म का नाम है मेरी जंग। लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ है। माफ कीजिएगा श्रोताओं, सबसे पहले आज आपको हम सुनवाते हैं अभी फिल्म सफर का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। इंदिवर के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं छोटा नेमडी चाईबासा से बाबूराम, शांति देवी, रितिक, कोमल, रोहन, संतोष कुमार भगत, श्रीमती बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत। ये हैं चांदपुर पोटका से, कॉलेज रोड घाटशिला से सोना रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी, संतोष, आनंद। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और प्राची राजेश। चलिए इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत आपको हम सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है साजन बिन सुहागन। यशोदास की आवाज़ है, उषा खन्ना का संगीत है और इस गीत को सुनना चाहते हैं शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष्ण श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवली श्रीवास्तव। सरायकेला पाड़ापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम शिवाजी मुंडरी, सुरुमानी मुंडरी, हीरामणि मुंडरी, हिमांती मुंडरी, डोबरो मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरी, जानम सिंह मुंडरी, सिद्धि बोस, सोना बाबू सोना, एफएम शिवा मुंडरी। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। चलिए इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अब आपको सुनाने जा रहे हैं इनकी पसंद पर गीत। फिल्म का नाम है अमानुष, किशोर कुमार की आवाज है। डोगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबे अनिष्का और तन्मय गजभिये। बड़ा बम्बो सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, ठाकुर प्रसाद गुप्ता, सुशांक सिंहदेव, सुदर्शन प्रमाणिक, ईश्वर बनरा, ललित बाबू और देवेंद्र बाबू। पोंडाकटा से नरसिंह महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्षमणी महली, पार्वती महली, सुहानी महली, संजय सोरेन, नंदिनी महली, साजीव महली, विजय बेसरा और एनएस महली। चलिए, इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं अमानुष फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है क्रांति। लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजें हैं, संतोष आनंद के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं बड़ा निमड़ी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मितु रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार और शुभम कुमार। सेंटोला चाईबासा से हैं भोला राम मधुर, बेबी मधु और जय श्री देवी। बड़ी बाजार चाईबासा से हैं विनोद कुमार पवन और मीना पवन। चले इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म क्रांति का ये गीत, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ों में, संतोष आनंद के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत हम सुनवाते हैं आपको, फिल्म का नाम है मेरी जंग। लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजें हैं। इस गीत को सुनना चाहते हैं मौलटिया सोनवा से नंद किशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी, बंदनी, दीपक संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गीतेश, अनु, तनु, डिस्को महतो, भाई नंदू महतो, बड़ा बाबू गोडिया से मोइना महतो, डिम्पी महतो और राहुल महतो, चांडिल ग्राम हारूडी से तुलसीदास महतो, मनोरमा महतो, कल्पना महतो, मनमहिनी महतो, दीनबंधु महतो, ग्राम पंजौनिया तहसील कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र चंसौलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक आराध्या चंसौलिया। चलिए इन सब की पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 8 बज रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा।

कार्यक्रम रजनीगंधा लेकर मैं उपस्थित हूँ। श्रोताओं, मैं हूँ छवि, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम इस गीत से। फिल्म का नाम है आनंद, मन्ना डे की आवाज़ है, योगेश के बोल हैं, सलील चौधरी का संगीत है। और इस गीत को सुनना चाहते हैं कुचाई बिद्री से केपी सेठ सोए, दुर्गमती सरिता, रेशमी राजकुमारी, विशाल मुन्ना, सन्नी, ग्राम सूराबेड़ा से बासी सरदार, कोमल सिंह, वीरू सरदार और अंशु, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर से पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांधा, गोलू काकू, जी एस रामगढ़िया, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। इन सब की फरमाइश पर आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म आनंद का ये गीत।

0: कभी तो हंसाए।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीकंधा। अब आपको सुनाते हैं फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर। किशोर कुमार की आवाज़ है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और इस गीत को सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा, मुकेश कासलेकर, दिनकर विमल, विशाखा कासलेकर, ये हैं अमरावती महाराष्ट्र से। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दंतरेगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीकंधा छवि के साथ। अगला गीत आपको हम सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है अंधा कानून। किशोर कुमार की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं सरायकेला गांव गीता से राधा कृष्णा गोप, सुनीता गोप, उमा गोप, गीता गोप, रीता गोप, सरस्वती गोप, आराध्या गोप, अमित गोप, सुमित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, विक्की गोप, शुभम गोप, विनोद गोप, राजू गोप, राजन गोप, माहिर गोप। आमना टोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फूलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और अक्षत प्रसाद। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, धर्मेंद्र और जितेंद्र। संजय बिरुआ, डेमचांग बिरुआ, पिंकी पाड़िया, खजूरिया चंपाए बिरुआ, बलवीर बिरुआ ग्राम खजूरिया से। राधिका गोप, टेलू कैप्टन श्रीमती राधामणि बिरुआ, राजू बिरुआ, प्रेम प्रधान बिरुआ। कुचाई ग्राम इचाहतु से गोलाराम लोवादा, लुद्री, सोमनाथ, पूर्णिमा, लालमुनि, बिंजना और लुवेदा परिवार। ग्राम लोसोदेकी से कोमल महतो, पेमी महतो, गोविंद, जीतू, साइमन महतो परिवार के सभी सदस्य। चलिए, इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म अंधा कानून का ये गीत।

श्रोताओं, इन्हीं गजलों के साथ आज का कार्यक्रम महफिल अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सुरों के रंग। कार्यक्रम सुरों के रंग सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पेश कर रहे हैं फिल्म साथी का ये गीत, कुमार शानू की आवाज में नदीम श्रवण का संगीत है।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों के रंग छवि के साथ। आपने सुना अकेले हम अकेले तुम का ये गीत उदित नारायण और आदित्य नारायण की आवाजों में। उसके पहले हमने आपको सुनवाया वीर जारा फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, और उससे पहले आपने सुना था यादों की बारात फिल्म से लता मंगेशकर, पद्मिनी और शिवांगी की आवाजों में। वक्त फिल्म का गाना आपने सुना था आशा भोसले की आवाज़ में। श्रोताओं, चलते चलते आपको हम सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है अमृत। मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम सुरों के रंग अब यहीं संपन्न होता है। आप सभी को इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनके अमेरिका के व्यापार

0: प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मूज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मूज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं जबकि 6 अब भी लापता हैं। राज्य के मत्स्य मंत्री राजेश महतो ने कहा कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाज और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 19 में 8 महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुकी हैं। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल जारी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टुडे डिसमिस्ड मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ अ डेडलॉक इन इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स, कॉलिंग देम एज कंप्लीटली फॉल्स, बेसलेस एंड मिसलीडिंग। In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful, and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers, and consumers. He said he had a fantastic meeting with the